0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उस्ताद डॉक्टर मुजतबा हुसैन से राग नटवैरव। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में अब आप पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह मामला गंभीर है और इस पर ईमानदारी से व्यापक चर्चा होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने विपक्ष से आग्रह किया कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सरकार का साथ दें। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल फिलीपींस के मनीला में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं की बातचीत में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन की रोमानिया यात्रा पर हैं। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति

0: निकोसोर डैन, अंतरिम प्रधानमंत्री इली बोलोजान, सीनेट अध्यक्ष मिर्सिया अब्रुडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सोरीन ग्रिटियानो से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 19 तारीख से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सियानोस्का दाउकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कोपजे में आकाशवाणी संवाददाता सुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाउकोवा ने कहा कि पहले वे भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद भारत के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर उत्तरी मैसेडोनिया में हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा शुरू हुई। रेडियो ने आज़ादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जन जागरूकता के क्षेत्र में आकाशवाणी ने लोगों तक सही और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाई है। आज भी ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में आकाशवाणी की सेवाएँ जारी हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहैन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज हरारे में भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। उधर चीन के चांगझोउ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुडा को हराया। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान में भी आज तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Subhadra Ramachandran. President of North Macedonia, Gordana Silonovska Davkova, has said that it is a matter of pride that a woman is the president of world's largest democracy, India. Talking to Akashwani correspondent in Skopje, North Macedonia, Ms. Davkova said earlier she was impressed by India's long history and also spirituality. She said after meeting President Murmu, she was very much impressed. She said after meeting President Draupadi Murmu, she strongly felt that only women can change the world.
2: What is the most important? You have to be proud indeed of your nation. You have to be proud of your history. But also India has a woman as the president that is really something special, knowledgeable, with deep feelings, emotional intelligence.
1: Senior BJP leader, Union Minister JP Nadda, has said that the NEET paper leak issue raised by the students should not be politicized and it is not appropriate to take political advantage from this matter. Addressing media in New Delhi, Mr. Nadda said it is a matter of investigation and requires in-depth discussion. He said this is a serious problem which deserves a thorough and sincere discussion.
3: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर लीडिंग टू पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्वड एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्डेड, जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है.
1: The Union Minister said that NDA government, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, has taken up this matter very seriously. He reiterated the government's stand that it is ready for a discussion on need issue in Parliament and opposition should decide the duration of the debate. Mr. Nadda said Parliament is the most appropriate forum where in-depth discussion on the matter can take place. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar met his Canadian counterpart Anita Anand on the sidelines of Quad Foreign Ministers meeting in Manila, Philippines yesterday. In a social media post, Dr. Jayashankar said that India-Canada cooperation has been steadily growing. He said that the conversation focused on achieving the goals for the relationship set by the Prime Ministers of both the nations. The External Affairs Minister also met with his New Zealand counterpart, Winston Peters, and shared perspectives on the Indo-Pacific security situation. They also discussed enhancing maritime cooperation between India and New Zealand. National Broadcasting Day is being observed today. On this day in 1927, the first ever radio broadcast in the country went on air from Bombay Station under the Indian Broadcasting Company. On 8th of June in 1936, the Indian State Broadcasting Service became All India Radio, AIR. This day highlights the pivotal role broadcasting has played in India's development, educational outreach and cultural preservation. During the independence struggle, radio was a powerful tool for disseminating information and fostering unity. Post-independence, it has been instrumental in promoting literacy, health awareness and agricultural knowledge, especially in rural areas. In 1956, the name Akashvani was adopted for the national broadcaster. Since 1927, radio has been an important part of people's life in the country. Akashvani has been serving to inform, educate and entertain the masses, truly living up to its motto, Bahujana Hitaya, Bahujana Sukhaya. In men's cricket, first T20 international of three-match series between India and Zimbabwe will be played today in Harare. The match will begin at 4:30 p.m. Indian time. Shreyas Iyer, led India, will play the second T20 on Saturday and the third match on Sunday at the same venue. India held a commanding advantage over Zimbabwe in the shortest format of the game. The two teams have faced each other 14 times in men's T20 internationals, with India winning 11 matches and Zimbabwe 3. In China Open Badminton, PV Sindhu, Ayush Shetty and Lakshya Sen have entered singles pre-quarterfinals in Changzhou. Double Olympic medalist PV Sindhu advanced to the women's single second round after defeating fellow Indian player Unnati Hooda. And that is the end of this news bulletin.
4: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर. सुबह के 6:10 और 15 सेकंड हुए हैं. अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना.

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, TRM 810 किलो हर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है चिंतन। इसमें आज आप सुनेंगे महात्मा बुद्ध के सुख दुख पर विचार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है। आज के चिंतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे राकेश कुमार झा की लिखी हुई वार्ता महात्मा बुद्ध के सुख दुख पर विचार।
2: महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का केंद्र बिंदु मानव जीवन में सुख और दुख का विश्लेषण है। उनके विचारों ने जीवन के मूलभूत प्रश्नों जैसे सुख क्या है और दुख का कारण क्या है को गहराई से समझने में हमारी सहायता की है। महात्मा बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सुख और दुख हमारे जीवन का अविभाज्य हिस्सा है, लेकिन उनका दृष्टिकोण यह था कि दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है और इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का प्रस्ताव रखा। राजकुमार सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा में उन्होंने यह महसूस किया कि जीवन में दुख अनिवार्य है। बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में 4 आर्य सत्य बताए, जिनमें सबसे पहला सत्य है दुख का अस्तित्व। उनका कहना था कि जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, अलगाव और इच्छाओं की पूर्ति न होना, यही सब जीवन के दुख के आधार हैं। उन्होंने कहा कि दुख के बिना जीवन की वास्तविकता को समझ पाना कठिन है, क्योंकि दुख ही वह मार्ग है जो हमें आत्म जागृति और मुक्ति की ओर ले जाता है। बुद्ध ने अपने दूसरे आर्य सत में दुखों के कारणों की बात की। उनका मानना था कि दुख का मूल कारण हमारी तृष्णा अर्थात इच्छा है। यह तृष्णा केवल भौतिक इच्छाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक और भावनात्मक इच्छाओं का भी हिस्सा है। हम जीवन में अस्थायित्व और नश्वरता के बीच संतुलन नहीं बना पाते, शायद इसीलिए हम दुख का अनुभव भी करते हैं। महात्मा बुद्ध के तीसरे आर्य सत्य में दुख से मुक्ति का मार्ग बताया गया है। उन्होंने कहा कि दुख का अंत संभव है और इसे निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण का अर्थ है इच्छाओं का समर्पण और मन की पूर्ण शांति। जब हम अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं से मुक्त हो जाते हैं, तब हम दुखों से भी मुक्त हो जाते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा कि इस मुक्ति को पाने के लिए आंतरिक जागरूकता और ध्यान आवश्यक है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने विचारों को शुद्ध भी कर सकते हैं। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग अर्थात दुख से मुक्ति का मार्ग का सिद्धांत दिया, जिनमें उन्होंने

0: कई सारे आर्यसत्य बताए हैं। यह मार्ग हमारे लिए जीवन में संतुलन और सद्गुणों को लाने का साधन है। इनके 8 तत्व हैं। पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि, अर्थात सही दृष्टिकोण हो। किसी भी चीज़ के प्रति आपका जो नज़रिया हो वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। दूसरा है सम्यक संकल्प, सही इरादा, यानी किसी भी व्यक्ति का जो इरादा हो, जो उसके सोच हो, वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तीसरा है सम्यक वाणी, यानी आपकी जो वाणी हो ओजस्वी हो, मधुर हो। सम्यक कर्म, आपका जो कर्म हो, जो कार्य हो, वो भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। सम्यक आजीविका, सही जीवन यापन हो, यानी कि व्यक्ति जो अपनी आजीविका ले वो भी काफ़ी अच्छा हो। सम्यक प्रयास, यानी कि सही प्रयास, व्यक्तियों के द्वारा सही प्रयास भी किया जाना चाहिए, सही दिशा में अपने कार्य को अग्रसरित करना चाहिए। सम्यक स्मृति, इसके माध्यम से हम सही ध्यान करते हैं। और अंतिम है सम्यक समाधि, सही ध्यान की अवस्था। सही ध्यान की अवस्था, महात्मा बुद्ध का कहना था कि आप सही ध्यान की अवस्था में रहेंगे तो भी आप दुखों के सागर से दूर रहेंगे। इन 8 मार्गों का पालन करके हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं और जीवन में अस्थायी सुख प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध का यह मार्ग केवल आध्यात्मिक विकास का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक व्यावहारिक तरीका भी है, जो हमें मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन प्रदान करता है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस कांड। आज आप सुनेंगे बालकांड भाग 125।

जनकपुर में अपने चारों पुत्रों के विवाह का शुभ कार्य संपन्न होने के बाद महाराज दशरथ सभी सगे संबंधियों सहित अयोध्या लौटे। राजकुमारों की बारात की वापसी का समाचार पाकर अयोध्या में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। भेरी और शहनाई, नगाड़े और ढोल तथा शंख की मंगल ध्वनियां चारों दिशाओं में गूंजने लगीं। प्रसन्नता से झूमते नगर निवासियों ने घरों, बाजारों, गलियों और चौराहों तथा नगर द्वारों को तोरण और ध्वज पताकाओं से सजाया। घर घर मंगल कलश सजाए गए। अयोध्या का ये सजा संवरा रूप देखकर ब्रह्मा आदि देवता भी सिहाते हैं। राजमहल की रचना कामदेव के मन को भी मोहित करने वाली है। सामूहिक उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धारण करके राजा दशरथ के महल में सर्वत्र छा गया है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से बालकांड भाग 125। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, उसके बाद होंगे हिंदी में समाचार।

0: यत् एतत् अन्वेषणस्य विषयः अस्ति अथ अस्मिन् विषये गंभीरविमर्शस्य च आवश्यकता वर्तते। असौ एतदपि अवदत् यत् एषा गंभीरा समस्या अस्ति यस्याः विषये सम्यक् निष्कपटश्च विमर्शः अपेक्षितः।
1: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर लीडिंग टू पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्व्ड एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्डेड। जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः फिलीपींस देशस्य मनीला नगरे आयोजितस्य क्वाड देशानां विदेश मंत्रणां उपवेशनस्य अंतराले कनाडा देशस्य विदेश मंत्रिणा अनीता आनंद इत्यनया सह मेलनम् अकरोत्। असौ सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे अवदत् यत् भारत कनाडा देशयोः मध्ये सहकार्यं निरन्तरं सुदृढं भवति। असौ एतदपि उक्तवान् यत् उभयदेशयोः प्रधानमन्त्रिभ्यां निर्धारित लक्ष्याणां सिद्धि विषये वार्ता जाता। उत्तर मेसिडोनिया देशस्य राष्ट्रपति पदासीना गोर्दाना सल्जानोस्का दावकोवा इत्येषा अवदत् यत् विश्वस्य बृहत्तम लोकतन्त्रस्य भारतस्य राष्ट्रपतिः एका महिला अस्ति इति गौरवस्य विषयः अस्ति। सा एतदपि अवदत् यत् राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सह मेलनानन्तरं सा अतिप्रभाविता जाता तथा महिलाः विश्वे परिवर्तनम् आनेतुं समर्थाः सन्ति इति तया एतदपि अनुभूतम्। अद्य राष्ट्रिय प्रसारण दिवसः आचर्यते। अस्मिन्नेव दिवसे 27-1900 वर्षे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इत्यस्य संस्थानस्य अंतर्गते बॉम्बे केन्द्रात् देशस्य प्रथमं रेडियो प्रसारणं जातम्। 37-1900 वर्षे जून मासस्य 8 दिने इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस इत्यस्य नाम परिवर्त्य ऑल इंडिया रेडियो इति नाम स्थापितम्। अयं दिवसः भारतस्य विकासे शिक्षा प्रसारे तथा सांस्कृतिक रिक्थस्य संरक्षणे प्रसारणस्य महत्वपूर्णां भूमिकां प्रकाशयति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इनसे न केवल सरकार के कामकाज में सुधार होना चाहिए बल्कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भी प्रगति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित इस बैठक में शासन को मजबूत करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों को लागू करने में तेजी लाने पर चर्चा हुई। युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और युवाओं पर केंद्रित प्रयासों को एकीकृत करने वाली संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने में पीएम कुसुम योजना की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया जिसे किसानों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। सरकार संसद में नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये गंभीर समस्या है जिस पर ईमानदारी से बातचीत होना जरूरी है।
1: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
2: श्री नड्डा ने विपक्ष से आग्रह किया।

0: की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सरकार का साथ दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसर डैन, सीनेट अध्यक्ष मिर्सोआ अब्रुडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सोरेन ग्रिंडियानू से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 29 तारीख से मोल्दोवा और उत्तरी मैसेडोनिया की राजकीय यात्रा पर हैं। उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दोना सिल्जानोवस्का दाफोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कोपिये में आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में सुश्री दाफोवा ने कहा कि पहले वे भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित थीं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद भारत के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया है। अमेरिका की सेना ने लगातार 12वीं रात ईरान पर हवाई हमले किए। दोनों देशों के बीच संघर्ष तेज होने के साथ नागरिक बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना है जिससे वह समुद्री मार्गों से गुजरने वाले नागरिक और व्यावसायिक जहाजों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। ये हमले ऐसे समय में किए गए हैं जब अमेरिका होर्मुज जलडब्रू मध्य पर फिर से नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। रेडियो ने आज़ादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. President of North Macedonia, Gordana Silvanoska Davkova, has said that it is a matter of pride that a woman is the president of world's largest democracy, India. Talking to Akashvani correspondent in Skopje, North Macedonia, Ms. Davkova said earlier she was impressed by India's long history and also spirituality. She said after meeting President Murmu, she was very much impressed. She said after meeting President Draupadi Murmu, she strongly felt that only women can change the world.
2: What is the most important? You have to be proud indeed of your nation. You have to be proud of your history. But also India has a woman as the president that is really something special, knowledgeable, with deep feelings, emotional intelligence.
1: Prime Minister Narendra Modi has said that welfare of citizens must remain at the heart of all reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. He said reforms should not only improve the functioning of the government but also accelerate India's journey towards becoming a developed nation. Prime Minister made these remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors in advancing the vision of Vikasit Bharat. The meeting held at the Prime Minister's residence at 7 Lok Kalyan Marg focused on strengthening governance, improving inter-ministerial coordination and accelerating the implementation of reforms aimed at enhancing citizens' welfare. Senior BJP leader and Union Minister JP Nadda has said that the NEET paper leak issue raised by the students should not be politicized and it is not appropriate to take political advantage from this matter. Addressing media in New Delhi, Mr. Nadda said it is a matter of investigation and requires in-depth discussion. He said this is a serious problem which deserves a thorough and sincere discussion.
3: गहन चर्चा

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आप प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी निधि वर्मा। इस समय घड़ी में समय हुआ है 7:30 और 18 सेकेंड। तो आप लोग एक बात बताइए, आपकी चाय बनी या नाश्ता हुआ या नहीं? हुआ तो कोई बात नहीं, और नहीं हुआ तो भी अभी कोई बात नहीं, पहले अपने दिल का नाश्ता कर लेते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि खुद पर विश्वास कैसे करें। उससे पहले आपको सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

ये गाना सुनने के बाद उम्मीद करते हैं कि सबकी नींद अच्छी तरीके से खुल गई होगी और काफ़ी एनर्जी भी आ गई होगी, और हाँ ये भी लगा होगा कि सच में आप लोग हर मैदान फतेह कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक पर कि आप अपने पर विश्वास हमेशा रखें, क्योंकि दुनिया जो है ना, दुनिया ऐसी होती है कि आपको 100 बार बोलेगी तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, पर एक बार आपने अगर खुद से ये कह दिया कि मैं कर लूँगी या कर लूँगा, तो गेम वहीं पलट जाता है। तो आज के 30 मिनट सिर्फ आपके नाम, रेडियो ऑन रखो, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दो, और हाँ साथ में स्माइल भी।

देखो, बिलीव करने का मतलब आंख बंद करके विश्वास कर लेना या कुछ भी मान लेना नहीं होता है। बिलीव करने का मतलब होता है गिरने के बाद भी उठने की हिम्मत रखना। मुझे आज भी याद है कि कॉलेज में या और भी जगह स्टेज पर मुझे बोलते बोलते मैं डर लगता था। मैं माइक लेकर कभी बोल नहीं पाती थी और डर जाती थी। पर कभी कभी मुझे ये लगता है था कि मैं कर लूँगी कर लूँगी। यही सोचते सोचते देखिए ना कि एक बार और ट्राई करके आज देखो यहाँ बैठी हूँ ना, आपसे बात कर रही हूँ। तो सवाल ये नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, सवाल ये है कि आप खुद के लिए क्या सोचते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, या कभी आप माइक में बोले हों, या कभी स्टेज पर बोले हों, या कभी भी आपको ऐसा लगा हो कि आपसे नहीं होगा, तो हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है ip.radio.delhi@gmail.com। तो अब आप लोगों को ये गाना उन सब के लिए जो आज डर के बैठ गए, और उठो अपना दिन खुद बनाओ।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग और मैं हूं आपके साथ निधि वर्मा। और आज हम बात कर रहे हैं कि खुद पर विश्वास कैसे रखें। इसी के साथ आज हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक लड़की थी रिया नाम की। उसे घर वाले हमेशा कहते थे, नौकरी मत करो, शादी करो। रिया ने 2 साल तक चुपचाप ट्यूशन पढ़ाया, पैसे जोड़े और एक दिन अपना छोटा सा बेकरी खोला। आज उसकी बेकरी के आगे लाइन लगती है। जब किसी ने उससे पूछा, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, तो वो बोली कि जब तक मैं खुद पर विश्वास नहीं करती, दुनिया कैसे करेगी। बस यही बात है दोस्तों, पहले हाँ आपको खुद को बोलना पड़ेगा। अब 10 सेकंड के लिए आंख बंद करो और खुद से बोलो, मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ।

दोस्तों, बातें तो बहुत सारी होगी। अब एक छोटा सा चैलेंज लेकर आई हूँ। आज दिन भर में सिर्फ एक काम आप ऐसा करना जिससे आपको डर लगता है। छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी से हेल्प मांगना, नया आइडिया निकालना, जिम ज्वाइन करना, या बस खुद के लिए 15 मिनट निकालना और शाम को शीशे के सामने खुद को एक हाई फाई देना। याद रखो, कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता, वो हर छोटे शब्द में आता है कि मैं कर लूँगी, इससे बनता है। सो अपने पर विश्वास रखिए और आज दिन भर में कुछ ना कुछ एक ऐसा काम करिए जिससे आपको हमेशा डर लगता हो।

तो दोस्तों 30 मिनट कैसे निकल गए ये तो पता ही नहीं चला। बस इतना याद रखना कि दुनिया तब तक आप पर विश्वास नहीं करती जब तक कि आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे। तो आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये कार्यक्रम ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो आपसे बहुत जल्दी ही मिलूँगी एक नए टॉपिक के साथ। तो अपना ख्याल रखिए और अपने पर विश्वास रखिए। आपका दिन शुभ हो, और इस कार्यक्रम से अपनी दोस्त निधि को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल सरकारी कामकाज में सुधार लाना नहीं बल्कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा को गति देना है। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
5: बैठक में शासन को मजबूत करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों को लागू करने में तेजी लाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने का महत्व है। मंत्रालयों के बीच अधिक समन्वय का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को जन आंदोलन में बदलना चाहिए जिससे देश के युवा इस राष्ट्रीय मिशन की नींव बने। युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे

0: पर प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और युवाओं पर केंद्रित प्रयासों को एकीकृत करने वाली संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को भी मजबूत करने में पीएम कुसुम योजना की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया, जिसे किसानों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। भानु और सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने की बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
2: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
1: श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को समय सीमा तय करनी चाहिए और हर पहलू पर चर्चा होनी चाहिए ताकि एक ठोस नीति तैयार की जा सके। श्री नड्डा ने कांग्रेस और अन्य विपक्ष शासित राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी पर चुनिंदा घटनाओं का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया और कहा कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी इस मुद्दे से राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों को चालू करना है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संसद ने शांति अधिनियम 2025 पारित किया है, जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलता है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन में घोषित 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार की है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त निवेश से 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को और आगे बढ़ाना है। ये घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में की। दोनों क्लस्टर मनलूर और पिल्पाइकम में विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका

0: भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 29 तारीख से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। इससे पहले उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गॉर्डोना सियोनोस्का दाफकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कॉर्पियो में आकाशवाणी संवाददाता शुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाफकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं।
1: What is the most important?
2: सबसे महत्वपूर्ण और गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला हैं। मैं पहले से ही भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिकता से प्रभावित थी। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर मैं और अधिक प्रभावित हुई हूँ।
1: With deep feelings, emotional intelligence.
0: आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
3: राष्ट्र प्रसारण दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है और यह दिन हमें याद दिलाता है कि भारत के विकास, शिक्षा का प्रसार और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में प्रसारण की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज़ादी के आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक रेडियो ने लोगों तक सही जानकारी पहुँचाने, साक्षरता बढ़ाने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और किसानों को खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी देने में अहम योगदान दिया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वर्ष 1956 में राष्ट्र प्रसारक ने आकाशवाणी नाम अपनाया और इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। पीढ़ियों से आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती आ रही है। आज डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता और सरल पहुंच के कारण लोगों का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। प्रिया के साथ मैं दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब खेल समाचारों के साथ हैं चिराग झा।
4: प्रियंका, सबसे पहले बात 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की करते हैं, जिसका शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस वर्ष केवल 10 खेल शामिल होंगे। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। वहीं 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज हरारे में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। इस बीच चीन के चांगझोऊ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुड्डा को पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के यूशी तनाका को हराकर इस दौर के लिए जगह बनाई। खेल समाचार में फिलहाल इतना ही।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्वैच्छिक बंद और चक्का जाम हड़ताल जारी है। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों से आज पूरी ताकत के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। पाकिस्तानी विश्लेषक ओम प्रकाश दास ने बताया है कि चक्का जाम का आह्वान एक बहुत बड़ी घटना है।
5: पीओजेके में जो अवामी एक्शन कमेटी ने एक शक्ति प्रदर्शन का आह्वान दिया है अपने लोगों को, ये बहुत ही एक बड़ी घटना है, क्योंकि जैक को ऐसा लगा है कि पाकिस्तानी हुक्मरान ने उनको धोखा दिया। उन्होंने ये बयानबाजी किया कि जैक के साथ बात हो गई है, बात चल रही है और आगे प्रोटेस्ट खत्म होने हो रहा है। जैक ने ये बयान दिया, सरकार के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई है।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
6: धन्यवाद प्रियंका। संसद से जंतर मंतर तक गतिरोध तोड़ने को बड़े कदम, नीट पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन से जुड़ी खबरें आज भी दैनिक जागरण सहित सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है, सरकार के हाथ बढ़े पर विपक्षी अड़े, केंद्र सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, कॉकरोच जनता पार्टी को

0: बातचीत का प्रस्ताव दिया। दैनिक भास्कर ने सोनम वांगचुक के इस बयान को प्रकाशित किया है, युवाओं पर कार्रवाई न हो तो अनशन खत्म कर सकता हूं। अमर उजाला ने बताया है, जंतर मंतर पर फिर पथराव, 2 ACP समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। दैनिक जागरण ने चर्चा की प्रतीक्षा में संसद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि विपक्ष को परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने वाले ठोस तंत्र के निर्माण में सरकार को जवाबदेह बनाने का साथ उसका सहयोग भी करना चाहिए। यह तब संभव होगा जब इस पर संसद में गंभीरता से चर्चा होगी। राजस्थान पत्रिका की खबर है, पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में कांस्टेबल तथा राइफल मैन पदों पर 50% आरक्षण मिलेगा। उम्र तो बढ़ी पर बीमारियों के साए में बीत रहे जीवन के साल, दैनिक जागरण ने एक अध्ययन के हवाले से बताया है कि वर्ष 2023 में दुनिया भर में लोग अपनी पूरी जिंदगी का औसतन 14.5% हिस्सा अस्वस्थता में बिता रहे हैं।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says citizen welfare must remain at heart of reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. Union Minister JP Nadda says government ready to discuss neat paper leak issue in Parliament and formulate effective policy to ensure permanent solution to the issue. India to make 5 small nuclear power reactors operational by 2033. Centre approves 2 electronics manufacturing clusters worth 1,012 crore rupees in Tamil Nadu. President Draupadi Murmu to be on a 2-day visit to Romania beginning today. And 23rd Commonwealth Games to begin in Glasgow, Scotland today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that welfare of citizens must remain at the heart of all reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. He said reforms should not only improve the functioning of the government, but also accelerate India's journey towards becoming a developed nation. We have a report.
3: Prime Minister Modi made these remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors in advancing the vision of Viksit Bharat. The meeting held at the Prime Minister's residence focused on strengthening governance, improving inter-ministerial coordination and accelerating the implementation of reforms aimed at enhancing citizens' welfare. Highlighting the rapidly evolving governance landscape, Mr. Modi stressed the need to modernize governance processes in line with changing times. Calling for greater convergence among ministries, he said the vision of Viksit Bharat should become a Jan Andolan with the country's youth forming the foundation of this national mission. Addressing the issue of drug abuse among young people, Prime Minister stressed the need for an institutional mechanism that promotes coordination across departments and integrates youth-centric initiatives to tackle the challenge more effectively. On sports, Mr. Modi advocated an integrated development strategy to position India as a global sporting destination. Prime Minister also highlighted the transformative potential of the PM Kusum scheme in strengthening the agriculture sector through wider adoption by farmers. He further emphasized the need for a global mapping of skill requirements to align India's workforce with emerging international opportunities and future employment demands. With Bhanu and Suparna, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
2: Senior BJP leader and Union Minister JP Nadda has said that government is ready to discuss the neat paper leak issue in Parliament and formulate an effective policy to ensure a permanent solution to the issue. Addressing media in New Delhi, Mr. Nadda said, instead of indulging in blame games and constantly shifting the goalposts, the opposition should participate in a meaningful parliamentary discussion on the serious issue of

0: from 2028. Trump prescribes new pill. India side effects unlikely, states the Economic Times. And finally, the Financial Express, on its editorial page under the caption, "Oil on the boil again," writes, "Brent spot prices have gone well past $90 a barrel with the war clouds over West Asia. The prospect for costlier oil is bad news for countries like India that imports 88% of its energy requirements, which would widen its trade deficit and push up inflation." And with that, it's back to you, Sarabjit.
1: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says citizen welfare must remain at heart of reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. Union Minister JP Nadda says government ready to discuss NEET paper leak issue in Parliament and formulate effective policy to ensure permanent solution to the issue. India to make 5 small nuclear power reactors operational by 2033. Centre approves 2 electronics manufacturing clusters worth 1,012 crore rupees in Tamil Nadu. President Draupadi Murmu to be on a 2-day visit to Romania beginning today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहरियों की फलाह व बहबूद तमाम इस्लाहात का बुनियादी मकसद होना चाहिए और आवाम की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत के इकदाम तरतीब दिए जाने चाहिए। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि हुकूमत नीट पेपर लीक मामले पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है और इस मसले का मुस्तकिल हल यकीनी बनाने के लिए मौसर पॉलिसी तैयार करेगी। भारत साल 2033 तक 5 छोटे एटमी बिजली घरों को फाल बनाने का मंसूबा रखता है। मरकजी हुकूमत ने तमिलनाडु में 1,012 करोड़ रुपये मालियत के 2 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की मंजूरी दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया के 2 रोजा दौरे पर रहेंगी और मर्दों के क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 बैन अलाक्वामी T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज शाम हरारे में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहरियों की फलाह व बहबूद हर इस्लाह का बुनियादी मकसद होना चाहिए और हुकूमत के इकदाम अवाम की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख कर तैयार किए जाने चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्लाहात को न सिर्फ हुकूमत के कामकाज को बेहतर बनाना चाहिए बल्कि भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के सफ़र को भी तेज़ करना चाहिए। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वज़ीर आज़म मोदी ने यह बात सेक्रेटरियों के साथ एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए कही, जिसमें देही तरक्की, ज़राअत, समाजी बहबूद और दिगर मुतल्लिका शोबों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। ये मीटिंग वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर मुनक़िद हुई, जिसमें हुक्मरानी को मज़ीद मुअस्सर और मजबूत बनाने, मुख्तलिफ वज़ारतों के दरमियान तालमेल को बेहतर बनाने, अवामी फलाह के लिए इस्लाहात पर तेज़ी से अमल दरामद करने पर ज़ोर दिया गया। तेज़ी से बदलते हुए हुक्मरानी के मंजरनामे को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने बदलते हुए वक्त के मुताबिक हुकूमत के निज़ाम को जदीद बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि विकसित भारत का विज़न एक जन आंदोलन बनना चाहिए, जिसमें मुल्क के नौजवान इस कौमी मिशन की बुनियाद हों। उन्होंने नौजवानों में मुनशियात के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुख्तलिफ महकमों के दरमियान बेहतर तआवुन और नौजवानों पर मरकूज प्रोजेक्टों को मरबूत करने के लिए एक इदारा जाती निज़ाम कायम करने की ज़रूरत है, ताकि इस चैलेंज से ज़्यादा मौसर अंदाज में निपटा जा सके। इसके अलावा खेलों के शोबे में भी वज़ीर आज़म मोदी ने जामे और मरबूत तरक्की पर ज़ोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक जामे हिकमत अमली अपनाई जानी चाहिए, ताकि भारत को खेलों के आलमी मरकज़ के तौर पर कायम किया जा सके। उन्होंने PM कुसुम स्कीम की ज़रिए शोबे की कायापलट की सलाहियत को भी उजागर किया और कहा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस स्कीम को अपनाएं तो इससे ज़राअत को नुमाया फ़ायदा पहुँच सकता है। वज़ीर आज़म ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि दुनिया भर में दरकार महारतों का जामे जायज़ा लिया जाए, ताकि भारत की अफरादी क़ुव्वत को आलमी सतह पर उभरने वाले रोज़गार के मौके और मुस्तकबिल की मुलाजमतों की ज़रूरियात के मुताबिक तैयार किया जा सके। नई दिल्ली से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
2: सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर JP नड्डा ने कहा है कि तलबा की जानिब से उठाए गए नीट पेपर लीक मामले को सियासी रंग नहीं दिया जाना चाहिए और इस मामले से सियासी फायदा उठाना मुनासिब नहीं।

0: नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि ये जांच का मौजू है जिस पर तफसीली बातचीत की ज़रूरत है। जनाब नड्डा ने कहा कि पेपर लीक एक संगीन मसला है जिस पर संजीदगी से गौर खौज जरूरी है।
1: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर लीडिंग टू पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्वड एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्डेड। जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है।
0: मरकजी वजीर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में एनडीए हुकूमत ने इस मामले को इंतहाई संजीदगी से लिया है। उन्होंने हुकूमत के इस मौकिफ को दोहराया कि पार्लियामेंट में नीट के मामले पर बहस के लिए वो तैयार है और अपोजिशन बहस के दौरानिए का फैसला कर सकती है। जनाब नड्डा ने मजीद कहा कि पार्लियामेंट ही वो सबसे मुनासिब मौजू फोरम है जहां इस मामले पर तफसीली और जामे बहस की जा सकती है। जनाब नड्डा ने मजीद कहा कि अपोजिशन पेपर लीक जैसे संगीन मामले पर बामानी पार्लियामानी बातचीत की बजाय इल्ज़ाम तराशी का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक कौमी तशवीश का मामला है जो किसी एक हुकूमत या सियासी पार्टी तक महदूद नहीं है, लेकिन फिर भी अपोजिशन इस मामले को सियासी रंग देने में लगी हुई है।
1: मैं पूछना चाहूंगा विपक्ष के नेता राहुल गांधी से कि आप सिलेक्टिव क्यों हैं? आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा, क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है, आपका उद्देश्य एजुकेशन की क्वालिटी में बढ़ोतरी हो, स्टूडेंट्स को जस्टिस मिले, इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है।
0: जनाब नड्डा ने कांग्रेस और अपोजिशन की हुक्मरानी वाली रियासतों में मुख्तलिफ इम्तिहानात के पेपर लीक के मामले भी उठाए। उन्होंने कांग्रेस लीडर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी पर जानबदारी बरतने का इल्ज़ाम लगाते हुए सवाल पूछा कि वो इन वाकयात पर बात क्यों नहीं करते। जनाब नड्डा ने जनाब गांधी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इस मामले से सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, जो कि अफसोसनाक है। जनाब नड्डा ने कहा कि जनाब गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई प्रेजेंटेशन में 150 इम्तिहानी पर्चों के लीक होने से मुतालिक बात की। जनाब नड्डा ने मजीद कहा कि ये जांच का मौजू है और हुकूमत बिलाशुबा इसकी जांच करेगी और मुल्क और अवाम के सामने सच्चाई को पेश करेगी। हुकूमत ने नीट पेपर लीक मामले पर पार्लियामेंट में बामानी मुबाहसे के लिए तैयारी की बात दोहराई है। लोकसभा में कल इस बारे में इजहार ख्याल करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने कहा कि हुकूमत मुल्क के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए पार्लियामानी जवाबित के तहत इस मामले के सभी पहलुओं पर बामानी मुबाहसे के लिए तैयार है। जनाब रिजिजू का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब नीट पेपर लीक मामले तलबा के मुजाहरों समेत मुख्तलिफ मौजूदात पर पार्लियामेंट की कार्रवाई अपोजिशन के हंगामा आरई की वजह से कल लगातार तीसरे दिन भी रखना अंदाजी का शिकार रही। इस दौरान राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मरकजी वजीर तालीम के इस्तीफे के बगैर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। सामाजिक कारकुन सोनम वांगचुक ने कहा है कि अगर हुकूमत ये यकीन दहानी कराए कि नीट पर्चा लीक के खिलाफ एहतजाज करने वाले नौजवानों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे। मरकजी वजरा जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे गए खत में जनाब वांगचुक ने दोनों वजीरों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मंगल की रात अस्पताल में उनकी अयादत की। दिल्ली हाईकोर्ट ने कल मरकज और दिल्ली पुलिस से उन दरख्वास्तों पर जवाब तलब किया है जिनमें पार्लियामेंट की जानिब मार्च करने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ ज़रूरत से ज़्यादा ताकत के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया गया था। अदालत ने हुक्काम को हिदायत दी कि वो पुलिस कार्रवाई से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड महफूज रखें जिनमें CCTV कैमरों की फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल हैं। अदालत ने मुतालिका हुक्काम को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। मामले की अगली समाअत 11 सितंबर को होगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने इत्तला दी है कि कौमी राजधानी में सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अगले हुक्मनामे तक सुबह 7:30 बजे से 16 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। DMRC ने कहा है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सहूलत दस्तियाब रहेगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। एटमी तवानाई के महकमे के ममलकती वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हुकूमत साल 2033 तक स्वदेशी बनावट के कम से कम 5 छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियाई रिएक्टर्स को फाल करने का इरादा रखती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: लोकसभा में अपने तहरीरी जवाब में डॉक्टर सिंह

0: ने बताया कि पार्लियामेंट ने शांति कानून 2025 को नाफिज करते हुए प्राइवेट शराकतदारों के लिए न्यूक्लियाई तवानाई के शोबे के दरवाजे खोल दिए हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 220 मेगावाट का एक भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, 55 मेगावाट का एक रिएक्टर और एक हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर डेवलप कर रहा है जो हाइड्रोजन पैदा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने न्यूक्लियाई तवानाई मिशन के तहत ऐलान करदा साल 2047 तक 100 गीगावाट की न्यूक्लियाई बिजली सलाहियत हासिल करने के मकसद से रोड मैप वजह किया है। वजीर मौसूफ ने बताया कि रोड मैप के मुताबिक 8.78 गीगावाट की मौजूदा न्यूक्लियाई बिजली की सलाहियत के साल 2031-32 तक 22 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। ये हौसलियाबी उन प्रोजेक्टों के जरिए हासिल की जा सकती है जो फिलहाल नफाज के मुख्तलिफ मरहलों में हैं। नई दिल्ली से कमोदी पारिक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: मरकज ने तमिलनाडु में मजमुई तौर पर 1012 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से 2 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मिक्स्ड EMC को मंजूरी दी है। इस कदम का मकसद रियासत के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग माहौलियाती निज़ाम को मुस्तहकम करना और इस सेक्टर में भारत को खुद इन्हेसारी की सिमत में आगे बढ़ाना है। ये ऐलान कल लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने दी। दोनों मिक्स को मनालुर और पिलापक्कम में फरोग दिया जाएगा। मनालुर EMC 474.3 एकड़ रकबे पर फैला होगा और इस प्रोजेक्ट पर 587.47 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि पिलापक्कम EMC की तामीर 379.3 एकड़ में 424.55 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से होगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से 2 रोज़ा रोमानिया दौरे पर रहेंगी। इस दौरान सदर जमहूरिया मुर्मू रोमानिया के सदर निकोसरदान, उबूरी वजीर आज़म इली बोलोयान, सीनेट के सदर मिर्सिया अब्दुरिडियान और चेंबर ऑफ डिप्यूटीज़ के सदर सोरिन ग्रिंडेन्यू से मुलाकात करेंगी। इसके अलावा सदर जमहूरिया का रोमानिया भारत पार्लियामानी फ्रेंडशिप ग्रुप के अराकीन से मुलाकात का भी प्रोग्राम है। सदर जमहूरिया फिलवक्त शुमाली मकदूनिया के तारीखी दौरे पर हैं। ये मकाम न सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती बल्कि गोनागों तारीख और आलमी अहमियत की हामिल लेक ऑर्हिड के लिए जाना जाता है। इससे पहले शुमाली मकदूनिया की सदर गोर्डाना दावकोवा ने कहा कि यह फख्र की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत की सदर एक खातून हैं। स्कोपिये में आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए मोहतरमा दावकोवा ने कहा कि वो भारत की तवील तारीख और रूहानियत से काफ़ी मुतासिर हैं। आज नशरियात का कौमी दिन मनाया जा रहा है। साल 1927 में आज ही के दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से रेडियो नशरियात का आगाज़ हुआ था। 8 जून 1936 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम तब्दील करके इसे ऑल इंडिया रेडियो AIR रख दिया गया। ये दिन भारत की तरक्की, तालीम के फरोग और सकाफती विरसे के तहफ़ुज़ में नशरियात के अहम किरदार को उजागर करता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ये दिन भारत की तरक्की, तालीमी आगाही और सकाफती विरसे के तहफ़ुज़ में नशरियात के अहम रोल को उजागर करता है। आज़ादी की तहरीक से लेकर मुल्क की तामीर तक रेडियो ने मालूमात की तरसील, खानदगी के फरोग, सेहत से मुतालिक आगाही पैदा करने और ख़ासतौर पर देही इलाकों में ज़रिए मालूमात पहुँचाने में नहायत अहम किरदार अदा किया। कई नस्लों से आकाशवाणी अपने नस्ल-ओ-लैन, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के ऐन मुताबिक आवाम की को मालूमात, तालीम और तफरी फराहम करता आ रहा है। नई दिल्ली से दिल नशी आरजू की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
1: मर्दों के क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
0: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने वजीर खारजा SJ के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि सरहदी इलाकों में अमन इस्तेकाम भारत और चीन के दरमियान मामूल के ताल्लुकात की पहली शर्त। अखबार इनकलाब की सुर्खी है, खातून अरकान पार्लियामेंट पर काबिल एतराज़ तबसरे की पादाश में रुकन पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी इजलास की बकिया मुद्दत के लिए मुअत्तल। मुल्क में तैयार आबदोज शिकन जंगी जहाज INS मालवन बहरिया के बेड़े में शामिल, इस खबर को भी अखबारात ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबार की एक और सुर्खी है, अपोजिशन की हंगामा आरई की वजह से लोकसभा में मुसलसल तीसरे दिन वक्त पर सवाल नहीं हो सका। अखबार इनकलाब लिखता है, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दहशतगर्दाना हमले

0: हेड कांस्टेबल की मौत। अखबारात की बैनुल अक्वामी खबरें इस तरह हैं, ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बयान, ईरान के जौहरी तनसीबात के करीब अमरीका का हमला।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहरियों की फलाह व बहबूद तमाम इस्लाहात का बुनियादी मकसद होना चाहिए और आवाम की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत के इकदाम तरतीब दिए जाने चाहिए। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि हुकूमत नीट पेपर लीक मामले पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है और इस मसले का मुस्तकिल हल यकीनी बनाने के लिए मौसर पॉलिसी तैयार करेगी। भारत साल 2033 तक 5 छोटे एटमी बिजली घरों को फाल बनाने का मंसूबा रखता है। मरकजी हुकूमत ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए मालियत के 2 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की मंजूरी दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया के 2 रोजा दौरे पर रहेंगी। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 बैन अलाक्वामी T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज शाम हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 8:45 और ठीक 15 सेकेंड। अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे नीता माथुर का गायन, राग है बसंत मुखरी। तबले पर संगत कर रहे हैं शांति भूषण झा, हारमोनियम पर ललित सिसोदिया।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सर्वगंगा में आप सुन रहे थे नीता माथुर का गायन। राग था बसंत मुखरी। तबले पर संगत कर रहे थे शांति भूषण झा। हारमोनियम पर ललित सिसोदिया। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम उद्योग पत्रिका।

0: उद्योग पत्रिका।
1: नमस्कार, उद्योग पत्रिका में आप सबका स्वागत है। स्टार्टअप और उद्यमशीलता भारत में रोजगार सृजन का प्रमुख इंजन बन गए हैं, जिन्होंने अक्टूबर 2024 तक 16.6 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की हैं। लेकिन एक क्षेत्र में असफल होने पर व्यवसाय का परिवर्तन भी एक बहुत बड़ी चुनौती रही है और उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए अपने मापदंड होते हैं। सबसे बड़ी बाधा आती है वित्तीय चुनौतियों की। व्यवसाय परिवर्तन और उत्कृष्टता के लिए वित्तीय रणनीति, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी फॉर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सलेंस। अधिक जानकारी के लिए सुनिए श्री अभिषेक शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट CFO, विनिर्माण वित्त विशेषज्ञ से कमल किशोर की ये बातचीत।
2: दोस्तों, आज के कॉम्पिटेटिव दौर में केवल अच्छा उत्पाद या अच्छी सेवा ही किसी व्यवसाय की सफलता की गारंटी नहीं है। बदलते बाजार, डिजिटल तकनीक, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ताओं की बदलती अपेक्षाओं के बीच किसी भी संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत वित्तीय रणनीति अत्यंत आवश्यक हो गई है। वित्तीय रणनीति किसी भी व्यवसाय की वो योजना होती है जिसके माध्यम से आय, व्यय, निवेश, बचत और जोखिम प्रबंधन को संतुलित किया जाता है। यह रणनीति व्यवसाय को यह तय करने में मदद करती है कि संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए, कहां किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लाभ और स्थायी विकास सुनिश्चित हो सके। इन सबके लिए एक अच्छे वित्तीय प्रबंधक, जानकार या सलाहकार की आवश्यकता होती है। हम आपका अभिषेक जी स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं।
3: नमस्कार कमल जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका।
2: अभिषेक जी, आजकल देखा जाता है कि जो व्यवसाय में रोज रोज कभी कभी परिवर्तन होते हैं और उसके साथ में हमें चलना पड़ता है बिजनेस एक्सेलेंस के लिए, इसमें कई प्रकार की चीजों की आवश्यकता होती है, कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, रणनीति बनानी पड़ती है। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी बात होती है वो है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए, वित्तीय रणनीति हम कैसे बनाएं इसके लिए। तो आप इसे किस प्रकार से परिभाषित करेंगे
3: कमल जी?

0: आपने एकदम सही कहा कि अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें अलग अलग तरह से हमको करना चाहिए, और इसमें कुछ बातें बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली होती हैं कि पहली बात तो हम जो भी कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा आने वाले समय में, हमारे 3 साल 5 साल में, उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आने वाला है. सो ROI जिसको कहते हैं, ROI इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए हमको एक प्लान बना के चलना पड़ता है. अगर एक होता है इमोशनल डिसीजन और एक होता है फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन को इमोशनल डिसीजन से पहली बात तो अलग रखना चाहिए. जस्ट बिकॉज हमारे पूर्वज एक तरह से या हमारे पिता एक तरह से कर रहे थे, तो आज के संसार में क्या वो सही है? आज मैं देखता हूं कई सारी MNCs हैं और कई MSME कंपनी हैं, यानी कि छोटी बड़ी कंपनियां हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जिसको कहते हैं, वो कई बार फैमिली रन एंटरप्राइज की तरह पुराने ढंग से भी करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट्स, और पूरी तरह प्लानिंग नहीं करते, और वहीं पर उनकी कई बार गलती हो जाती है.
1: यानी कि वो जो इन्वेस्टमेंट होती है या फिर जो सेविंग्स होती है या फिर जो प्लानिंग होती है वो ट्रेडिशनल तरीके की होती है, जिसकी वजह
0: जी
1: से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, नई सोच नई तकनीक को अपना नहीं पाते हैं।
0: आज के दिन में जैसे आपने टेक्निक की बात करी, AI एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसको हमको यूज करना चाहिए. AI से बचना नहीं चाहिए क्योंकि AI हमारे साथ हमारे जीवन में है. इसको हम अच्छे तरह से प्रयोग कैसे कर सकते हैं, एंड अगर हम सही तरह से बजट करें, जैसे आपने बजट की बात करी, हम कंट्री का भी बजट, देश का भी बजट बनाते हैं, उसी तरह हमको हर कंपनी का बजट बनाना चाहिए,
1: जी
0: और 3 साल का एक समय लेके चले कि 3 साल में हमको ये इस प्रॉफिटेबिलिटी पे पहुंचना है. मतलब
1: यानी
0: कोई भी
1: कि
0: कंपनी आज अगर स्टार्ट हो रही है तो उसको 3 साल में टर्न अराउंड करना है.
1: हम सबके दिलो दिमाग में भी ये बसा हुआ है कि हमें एक विकसित भारत बनाना है 2047 तक। इसमें वित्तीय यानी कि फाइनेंस का किस प्रकार का रोल होगा?
0: देखिए, अगर विकसित भारत की बात करें तो इकोनॉमी जो होती है वो एक किसी भी कंट्री की रीढ़ होती है,
1: जी
0: किसी भी देश की बैकबोन होती है. इकोनॉमी पे फोकस करना सबसे बड़ा उसका काम है. अगर हमको विकसित भारत करना है तो इकोनॉमी हर तरह से आती है. इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास सही ढंग से इन्वेस्टमेंट्स आए, बाहर का इन्वेस्टमेंट भी आए, और खाली हम बाहर की कंपनी को अपने यहाँ पे तो जगह दे रहे हैं, पर हमारी खुद की कंपनियों को भी MNCs बनना चाहिए. हमारी कंपनियां बाहर जाकर व्यवसाय करें, बिजनेस करें और वहां पर कमाई करें, वो बहुत जरूरी है.
1: जी, और इसके लिए जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने हर बार स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दिया है, हर जगह स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया है, वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल जो हेल्प होता है, असिस्टेंस होता है, उसके भी सरकार की ओर से भी मदद की जाती है। तो जो व्यवसाय में जो उत्कृष्टता है, बिजनेस एक्सेलेंस है, उसको प्राप्त करने के लिए, उसे हासिल करने के लिए किस प्रकार की वित्तीय रणनीतियां अपनाई जाए?
0: बिजनेस एक्सेलेंस या बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए फाइनेंशियल एक्सेलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है और फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है. इसके लिए आज के दिन में कई सारे CFOs, कई सारे सलाहकार मौजूद भी हैं. अगर मैं ये स्पेशली कहना चाहूंगा उन स्मॉल एंड मीडियम कंपनी से जो फुल टाइम CFO नहीं भी रख सकते हैं, एटलीस्ट एक सलाहकार जरूर रखना चाहिए. जिस प्रकार हमारे पास एक पहले डॉक्टर होता था
1: जी हाँ.
0: हमारी हेल्थ देखने के लिए, उसी तरह हमारे पास फाइनेंशियल हेल्थ देखने के लिए भी एक सलाहकार होना चाहिए. विकसित भारत की अगर हम बात करते हैं तो विकसित भारत के लिए कई सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट लेके आई हैं. जैसे गिफ्ट सिटी की बात कर सकते हैं हम, जो गुजरात में है, वहां पे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो इट इज ट्रीटेड एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसमें टैक्स में काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं, और फेमा के रूल्स काफी चेंज हो चुके हैं. अब हमको काफी आसानी है हमको अगर हम बाहर कहीं इन्वेस्ट करना चाहें और बाहर से कुछ हम कमाना चाहें तो. सो फॉर इंडियन कंपनीज ऑल्सो बहुत ईजी हो गया है बाहर निवेश करना, आउट ऑफ कंट्री निवेश करना
1: जी.
0: और स्मॉल कंपनीज के लिए या किसी भी कंपनी के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है जिसको मैं बोलता हूँ ORSAP. ये बेसिकली इसको अगर हम बड़ा करें, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन. आप ऑर्गेनाइजेशन वाइड क्या करना चाहते हैं और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. आर का मतलब होता है रिस्क, जैसे आपने बोला रिस्क, तो हमको लिखना चाहिए कि इस ऑब्जेक्टिव को पाने में क्या क्या कठिनाई आ सकती है, वो सब आपका रिस्क है. ए का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी, उसमें आपको अकाउंटेबल होना चाहिए कि एक एक डिपार्टमेंट की क्या अकाउंटेबिलिटी है, उन सबको पता हो. एस का मतलब होता है स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी बनाइए जिसके हिसाब से आप वो रिस्क को पार कर सकें. और पी का मतलब होता है प्लान. अगर आप प्लान करके चलते हैं और एक एक चीज का, जैसे हमने बताया 3 साल के अंदर में, मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी कंपनी ब्रेक इवन कर सकती है, प्रॉफिटेबिलिटी ला सकती है, कोई नई से नई कंपनी भी.
1: मुद्रा लोन तो ये किस प्रकार से मददगार साबित हो सकता है छोटी छोटी कंपनियों के लिए खासकर?
0: देखिए, छोटी कंपनियों के लिए मुद्रा लोन एक बहुत बड़ा लाइफलाइन है, ये एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी. और जिस भी कंपनी को, ये छोटी कंपनी है जिसको जरूरत है बहुत ज्यादा, ये उसका उपयोग ले सकते हैं. वैसे आज के दिन में हमारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, हमारे पास मुद्रा लोन तो है ही, पर कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया था फैमिली ओरिएंटेड कंपनीज, उनको कभी डाइल्यूशन का भी सोचना चाहिए। 5-7% डाइल्यूट करके अगर हम अच्छी इक्विटी ला सकें या अच्छे लोग ला सकें या प्रोफेशनल्स ला सकें, शायद अच्छा हो सके।
1: स्टार्टअप्स के विकास के लिए या डेवलपमेंट के लिए कई प्रकार की रणनीति बनाई जाती है, इन स्टार्टअप्स के लिए रणनीति, वित्तीय रणनीति कितना मायने रखती है?
0: स्टार्टअप्स के लिए कोई भी वित्तीय रणनीति या फिर बिजनेस एक्सीलेंस की बात करें या फाइनेंशियल एक्सीलेंस की बात करें तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है।

0: क्योंकि स्टार्टअप का जो भी निवेश कर रहे हैं स्टार्टअप में इनिशियली, वो इसीलिए करते हैं कि वो उससे फायदा ले सकें, उससे 2 साल में 3 साल में उसका कुछ बेनिफिट ले सकें और उसकी जो वैल्यूएशन है वो बढ़ सके।
1: जी जी,
0: सब इसी के लिए करते हैं। आज के दिन में स्टार्टअप्स को दो चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एक, टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना चाहिए। कोई भी स्टार्टअप बिना टेक्नोलॉजी के ना चले और ना ही आप उसको चलाएं। टेक्नोलॉजी का सहयोग जरूर लें, अगर आपकी पूरी टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है तो एटलीस्ट टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट जरूर होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच करना है और ये देखना है कि आज हमारे यहाँ क्या परेशानी है, उस परेशानी को अगर आप दूर कर सकें, यू कैन डू एनीथिंग।
1: आजकल देखा जाता है कि तकनीक का युग है, एआई का भी युग है, डिजिटल तकनीक का युग है, तो इसके माध्यम से इसने पूरी कार्यशैली को, कार्य प्रणाली को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। संस्था या कंपनी की सफलता के लिए ये डिजिटल तकनीक, एआई वगैरह, ये सब कितना महत्वपूर्ण है?
0: ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको सक्सेसफुल कंपनी बनना है तो एआई से मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि एआई इज हियर टू स्टे, वो यही है और हमको उसको साथ लेके चलना है। हम कोडक का एग्जांपल ले लें। कोडक पुराने जमाने के कैमरे बनाते थे, आज वो कंपनी खत्म हो चुकी है। पहले वीडियो कैसेट्स आते थे, आज वो वीडियो कैसेट्स नहीं है। तो हाउ वी कैन एक्चुअली डू बेटर, तो हमको टेक्निक और टेक्नोलॉजी के ऊपर जरूर हमको साथ रखना है। रिस्क मैनेजमेंट के 4 ही तरीके होते हैं किसी भी रिस्क को मैनेज करने के लिए।
1: जी,
0: सबसे पहला तरीका होता है, कोई अगर रिस्क आपकी तरफ आ रहा है उसको आप टर्मिनेट करिए, उसको आप खत्म करिए। सेकेंड तरीका होता है कि अगर आप वो उसको खत्म नहीं कर पा रहे हैं तो उसको आप ट्रीट करिए, कोई उसका इलाज करिए कि वो आपको इतना हानि ना पहुंचाए। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं रिस्क फिर भी है तो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका एक बहुत सीधा उदाहरण होता है इंश्योरेंस। अगर आपके पास रिस्क तो रहता ही है कि कभी आग लग सकती है, कभी कुछ हो सकता है, तो उसका एक इंश्योरेंस करा लीजिए। इंश्योरेंस के भी अलग अलग तरीके होते हैं, डायरेक्ट इंश्योरेंस भी हो सकती है और भी तरीके हो सकते हैं कि आप एक पार्टनर ले आए जिसको आधा आपने रिस्क दे दिया। और फाइनली जो एकदम बचा हुआ रिस्क बचता है उसको टेक करें। 4 T होते हैं, टर्मिनेशन, ट्रीटमेंट, ट्रांसफर एंड टेक। ये 4 T से आप किसी भी रिस्क को, अगर आप प्लान ढंग से बना रहे हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहे हैं और ये 4 रिस्क लेके चल रहे हैं, कोई भी स्टार्टअप सक्सेसफुल हो सकती है।
1: तो इसमें क्या फाइनेंस के लिए भी किया जा सकता है?
0: बिल्कुल, ये फाइनेंस के लिए करना जरूरी है, क्योंकि किसी भी फाइनेंशियल मॉडल अगर आप बनाते हैं, कोई भी स्टार्टअप चालू करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है देखना कि आपकी फाइनेंशियल मॉडलिंग ये 4 T के अनुसार चल रही है कि नहीं।
1: जो मैनेजमेंट होता है उसमें किस प्रकार से इसे मैनेज किया जा सकता है?
0: जब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट हर एक इंसान को, हर एक डिपार्टमेंट को टच करके जाता है, क्योंकि रिस्क किसी भी चीज किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर एचआर की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स जिसको कहते हैं, अगर किसी कंपनी में अच्छे टैलेंट नहीं टिक रहा है या लोग नहीं टिक रहे हैं, भाग रहे हैं, तो वो एक रिस्क है। उसको कैसे एचआर मैनेज करेगा, वो एचआर डिपार्टमेंट का काम है।
1: जी जी,
0: सेल्स का काम है कि अगर उनके पास अच्छे ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, अच्छा क्लाइंट कन्विंस नहीं हो रहे हैं, वो एक रिस्क है। फाइनेंस का काम है कि अगर वो ठीक से अपना कॉस्ट मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, वो फाइनेंशियल रिस्क है। तो कोई भी रिस्क मैनेजमेंट मॉडल अगर हम लगाते हैं किसी कंपनी में, वो हर डिपार्टमेंट को टच करता है।
1: और वैसे देखा जाता है कि कभी भी किसी बिजनेस की ताकत होती है, वो सबसे बड़ी ताकत होते हैं उसके एम्प्लॉई। और यदि संस्था अपने मानव यानी कि एचआर के विकास में निवेश करती है, उसका ध्यान रखती है, ख्याल रखती है, तो उसकी उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी में और उसकी क्वालिटी में दोनों में डेवलपमेंट होता है, वृद्धि होती है, तो इसे किस प्रकार व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है?
0: ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करी है आपने कमल जी, कि कोई भी संस्था है उसके चलाने वाले तो इंसान ही होते हैं, और इंसानों को ट्रेनिंग की, उनको डेवलपमेंट की, का ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहीं पे एचआर एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि ये देखने के लिए कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारा काम कर रहे हैं, उनका हम बेहतर ख्याल कैसे रख सकते हैं। ओनली हैप्पी एम्प्लॉयज मेक प्रोडक्टिविटी। अगर कोई अनहैप्पी है, खुश नहीं है, दुखी है, परेशान है किसी चीज से, तो वो काम में भी मन नहीं लगाएगा, अल्टीमेटली कस्टमर्स खुश नहीं होंगे। आपने खुद देखा होगा, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो किसी दिन, तो अगले दिन आपका मन नहीं लगता काम में, आप चिड़चिड़ाए से रहते हैं। यही चीज है अगर एम्प्लॉयज के साथ भी, अगर किसी एम्प्लॉय को किसी प्रकार की परेशानी है, उसका आप ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो उसका मन नहीं लगेगा काम में और अल्टीमेटली वो बैलेंस शीट में दिखाई देगा उसका असर। अगर हमने कोई एम्प्लॉय रखा और उसकी सैलरी हमने बहुत ज्यादा कर दी, लेकिन हम उसको रोज प्रताड़ित कर रहे हैं, रोज डांट रहे हैं, क्या वो खुश रहेगा?
1: नहीं।
0: खाली सैलरी हाइक एक मात्र चीज नहीं होती है। सैलरी हाइक तो है ही कि हमको एटलीस्ट सैलरी इस मार्केट के अनुसार देनी चाहिए। ऐसा नहीं करें कि किसी का शोषण कर रहे हैं, किसी का फायदा उठा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव सैलरी दीजिए, लेकिन साथ में उसका और बेनिफिट भी करिए कि कभी उसको अगर जरूरत है तो उसकी छुट्टी दे दीजिए, कभी उसको जरूरत है तो उसका ख्याल रख लीजिए, उससे बात ठीक से करिए, उसको एनकरेज करिए। अगर आपको उसको समझाना है तो एक मेंटर की तरह समझाएं, जिससे उसको गाइडेंस मिल सके, और उसको ये समझाएं कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एक फाइल रखना हर एक एम्प्लॉय की, उसका गोल क्या है, फ्यूचर में वो क्या करना चाहता है, और हमें ट्राई करना चाहिए कि हम उसकी गोल में उसका सहयोग करते रहें। अगर वो जनरल मैनेजर बनना चाहता है, कोई हमारे यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव लेवल पे आया है, जूनियर लेवल पे आया है, उसका गोल है मैं 10 साल में GM लेवल बनना चाहता हूँ, आप उसको कैसे गाइड कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं कि 10 नहीं तो

0: 12 साल में आप अपनी कंपनी में ही बना सकते हैं, आपकी कंपनी भी ग्रो करेगी और साथ में वो भी ग्रो करेगी। कोई अगर चाहता है, जैसे आपने बताया कि मेरी सैलरी बढ़ा दी जाए, 30% बढ़ा दी जाए, उसको बताना जरूरी हो जाता है कि अभी जो तुम काम करते हो इसके हिसाब से ये सैलरी शायद नहीं मिल पाए आपको, काम यहाँ पे ये आप गलत कर रहे हैं, ये आपको ठीक करना चाहिए, इतना और बढ़ा सकते हैं, और उसको गाइड करें कि वो काम कैसे बढ़ाए। और अगर वो काम उस लाइक बनता है, कंपनी को भी फायदा होता है, तो डेफिनेटली हमको शेयर भी करना चाहिए।
1: जी जी,

0: ये एक धारणा है आज के दिन में जो कि सही नहीं है, क्योंकि कई ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जो बहुत सस्ते ढंग से आपके लिए एक ऐप बना सकते हैं। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप
1: जी
0: अगर मेरे को डायरेक्टली रीच आउट करें मे बी, लेकिन कई सारे ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि डायरेक्ट आपके लिए एप्लीकेशन बना सकते हैं। कई सारे AI मॉडल्स हैं जो आपके लिए, और आपको बहुत ज़्यादा उसमें खर्च नहीं करना पड़ता है, और कई तो मंथली सब्सक्रिप्शन बेस पे भी चलते हैं। तो कहीं नहीं लिखा कि आप अपना खुद का AI बनाइए, जो AI अवेलेबल हैं उसमें से आप बहुत कुछ बना सकते हैं।
1: अभिषेक जी, आप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की भूमिका में रहे हैं, तो आपने इन 23 वर्षों में, जैसे कि आपका अनुभव है, उसमें आपने किस प्रकार का बदलाव देखा है?
0: ये बहुत बड़ा सवाल है। इस 23 वर्षों में मैंने जो देखा है कि काफी हद तक हम लोग अपने बारे में अब थोड़ा सा सोचने लगे हैं। पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो 10-10, 12-12 घंटे, 14 घंटे काम करना भी नॉर्मल था, पर अब जो जनरेशन है, जेन जी जिसको कहते हैं, वो थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में भी सोचता है और अपनी सेहत के बारे में जरूर सोचता है। ये अच्छी चीज़ है, सेहत के बारे में भी सोचना चाहिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उद्योग पत्रिका, और आइए अब सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: इस दा विस्तार हुण पंजाबी, तमिल, कन्नड़, गुजराती, बंगाली, मराठी, उत्तर पूर्वी, तेलगू अते उर्दू भाषावां तक भी हो रहा है। न्यूज़ सर्विस डिवीजन ने 20 मई 2013 नूं सोशल मीडिया सैल की स्थापना की। नाटक ते डाकूमेंट्रियां दे प्रसारण दा गौरवशाली इतिहास है। भारत, ईरान, दक्षणी कोरिया अते मलेशिया दे लोकां दी रेडियो डाकूमेंट्रियां विच बहुत रुचि है। ऑल इंडिया रेडियो दी सेंट्रल ड्रामा यूनिट राष्ट्रीय पद्धर ते नाटकां दा प्रसारण करदी है। खेतरी स्टेशन इहनां दा अनुवाद करके अगे प्रसारण करदे हन। ये नाटक राष्ट्रीय ते खेतरी स्टेशनां उपर 22 भाषावां विच इक्को समय नालों नाल पेश कीते जांदे हन। इस वल्लों लड़ीवार नाटक भी प्रसारित हुंदे हन। राष्ट्रीय ते अंतरराष्ट्रीय पद्धर उपर हुंदी खेडां दी हर तरह की जानकारी नूं ऑल इंडिया रेडियो दिलचस्प ढंग नाल लोकां तक पहुँचाउंदा आया है। भारत की अधिकतर वसों पिंडां विच रहिंदी है। सहूलतां की अनहोंद कारण किसान महत्वपूर्ण जानकारियों तो दूर रह जाते हैं। इस हालत में आकाशवाणी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने खेती आधारित प्रोग्रामों राही हरी क्रांति विच विशेष योगदान पाया है। जमीन ते पानी की सांभ संभाल, बायोटेक्नोलॉजी, कीड़ेमार दवाइया, फसल बीमा स्कीम, पंचायती राज सिस्टम तो इलावा लोगों के अधिकारों बारे प्रोग्रामों ने देहात विच जागृति लियांदी है। फसलों के भाव ते मौसम की जानकारी के प्रसारण नाल किसान अपने आप नू योजनाबद्ध करन विच सफल हो रहे हैं। 15 फरवरी 2004 नू ऑल इंडिया रेडियो वल्लों खेती मंत्रालय नाल मिलके शुरू किया प्रोग्राम किसान वाणी 96 FM चैनलों तो प्रसारित हो रहा है। स्वच्छ भारत अभियान ते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वर्गियां स्कीमां नू समाज दे आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाउण विच रेडियो ने श्लाघायोग हिस्सा पाया है। ऑल इंडिया रेडियो नैटवर्क के कोई 225 चैनलों उपर सेहत ते परिवार कल्याण नाल संबंधित प्रोग्राम प्रसारित हो रहे हैं। इन्हां प्रोग्रामों राही छोटा परिवार, गर्भ की रोकथाम के तरीके, बांझपन, नरोई खुराक, टीकाकरण, माँ के दुध के फायदे अते व्याह की उम्र वधाउण बारे जानकारी मुहैया की जाती है। रेडियो टाक, चर्चा, निक्कियां कहानियां अते फोन इन प्रोग्राम करके माहिरां दी राय भी शामिल की जाती है। लाभपात्रां दीआं मुलाकातां नाल लोकां विच उत्साह भरन दे उपराले भी हुंदे रहिंदे हन। औरतां नूं वधेरे साधन संपन्न बनाउणा ऑल इंडिया रेडियो दा महत्वपूर्ण टीचा रहा है। औरतां प्रति समाजिक व्यवहार नूं बदलण बारे विशेष प्रोग्राम प्रसारित कीते जांदे हन। औरतां दे शक्तिकरण लई उहनां दे समाजिक आर्थिक विकास, विज्ञानक घरेलू प्रबंध, लिंग भेदभाव समेत हर तरह की सिक्ख्या आदि नूं वन सवन्ने तरीके नाल पेश कीता जांदा है। बच्चों के अधिकार, खास करके बाल मजदूरी, कुड़ियों ते औरतों नूं समान अधिकार, कुड़ियों नूं मुढ़ली सिक्ख्या, बच्चों नूं सुरक्षित ते सहायक वातावरण, साफ सुथरे पीण वाले पानी की सहूलत अते साफ सफाई बारे समाजिक चेतना पैदा करन लई पूरा साल प्रोग्राम चलते रहिंदे हन। सुनामी, हड़, तूफान आदि किसी भी कुदरती आफत विच लोकां नूं जागरूक कराउण विच रेडियो प्रसारण सब तो सस्ता ते पहुँच विच होण करके वधेरे लाभकारी है। ये प्रोग्राम विशामारां दी मदद नाल तैयार किए जाते हैं। सुनामी, तूफान ते हड़ा मौके टीवी चैनल ते वाईफाई तो फिर सकते हैं, पर रेडियो हमेशा लोगों का साथ निभाउंदा आया है। स्मार्टफोन ते अनलिमिटेड इंटरनेट डाटा खरीदण तो असमर्थ कोई साधनहीन व्यक्ति बड़ी आसानी नाल रेडियो नूं माण सकता है। हौली हौली रेडियो प्रसारण ने शहरी ते देहाती लोगों विच अपनी अजिही छाप छड्डी है कि टीवी चैनल नालों भी ज़्यादा विश्वास ऑल इंडिया रेडियो दीआं खबरां उपर करदे हन। रेडियो उपर लोकां दे सुझाव ते प्रोग्रामां संबंधी उहनां दी राय वी लई जांदी है। लोकां नाल संपर्क दी दिशा विच आकाशवाणी वल्लों चल रिहा प्रधानमंत्री दा प्रोग्राम मन की बात प्रसारण दी एक महत्वपूर्ण प्राप्ति कही जा सकती है। प्रसारण दा इतिहास बहुत गौरवशाली है। इस ने समाज दे हर विषय उपर अपना ध्यान केंद्रित करके देश दी तरक्की ते खुशहाली विच प्रशंसा योग भूमिका निभाई है। इस दे नाल नाल इसने लोकां दा विश्वास भी जित्तिया है। आस है कि भविख विच लोग इस उपर अपना विश्वास बनाई रखणगे। ऑल इंडिया रेडियो भी लोकां दी उम्मीदां उपर खरा उतर रहेगा।
1: हुणे असी पृथ्वी राज थापर पासो वार्ता सुन रहे सी, जिसका विशा सी भारतीय प्रसारण दा सफर। आओ हुण सुनदे हां कुछ लोक गीत। सब तो पहला लोक गीत दीदार संधु दी आवाज विच सुनदे हां। उठदी बैंदी जी जी करदी तेनू तेरी हूर, वे न मार जालमा वे पेके तत्तड़ी ते दूर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर दोहराया है कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घोषणा की कि सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगों के बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर

ही पसंद के हम गीत सुनवाते हैं और आपके मैसेजेस और मेल लेते हैं। चलिए बिल्कुल लेंगे आपके मैसेजेस, मेल और गीत तो आपके पसंद के वाकई बहुत खूबसूरत होते हैं। तो सबसे पहले मैं कहूँगी आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, और मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त शोभा शर्मा। तो स्वीकार भी कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक बात ना, बड़ी देर से मैं सोच रही थी कि कभी कभी कई कई आदतें होती हैं हमारी, बल्कि सभी की कुछ ना कुछ आदतें होती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी आदतें होती हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है कि पहले हम अपनी आदतें बनाते हैं और फिर हमारी आदतें हमें बनाती हैं। ये बात तो बिल्कुल पक्की बात है, क्योंकि कभी कभी हम डिसिप्लिन में नहीं होते हैं तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, और डिसिप्लिन में होते हैं तो अच्छी होती हैं, और कुछ आदतें हमारी अच्छी होती हैं तो हमें फ़ायदा ही पहुँचाती हैं। तो जब आज आप सुबह जब आपकी आँख खुली तो आपने सबसे पहले क्या किया? मोबाइल स्क्रॉल किया या गहरी सांस लेकर भगवान को शुक्रिया कहा? हमारी छोटी छोटी रोज़ की आदतें तय करती हैं कि हम लाइफ में कहाँ पहुँचेंगे। जी हाँ बिल्कुल। चलो आदतों की बात चल रही है तो चलिए आज शुरुआत करते हैं, और सच सच बताना आप मुझे कि सुबह का जो अलार्म बजता है तो आप कभी सुबह स्नूज करके बटन दबाकर 5 मिनट और सोने की बुरी आदत किस किस की है, और इस 5 मिनट के चक्कर में किस किस की सुबह की ट्रेन छूटी है या बॉस से डांट पड़ी है? तुरंत मुझे बताइएगा, बिल्कुल मैसेज बताइएगा, और कोई मज़ेदार कहानियाँ हो इस वजह से तो भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे

0: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम आपकी पसंद में। जी हाँ, फिल्मी संगीत का कार्यक्रम जिसमें होते हैं आपके संदेश, और संदेशों का सिलसिला तो शुरू हो चुका है। हमें बहुत से संदेश आ चुके हैं, तो चलिए ले लेते हैं। हम ये जो संदेश आया है, हमें आया है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू का, और डुमराव बिहार से इनके साथ हैं डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, और इन्हीं के साथ है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य और परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से इनके साथ जुड़े हैं राज SD अंसारी और आसमा खातून अंसारी जी। और ये अगला जो संदेश हमें आया है सनावत से शेख मूसा मोहसिन का, और अगला संदेश ले लेते हैं। ये संदेश हमें आया है कोहका भिलाई से है उत्तम सिंह झंगेल, मोरस झंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष झंगेल और नंदिनी झंगेल का साथ।

कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीत राहुल और गुरशबद सिंह राहुल का। ये संदेश आया है मुंबई से अनु बढ़ जाती है, कहीं लिखते हैं हाँ 5 मिनट की नींद इतनी अच्छी होती है ना कि उसकी वजह से बहुत हड़बड़ी हो जाती है, नींद खुलते ही लगता है सब छूट गया। जी हाँ दोस्त, वाकई में वो जो 5 मिनट की जैसे कहते एकदम से झटके से नींद खुलती है, अलार्म से उठे 5 मिनट सोना होता है बहुत अच्छा लगता है, पर कभी कभी क्या होता है ना कि हम कई चीज़ों को लेट हो जाता है उसकी वजह से, कई चीज़ों से जूझते हैं उस 5 मिनट की नींद की वजह से। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। ये हमें आया है दीवाना रेडियो श्रोता क्लब बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़

सुना होता है बहुत अच्छा लगता है, पर कभी कभी क्या होता है ना कि हम कई चीज़ों को लेट के हो जाता है, उसकी वजह से कई चीज़ों से जूझते हैं उस 5 मिनट की नींद की वजह से। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। ये हमें आया है दीवाना रेडियो श्रोता क्लब बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से, भाई प्रेम सिंह बड़वाल, सुखवीर काजल बड़वाल, लखवीर बड़वाल, रानो कृष्णा, श्रीमती छिंदो, प्रवीण, शीतल, नवीन, रंगीला, निशान।

अनमोल प्यारे बेटे चटकू मटकू का, और ये लिख रहे हैं कि हमारी मेल को ज़रूर लेना और हमारी फरमाइश ज़रूर पेश करना। बिल्कुल दोस्त, ज़रूर हम आपका ख्याल रखेंगे क्योंकि आपने हमारा ख्याल रखा है संदेश भेजकर। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। बहुत से संदेश आ रखे हैं और ये संदेश हमें आया है वीरगांव गुजरात से अजीत भवसार, प्रमिला भवसार का। और अगला जो संदेश हमें आया है स्टेशन रोड जमशेदपुर से।

इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई अगर गुस्सा है या आपकी कोई हेल्प नहीं भी करना चाहता है तो करने लगता है, क्योंकि उनको आपकी तहजीब समझ आती है। और ये है, आप क्या लिख रहे हैं, ये रेडियो प्रसारण दिवस की शुभकामनाएं भी भेज रहे हैं। और अगला संदेश ले लेते हैं, ये संदेश हमें आया है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा का। ये लिखते हैं, सुबह सुबह उठकर परमात्मा के आगे नतमस्तक हो और कर उसका शुक्रिया अदा करते हैं जो हर रोज़

जन्मदिन की शुभकामनाएं, और बहुत अच्छी उनकी ज़िंदगी बीते, खूब खुशियों से भरी हो उनकी ज़िंदगी। हमारी ओर से भी बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। यह है गांव 5 MD रोड पतरोड़ा अनूपगढ़ राजस्थान से मंगल जनागल, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल का, और ये हमारे साथ जुड़े हैं जवाहर नगर दुर्ग।

बनता है फ़र्ज़ क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इस बात की खुशी होनी चाहिए और वाकई आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें कि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं और प्यारे प्यारे संदेश आप भेजते रहते हैं। चलिए संदेश ले लेते हैं। ये आया है स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया का। ये लिखते हैं कि मेरी शुरू से आदत है कि मैं वॉकिंग के लिए निकल जाता हूँ, दोस्तों से भी मुलाकात हो जाती है और पूरा दिन मस्ती से गुजर जाता है। वाकई बहुत अच्छी आदत है आपकी दोस्त। और अगला जो संदेश आया है वो है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास आशा देवी जी का संदेश। ये हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा। और अगला जो संदेश हमें आया है वो आया है ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों की ओर से। और लिखते हैं इन्हें रेडियो सुनना बहुत पसंद है और अपना नाम सुनता हूँ तो बहुत खुश हो जाता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है दोस्त। और अगला संदेश ले लेते हैं। यह है शाजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से। ये हैं हमारे साथ जुड़े यहाँ से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे। तो आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं समाचार।

0: शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से 250 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 बुरी तरह प्रभावित है। बनिहाल और उधमपुर सेक्टरों के बीच कई स्थानों पर भूस्खलन, कीचड़ और पत्थर गिरने की घटनाएं हुई हैं। इसके कारण लगातार दूसरे दिन वाहनों की आवाजाही रोकनी पड़ी है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि मौसम में सुधार और सड़क मरम्मत पूरी होने तक जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा न करें। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, The news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi today reiterated that nothing is more important than the welfare and future of youth of the country. In a social media post, Mr. Modi announced that the government will set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. The Prime Minister said he has directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. He asserted that those who try to harm the future of the youth will not be spared. He added that the decision has been taken as part of a series of measures to safeguard the interests of students. Senior BJP leader and Union Minister JP Nadda has said that government is ready to discuss the NEET paper leak issue in Parliament and formulate an effective policy to ensure a permanent solution to the issue. Addressing media in New Delhi, Mr. Nadda said, instead of indulging in blame games and constantly shifting the goalposts, the opposition should participate in a meaningful parliamentary discussion on the serious issue of paper leaks. He said paper leaks are a national concern, not an issue confined to any one government or political party, yet the opposition continues to politicize the matter.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर दोहराया कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घोषणा की कि सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्र मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नेता बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगें करने के बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
1: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर और छात्र विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान किसी भी सदस्य को किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल नियमों के अनुसार ही चलना चाहिए, क्योंकि ये सदस्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने का सबसे महत्वपूर्ण समय है। श्री बिरला ने कहा कि सरकार पहले ही विपक्षी सदस्यों को आश्वासन दे चुकी है कि वो नीट पेपर पर चर्चा करने के लिए तैयार है। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने देश के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश और बाढ़, बिजली गिरने तथा भूस्खलन जैसी आपदाओं के कारण हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। बाद में विपक्ष के सदस्यों ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर नारेबाजी शुरू कर दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उनके इस्तीफे के बिना चर्चा नहीं होगी। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और

0: से जुड़ जाए वो फिर कभी नहीं बिछड़ता। नमस्कार, मैं श्रुति पुरी
1: और रश्मि कुकरेती आपके सामने हाजिर हैं आपके अपने कार्यक्रम घर आंगन में,
0: जो आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, इंद्रप्रस्थ चैनल पर 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर, और हमारे डिजिटल परिवार के साथ ही हमसे जुड़े हैं AIR न्यूज लाइव 24x7 यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की झोली भर भर के बधाइयाँ।
1: जी, सभी श्रोताओं को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की अनेकानेक बधाइयाँ। तो चलिए आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के हमारे सवाल से, यानी कि आकाशवाणी से जुड़ा आपका कोई अनुभव जो आपको हमेशा याद रहता है, हमसे साझा कीजिए
0: और अपनी बात लिखकर हमें मेल कीजिए fmgoldga@gmail.com पर। मेल दोबारा नोट कीजिए fmgoldga@gmail.com पर।
1: श्रुति जी,
0: हाँ हाँ,
1: मुझे कुछ कहना है।
0: नहीं नहीं, पहले मुझे कुछ कहना है।
1: तो पहले आप।
0: नहीं नहीं, पहले आप।
1: नहीं, पहले तुम।
0: नहीं नहीं,
1: पहले तुम।
0: पहले तुम।

0: सेवा देने वाले हैं, तो आपके लिए तारीख 31 अगस्त तक बढ़ाई गई है। इसलिए सबसे पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि आप किस श्रेणी में आते हैं, ताकि गलत तारीख को लेकर आपको बाद में परेशानी ना हो।
1: और श्रुति जी, रिटर्न भरने से पहले एक ज़रूरी काम ये भी है कि आप अपना जो फॉर्म्स है ना, जो मिलते हैं वार्षिक सूचना विवरण, वो एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें आपकी सैलरी होती है, बैंक ब्याज होता है, अन्य आमदनी का पूरा रिकॉर्ड होता है। और

0: फिल्म थी हमजोली और लता जी और मोहम्मद रफ़ी को आप सुन रहे थे। और श्रुति जी, एक और मेल हमारे पास आ गई है। जो आपने प्रश्न पूछा था कि
1: हमने ये प्रश्न पूछा था कि रेडियो से जुड़ा आपका कोई अनुभव हो, कोई विचार हो, तो हमसे
0: जी,
1: जरूर।

0: फिल्म थी हमजोली और लता जी और मोहम्मद रफ़ी को आप सुन रहे थे। और श्रुति जी, एक और मेल हमारे पास आ गई है। जो आपने प्रश्न पूछा था कि
1: हमने ये प्रश्न पूछा था कि रेडियो से जुड़ा आपका कोई अनुभव हो, कोई विचार हो, तो हमसे
0: जी,
1: जरूर।

0: हाथ किसी कोने में दबे एक डिब्बे तक पहुंच जाता है और उसमें रखी अगर पुरानी चिट्ठियां मिल जाएं, वाह, जिनके कोने पीले पड़ चुके हों, और उन्हीं चिट्ठियों के ऊपरी कोने में चिपका होता है एक छोटा सा रंगीन टुकड़ा जिसे हम कहते हैं डाक टिकट। उस दौर में चिट्ठी लिखना भाई एक पूरी रस्म हुआ करती थी और टिकट चिपकाना उस रस्म का सबसे प्यारा हिस्सा।
1: आप जानती हैं रश्मि जी कि इंग्लैंड में रोलेंड हिल नाम के व्यक्ति ने डाक व्यवस्था में

0: खत लिख दे सवरिया के नाम बाबू। ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में, फिल्म थी आए दिन बहार की। और रश्मि जी, एक मेल और हमारे पास आई है, और ये मेल लिखने वाले हैं महेश अग्रवाल जी, बहादुरगढ़ हरियाणा से। ये लिख रहे हैं कि आप दोनों बहनों को नमस्कार और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेडियो से हम बहुत प्यार करते हैं और हमारे आसपास कई रेडियो हैं, यानी इन्होंने कई रेडियो रखे हैं, बहुत अच्छी बात है ना। और आगे लिख रहे हैं कि हमें तो रेडियो सुनने में बहुत मज़ा आता है, जो मज़ा हमें आकाशवाणी सुनने में आता है वो किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं आता।
1: क्या बात है।

0: का समय संपन्न हो रहा है, तो हमें ना चाहते हुए भी श्रोताओं से विदा लेनी है। तो
1: जी, कल के
0: मुझे
1: मिलने के लिए, और रश्मि कुकरेती और
0: मुझे श्रुतिपुरी को दीजिए
1: आज्ञा,
0: अनुमति।
1: और हम कहते हैं आपसे नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

0: उनके सुनहरे भविष्य के बनाने के लिए संकल्पित है।
1: Delhi police has debunked reports circulating on social media claiming the death of a female during the protest at Jantar Mantar in New Delhi.

कार्यक्रम एक ही फिल्म से सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, जैसे आप सभी जानते हैं, भारतीय सिनेमा के शोमैन राज कपूर जी का जिक्र होता है तो एक ऐसी फिल्म का ख्याल सबके मन में आता है जिसमें समाज, इंसानियत, देश प्रेम की नई परिभाषा गढ़ी थी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आरके फिल्म्स के बैनर तले बनी 1960 की क्लासिक फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। राधु कर्माकर द्वारा निर्देशित, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी के गीतों और शंकर जयकिशन के कालजयी संगीत से सजी इस फिल्म की कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अगले आधे घंटे तक हम जानेंगे डाकों के हृदय परिवर्तन और सीधे साधे राजू की ये अमर दास्तां। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजू के इस चुलबुले और मासूम अंदाज के साथ।

बहुत ही खूबसूरत गीत श्रोताओं, मुकेश जी की आवाज़ और राज कपूर जी की मासूमियत, ये जोड़ी हमेशा कमाल करती थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है राजू से। राजू एक अनाथ, बेहद भोला भाला और नेक दिल इंसान जो डफली बजाकर, गाना गाकर अपना पेट पालता है। एक दिन राजू एक घायल शख्स को तड़पते हुए देखता है और उसकी जान बचाता है, लेकिन उसे क्या पता कि जिस इंसान की उसने मदद की है

वो चंबल का एक खूंखार डाकू सरदार है। डाकू राजू की मासूमियत और ईमानदारी से प्रभावित होता है, उसे अपने गुरुओं के पास लेकर जाता है। राजू समझता है कि ये रॉबिन हुड की तरह गरीबों की मदद करने वाले भले लोग हैं। इस बीच उसकी मुलाकात होती है सरदार की बेटी कमली से।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जन जन का रखे ध्यान, TB मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, TB मुक्त भारत अभियान।
4: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, TB रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और TB की हार।
5: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में TB के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर TB के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
3: जन जन का रखे ध्यान, TB मुक्त भारत अभियान।
4: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: श्रोताओं, कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। कमली यानी अभिनेत्री पद्मिनी के अद्भुत नृत्य और अदाकारी ने इस फिल्म में जान फूंक दी। जब राजू डाकुओं के ठिकाने पर रहने लगता है तो कमली और उसके बीच प्यार पनपने लगता है, लेकिन राजू अभी भी इस कड़वे सच से अनजान था कि ये लोग बंदूक के दम पर निर्दोषों का खून बहाते हैं।

श्रोताओं, कहानी में असली मोड़ तब आता है जब सरदार की मौत के बाद राका यानी प्राण डाकुओं का नया सरदार बनता है। राका एक क्रूर और हिंसक डाकू है। एक शादी के दौरान जब डाकू पूरे गांव में कत्लेआम और लूटपाट मचाते हैं तो राजू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि ये दया नहीं बल्कि नग्न हिंसा है। राजू का दिल टूट जाता है और वो पुलिस को सूचना दे देता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। राजू देखता है कि पुलिस भी डाकुओं को सुधारने की बजाय उन्हें एनकाउंटर में ख़त्म कर देना चाहती है। तब राजू के मन में सवाल उठता है कि अगर अपराध को ख़त्म करना है तो अपराधी को मारना हल है या उसके अंदर पनप रहे पाप को मारना। राजू फैसला करता है कि वो डाकुओं को आत्मसमर्पण के लिए मनाएगा।

0: इंद्रप्रस्थ चैनल पर हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। दोस्तों, होठों पे सच्चाई रहती है, ये केवल एक गाना नहीं बल्कि इस देश की आत्मा है। ये फिल्म महात्मा गांधी की उस विचारधारा को दर्शाती है जिसमें कहा गया था, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। राजू जब डाकुओं के बच्चों और महिलाओं को देखता है तो वो उन्हें ये सही रास्ता दिखाने के लिए तड़प उठता है। वो डाकुओं को समझाता है कि हिंसा का रास्ता सिर्फ विनाश की तरफ ले जाता है।
1: होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
2: होठों पे सच्चाई रहती है।
3: मुकेश, जो आप सबके प्रिय गायक थे, मेरे बड़े भैया थे। मुकेश भैया एक महान कलाकार थे, एक महान आत्मा थे और बहुत प्यारे भैया थे। कोई है जो उनकी याद में बेचैन नहीं? जब जब पुरानी बातें याद आती है तो आंखें भर आती है। उनके दिल से निकली हुई इस पुकार को भला

अब लौट चलें। ये गाना सिर्फ राजू का बुलावा नहीं था, बल्कि भटक चुके लोगों के लिए सही रास्ते पर वापस आने का एक संदेश था। श्रोताओं, अंत में राजू की ईमानदारी, प्यार और अहिंसा के सामने राघव और बाकी डाकू अपने हथियार डाल देते हैं और आत्मसमर्पण कर देते हैं। इस फिल्म ने 1961 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। राज कपूर जी का अभिनय, पद्मनी की सुंदरता, प्राण साहब की कड़क अदाकारी और मुकेश जी का, हम ये कहें कि उनकी रूहानी आवाज़, इन सब ने मिलकर इस फिल्म को एक अमर कृति बनाया। आज भी जब देश में शांति और सद्भाव की बात होती है तो ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि हमारी ताकत हमारी सादगी और सच्चाई में है। उम्मीद है आपको जिस देश में गंगा बहती है इसका ये संगीतमय सफ़र पसंद आया होगा। मुझे यानी अपने दोस्त को अनुमति दीजिए, हम आपको

0: अभी हमारे श्रोता सुनने थे कार्यक्रम में एक ही फिल्म से। यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। दिन के 1:40 होने को हैं, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार नीट प्रीख्या पेपर लीक मामले विच शामिल लोगों नूं छेती तों छेती ते सख्त सजा देने लई फास्ट ट्रैक अदालतां स्थापित करेगी। संसद के दोवां सदनां दी कार्रवाई नीट प्रीख्या पेपर लीक समेत वख-वख मुद्दयां ते विरोधी धिर दे हंगामे तों बाद दुपहर बाद 2 तक लई मुलतवी कर दित्ती गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 देशों के दौरे के आखिरी पड़ाव ते अज रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचणगे। भारत ने सिंधु जल संधि बारे संयुक्त राष्ट्र विच पाकिस्तान दी टिप्पणियां नूं रद्द करदिआं कहा कि जिन्ना चिर पाकिस्तान सरहद परों दहशतगर्दी नूं हथियार वजों वरतदा रहेगा संधि बहाल नहीं कीती जा सकती। भारत ते जिम्बाबे विचकार 3 20-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचां दी लड़ी दा पहला मैच अज हरारे विच खेडिआ जाएगा। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦਸਿਆ। ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ

0: विरोध प्रदर्शन दौरान आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में सारे जरूरी कदम चुकने के निर्देश दिए ने। उन्होंने कहा कि नौजवानों के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि फैसला विद्यार्थियों के हितों की राखी लिए किए जा रहे उपावों की एक लड़ी का हिस्सा है। एनडीए ते विरोधी धिर दे संसद मैंबरां ने अज संसद भवन दे मकर गेट ते विरोध प्रदर्शन कीता है। एनडीए दे संसद मैंबरां ने सदन विच नीट प्रीख्या पेपर लीक मामले ते चर्चा की मांग कीती, जबकि विरोधी धिर दे मैंबरां ने सिख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दे अस्तीफे की मांग कीती। बीजेपी प्रधान ते राज्यसभा मैंबर नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार हर पद्धर ते विद्यार्थियों ते नौजवानों दे भविख ते चर्चा करन लई पूरी तरह तैयार है। पत्रकारों नाल गलबात करदे श्री नवीन ने कहा कि लोकसभा विच विरोधी धिर दे नेता राहुल गांधी अते समुची विरोधी धिर सदन विच इस मुद्दे ते चर्चा करन तों बच रही है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दा उद्देश नौजवानों लई एक उज्ज्वल भविष्य बनाउणा है।
1: एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं। ये केवल स्टोन पेटर्स के रूप में युवाओं को देखते हैं, पर भारत और एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी का विजन है कि हम पूरी तरह से युवाओं को उनके सुनहरे भविष्य के बनाने के लिए संकल्पित है।
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार नूं विद्यार्थियों दी मंगां वल ध्यान देना चाहिए है। संसद भवन विच पत्रकारां नाल गलबात करदे उन्होंने कहा कि विद्यार्थी उन्हां लोकां विरुद्ध कार्रवाई की मंग कर रहे ने जिन्होंने विरोध प्रदर्शन दौरान कथित तौर ते उन्हां विरुद्ध ताकत की वरतों की सी। उन्हां प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों नाल सीधी गलबात शुरू करन दी भी अपील कीती। संसद के दोवां सदनों की कार्रवाई नीट प्रीख्या पेपर लीक मामले समेत वख-वख मुद्दों ते विरोधी धिर दे हंगामे तों बाद दुपहर बाद 2 बजे तक लई मुलतवी कर दिती गई है। पहली बार मुलतवी होने तों बाद जदों लोकसभा दुपहरे 12 बजे मुड़ जुड़ी तां विरोधी धिर ने नीट पेपर लीक मुद्दे ते विरोध प्रदर्शन जारी रखिया। सभापति दिलीप साइकिया ने सदन दे सुचारू कामकाज लई विरोधी धिर दे सहयोग दी बेनती कीती। संसदीय मामलों बारे मंत्री किरेन रिजिजू ने विरोधी धिर खास करके कांग्रेस नूं नीट पेपर लीक मुद्दे ते चर्चा करने विच सहयोग की अपील कीती। उन्होंने कहा कि सरकार ने विरोधी धिर वल्लों निर्धारित तरीक अते समय अनुसार दोवां सदनों विच इस मुद्दे ते चर्चा करने की इच्छा प्रगटाई है।
2: सब पार्टी ने यह मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या। आज तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं।
0: श्री रिजिजू की अपील के बावजूद विरोधी धिर के मैंबर नारेबाजी करदिया सभा के विचकार आ गए। इसते सभापति ने सदन को दोपहर बाद 2 बजे तक मुलतवी कर दिता। राज्यसभा में भी इसे तरह की स्थिति देखी गई। जदों राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे मुड़ शुरू हुई तो विरोधी धिर के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर नीट प्रीख्या पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि विरोधी धिर चर्चा लई तैयार है, पर पहला सिख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नूं अस्तीफा देना होगा। केंद्रीय मंत्री ते सदन दे नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विरोधी धिर दी आलोचना करदियां इस दे विहार नूं गैर जिम्मेवार दस्या। उन्होंने इल्जाम लाया कि विरोधी धिर ना तां चर्चा चाहुंदी है ते ना ही सदन नूं काम करन देना चाहुंदी है। विरोधी धिर ने अपना विरोध प्रदर्शन ते नारेबाजी जारी रखी। हंगामे दौरान सभापति ने सदन नूं दुपहर बाद 2 बजे तक मुलतवी कर दिता। एह खबरां तुसी आकाशवाणी तों सुन रहे हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 देशों के दौरे के आखिरी पड़ाव ते अज रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचणगे। उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिता जाएगा। वह रोमानिया के अपने हम रुतबा निकसोर डैन नाल वफद पद्धरी गलबात करनगे। गलबात तो बाद कई समझौतों ते दस्तखत होने की उम्मीद है। रोमानिया के राष्ट्रपति ते उन्होंने पत्नी अज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान विच रात के खाने की मेजबानी करनगे। उन्हां दा रोमानिया भारत संस्थी मित्रता समूह के मैंबरां नाल भी मुलाकात करन दा प्रोग्राम है। बाद विच राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार फोरम नूं संबोधन करनगे ते भारतीय भाईचारे के मैंबरां नाल गलबात करनगे। भारत ने सिंधु जल संधि बारे संयुक्त राष्ट्र विच पाकिस्तान दीआं टिप्पणियां नूं रद्द कीता है। भारत ने कहा कि जिन्ना चिर पाकिस्तान सरहद परों दहशतगर्दी नूं हथियार वजों वरतदा रहेगा संधि दे बहाल होण दी उम्मीद नहीं कीती जा सकती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विच भारत दे स्थाई प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने पाकिस्तानी इल्जामां दा जवाब दिता।
3: सिंधु जल संधि पर हमारा रुख स्पष्ट और सुसंगत बना हुआ है। जब सीमा पार से

0: आतंकवाद को नियमित रूप से एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है तो आपसी विश्वास सद्भावना के आधार पर सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती।
1: इज रेगुलरली डिप्लॉयड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी।
2: राजदूत ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश हमेशा भारत का एक अनिखड़वां ते अटुट अंग रहा ते रहेगा। उन्होंने कहा कि असल मुद्दा भारतीय इलाके ते पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा है। अज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। 1927 इसे दिन देश का पहला रेडियो प्रसारण मुंबई तो शुरू होया सी। बाद विच 1936 ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 इसका नाम बदल के आकाशवाणी रखा गया। रेडियो प्रसारण ने आजादी की लड़ाई तो लैके देश के विकास तक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी ने सिक्ख्या सेहत खेतीबाड़ी ते जन जागरूकता के खेत्र सही ते भरोसेयोग जानकारी प्रदान की है। सरकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस वीडियो का खंडन किया जिस विच दावा किया गया सी कि उन्होंने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों बारे धमकी भरे बयान दिते ने। प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो PIB की फैक्ट चैक यूनिट ने स्पष्ट किया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में हो रहे विरोध प्रदर्शनों बारे अजिहा कोई बयान नहीं दिता। यूनिट ने कहा कि वीडियो AI की वरतों राही बनाया गया ते पाकिस्तानी दुष्प्रचार राही जनता नूं गुमराह करन लई प्रसारित किया जा रहा है। यूनिट ने नागरिकां नूं यह अपील भी की कि वह गैर प्रमाणित समगरी सांझी करन तों बचण। भारत सरकार नाल संबंधित शक्की समगरी की रिपोर्ट PIB की फैक्ट चैक यूनिट नूं करन अते सही ते प्रमाणिक जानकारी लई सिर्फ अधिकारित स्रोतां ते भरोसा करन। भारत ते जिम्बाबवे विचकार 3 20-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की लड़ी का पहला मैच अज हरारे विच खेडा जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार शामी 4:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर कर रहे ने। 23वीं राष्ट्रमंडल खेडां अज स्कॉटलैंड के ग्लासगो विच शुरू हो रही ने। 10 दिनां खेडां विच 74 देशां दीआं टीमां हिस्सा लैणगीआं। ओलंपिक तमगा जेतू नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू ते लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेडां विच भारत दी नुमाइंदगी करनगे। इस साल सिर्फ 10 खेडां शामिल कीतीआं गईआं ने जो बर्मिंगम 2022 दे मुकाबले 9 घट ने। भारतीय दल विच पैरा एथलैटिक्स समेत 125 मैंबर शामिल ने। भारत ने पिछलियां राष्ट्रमंडल खेडां विच 61 तमगे जीते सन। अंत विच चोणवीआं खबरां इक वार फिर सुन लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार नीट प्रीख्या पेपर लीक मामले विच शामिल लोगों नूं छेती तों छेती ते सख्त सजा देने लई फास्ट ट्रैक अदालतां स्थापित करेगी। संसद के दोवें सदनों की कार्रवाई नीट प्रीख्या पेपर लीक मामले समेत वक्त वक्त मुद्दों से विरोधी धिर के हंगामे तो बाद दोपहर बाद 2 बजे तक लई मुलतवी कर दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 देशों के दौरे के आखिरी पड़ा से अज रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचणगे। भारत ने सिंधु जल संधि बारे संयुक्त राष्ट्र विच पाकिस्तान दी टिप्पणियां नूं रद्द करदिआं कहा कि जिन्ना चिर पाकिस्तान सरहद परों दहशतगर्दी नूं हथियार वजों वरतदा रहेगा संधि बहाल नहीं कीती जा सकती। इस दे नाल ही राष्ट्रीय खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रदेशक खबरां दा बुलेटिन शामी 6:20 ते होएगा। नमस्कार।
3: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। मरकज नीट पेपर लीक में मुलव्वस अफराद को जल्द और सख्त सजा को यकीनी बनाने की खातिर फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि तलबा के मुस्तकबिल का तहफ्फुज हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि हुकूमत पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक मामले समेत किसी भी मामले पर बहस के लिए तैयार है। भारत ने मनीला में आसियान वजारती मीटिंग में दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने पर जोर दिया है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में दरियाए सिंध आबी मुआहिदे पर पाकिस्तान की रायजनी को मुस्तरद कर दिया है। उसने कहा है कि मुआहिदा उस वक्त तक मुअत्तल रहेगा जब तक सरहद पार की दहशतगर्दी खत्म नहीं हो जाती। ग्लासगो दौलत मुश्तरका खेल आज शाम शुरू हो रहे हैं। 125 भारतीय एथलीट इसमें हिस्सा लेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में मुलव्वस अफराद को जल्द और सख्त सजा को यकीनी बनाने की खातिर मरकज फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करेगा और उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि तलबा के मुस्तकबिल का तहफ्फुज़ बदस्तूर हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम मोदी ने कहा कि मुल्क के नौजवान

0: नौजवानों की बहबूद और मुस्तकबिल से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। वज़ीर आज़म मोदी का बयान नीट पेपर लीक मामले पर दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी तलबा के एहतजाज के दरमियान सामने आया है। जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में सभी ज़रूरी इकदामात के लिए मुतालिका हुकाम और ओहदेदारान को हिदायत दी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि नौजवानों के मुस्तकबिल को नुकसान पहुँचाएंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि तलबा के मफादात के तहफ़ुज़ के सिलसिले में सिलसिलेवार इकदामात के तहत फ़ैसला किया गया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के उस फ़ैसले की तारीफ़ की जिसमें उन्होंने पेपर लीक मामलों में फ़ास्ट ट्रैक अदालतों के ज़रिए कसूरवारों के ख़िलाफ़ सुनवाई में तेज़ी लाने और सख्त कार्रवाई को कहा है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि नौजवानों का दरख्शां मुस्तकबिल और उनकी फलाह दोनों ही मोदी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। नौजवानों के तई वज़ीर आज़म के अहद को उजागर करते हुए जनाब शाह ने कहा कि ये फ़ैसला उन लोगों के ख़िलाफ़ है जो पेपर लीक की वजह से नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं और ये फ़ैसला एक संगे मील साबित होगा। नीट पेपर लीक मामले समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के एहतजाज के सबब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। पहली बार मुलतवी किए जाने के बाद जब लोकसभा की कार्रवाई दिन में 12 बजे फिर शुरू हुई तो अपोजिशन ने नीट पेपर लीक मामले पर एहतजाज जारी रखा। प्रिजाइडिंग अफसर दिलीप साइकिया ने बिला रुकावट ऐवान की कार्रवाई चलने देने के लिए अपोजिशन से तआवुन की अपील की। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पार्टियों खासतौर से कांग्रेस से अपील की कि वो नीट पेपर लीक मामले पर बहस कराने में तआवुन करे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत ने एक ऐसी तारीख और मुद्दत तक जिस पर अपोजिशन मुत्तफिक हो दोनों ऐवानों में इस मामले पर बहस कराने की खातिर हुकूमत की रजामंदी के बारे में पहले ही मुत्तला कर दिया है। जनाब रिजिजू ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क को यकीन दहानी कराई है कि नीट पेपर लीक मामले के कसूरवारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी और तेज़ी से इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए फ़ास्ट ट्रैक अदालतें तश्कील दी जाएंगी। जनाब रिजिजू ने इस बात पर ज़ोर दिया कि तलबा के मफाद में इस मामले पर बहस ज़रूरी है और उन्होंने अपोजिशन पर ज़ोर दिया कि वो इस बात का फ़ैसला करे कि बहस का आगाज़ कब होना है।
1: सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी अपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज, तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, चर्चा पर बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की सूरत हाल रही। जब राज्यसभा की कार्रवाई पहली बार मुलतवी होने के बाद 12 बजे फिर शुरू हुई तो अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक और तलबा के एहतजाज का मामला उठाया। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज के दौरान एक खातून की मौत की बात कही गई है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में पुलिस ने वाज़े किया कि ये झूठी और गुमराहकुन खबर है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि वो खातून जिंदा है और उनका इलाज राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू 3 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में आज रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंचेंगी। कोट्रोचेनी पैलेस पहुंचने पर सदर जमहूरियत मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। वो रोमानिया के अपने हम मनसब निकोशोर डैन के साथ वफ्द सतह की बातचीत करेंगी। बातचीत के बाद कई मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए जाएंगे। रोमानिया के सदर और खातून अव्वल सदर जमहूरिया मुर्मू के एजाज़ में आज सरकारी इशाइये का अहतमाम करेंगे। कल सदर जमहूरिया मुर्मू भारत रोमानिया तजारती फोरम से खिताब करेंगी और भारतीय बिरादरी के मेम्बरान से मुलाकात करेंगी। सिक्किम की सरकार ने नामची ज़िले में सुरंग के वाक़े की पूछताछ के लिए आईजीपी की ज़ेर निगरानी एक आला सतह की 4 मेंबरों पर मुश्तमिल कमेटी कायम की है। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर पेश करेगी। वज़ीर आला प्रेम सिंह तमांग ने एक आला सतह की कमेटी कायम करने का ऐलान किया था। फिलिपाइन के मनीला में आसियान इलाकाई फोरम की 33वीं वजारती मीटिंग में भारत ने दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने पर जोर दिया है और एक आज़ाद खुले सब

की शमूलियत वाले और जवाबित पर मबनी भारत बहरुल काहिल के अपने अज़्म का इयादा किया है। मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ये फोरम खासतौर से बढ़ती आलमी पेचीदगियों के दरमियान भारत बहरुल काहिल में सियासी और सिक्योरिटी मामलात पर तबादला ख्याल की खातिर एक अहम प्लेटफॉर्म है। बहरी सलामती के सिलसिले में वजीर मौसूफ ने कहा कि बहर हिंद खित्ते में इत्तलात के तबादले का मरकज़ भारत बहरुल काहिल में बहरी बेदारी पहल और भारतीय बहरिया के असासे तैनात किए जाने जैसे इकदामात पायरेसी सामान और मुनशियात की गैरकानूनी तिजारत से निमटने में मदद के साथ साथ महफूज बहरी तिजारत को भी यकीनी बना रहे हैं। भारत ने दरियाए सिंध के आबी मुआहदे से मुतालिक अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान की रायजनी को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि जब तक इस्लामाबाद की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी को उसकी रियासती पॉलिसी के एक अहम हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहेगा उस वक्त तक इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश पाकिस्तान की जानिब से नई दिल्ली पर यह इल्ज़ाम लगाए जाने के बाद जवाब दे रहे थे कि वो दरियाए सिंध आबी मुआहदे को मुअत्तल रखते हुए पानी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जम्मू और कश्मीर पर जनाब पी हरीश ने कहा कि मरकज़ का ज़ेरे इंतज़ाम इलाका हमेशा भारत का एक अटूट और कभी अलग न होने वाला हिस्सा रहा है और रहेगा। अमेरिका और सऊदी अरब ने एक अहम और तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत खलीजी मुमलिकत को सिविल एटमी प्रोग्राम को फ़रोग देने की इजाज़त होगी। अमेरिकी महकमाए तवानाई के मुताबिक इस मुआहदे को पुरमन एटमी तआवुन के मुआहदे के तौर पर बयान किया गया है जो सऊदी अरब की एटमी तवानाई प्रोग्राम में अमरीकी कंपनियों को ज़्यादा रसाई फराहम करेगा। 23वें दौलत मुश्तरका खेलों का आज शाम स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आगाज़ हो रहा है। 10 दिनों तक जारी रहने वाले इन खेलों में 74 मुल्कों की टीमें हिस्सा लेंगी। भारत के 125 एथलीट इन खेलों में हिस्सा लेंगे। ओलंपिक में तमगा जीतने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा मीराबाई चानू और लोवलीना बोरगोहाइन CWG 2026 में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज़ नीट पेपर लीक में मुलव्वस अफराद को जल्द और सख्त सज़ा को यकीनी बनाने की खातिर फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि तलबा के मुस्तकबिल का तहफ्फुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा है कि हुकूमत पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक मामले समेत किसी भी मामले पर बहस के लिए तैयार है। भारत ने मनीला में आसियान वजारती मीटिंग में दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने पर जोर दिया है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में दरियाए सिंध आबी मुआहदे पर पाकिस्तान की रायजनी को मुस्तरद कर दिया है। उसने कहा कि मुआहदा उस वक्त तक मुअत्तल रहेगा जब तक सरहद पार की दहशतगर्दी खत्म नहीं हो जाती। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नैतिक आह्वान। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज किया, कहा सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने तक संधि लागू नहीं रहेगी। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। प्रतियोगिता में 125 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का ये बयान परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने फास्टैग अदालतों की स्थापना के माध्यम से पेपर लीक मामलों में सुनवाई में तेजी लाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि युवाओं का कल्याण और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और संकल्प है। युवाओं के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय उन लोगों के खिलाफ है जो पेपर लीक के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। लोकसभा की बैठक नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते अध्यक्ष को सदन की बैठक को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया।
1: आप जिस हिसाब से सदन में सरसास आते हैं, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, सरकार क्लियर कट बताया है, सदन में सरसा करने के लिए तैयार है सरकार। ये व्यवहार हमारे संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है। सदन ऐसे बाधित करेंगे, ये ठीक नहीं है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा तय की गई तिथि और अवधि के अनुसार दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है।
2: सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज, तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आश्वासन दिया है कि पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के सभी मामलों और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार ने विपक्षी सदस्यों को पहले ही आश्वासन दे दिया है कि सरकार नीट पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
3: सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं, सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे, सरकार भी चर्चा करने को तैयार है।
0: राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा दोपहर 12 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उसके आचरण को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्षी दल नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर बार बार चर्चा से भाग रहे हैं और अपना रुख बदल रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार के लिए छात्रों का कल्याण सर्वोपरि है। विपक्षी दलों पर छात्रों के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए श्री चौहान ने कहा कि वे केवल अराजकता फैलाना चाहते हैं और संसद के कामकाज में बाधा डालना चाहते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, छात्रों के कल्याण से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है और इसलिए जिनने पेपर लीक जैसा अपराध किया है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, मुकदमा चलेगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन विपक्ष को बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, नीट से भी लेना देना नहीं है। वो केवल राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं, लेकिन एनडीए भारतीय जनता पार्टी सरकार चर्चा चाहती चर्चा। मैं प्रतिपक्ष से आग्रह करता हूँ कि आए सदन के अंदर और चर्चा करें।
0: एनडीए और विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य पर हर स्तर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
5: एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं। ये केवल स्टोन पेटर्स के रूप में युवाओं को देखते हैं, पर भारत और एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी का विजन है कि हम पूरी तरह से युवाओं को उनके सुनहरे भविष्य के बनाने के लिए संकल्पित है।
0: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह चेन्नई स्थित राज्य कांग्रेस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने कहा कि कांग्रेस नीट के खिलाफ छात्रों को गुमराह कर रही है और राष्ट्रहित के विरुद्ध युवाओं को भड़का रही है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया कि ये जानकारी झूठी और भ्रामक है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि महिला की हालत स्थिर है और वो खतरे से बाहर है। पुलिस ने नागरिकों से अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करने और उसे साझा न करने का आग्रह किया है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने के नैतिक आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वथानेनी हरीश ने पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित रखकर पानी के दुरुपयोग के आरोप पर यह जवाब दिया।
6: सिंधु जल संधि पर हमारा रुख स्पष्ट और सुसंगत बना हुआ है। जब सीमा पार से आतंकवाद को नियमित रूप से एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है तो आपसी विश्वास और सद्भावना के आधार पर सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती।
7: इज रेगुलरली डिप्लॉयड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी।
0: जम्मू कश्मीर मुद्दे पर श्री हरीश ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डॉन और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात

0: बात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की दौरों की अंतिम चरण में आज रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचेगी। कोट्रोसिनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। श्रीमती मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोजोर डान के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्य के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहाइन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक के दौरान राष्ट्रमंडल की नवनिर्वाचित महासचिव शर्ली अयोरकोर बोर्चवे से मुलाकात की। बैठक में डॉ. मांडविया ने खेलो भारत नीति और अस्मिता लीग का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये दोनों पहल जमीनी स्तर पर खेलों को मजबूत कर रही हैं। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में आज तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण और मध्य गुजरात में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। गृहमंत्री अमित शाह ने बारिश से प्रभावित गुजरात को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जमीन स्तर पर राहत कार्यों की निगरानी के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और सचिवों को तैनात किया गया है। असम में लगातार हो रही बारिश से हालत बेहद खराब है। कल बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 10 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 41 हो गई है। राज्य के 40 राजस्व सर्कल में 64 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से 250 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बुरी तरह प्रभावित है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: जिंदगी अगर मुस्कुराने का नाम है तो हिंदी सिनेमा में उस मुस्कान को सबसे खूबसूरत अंदाज देने वाले में एक नाम हमेशा याद किया जाएगा और वो नाम है महमूद का। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से मीडियम वेव 366.3 मीटर पर। कार्यक्रम के साथ मैं आज आपकी दोस्त अर्चना गोयल। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार।

आज का हमारा ये कार्यक्रम समर्पित है उस कलाकार को जिसने अपने अभिनय, हास्य, नृत्य और बेहतरीन अदाओं से लाखों दिलों में जगह बनाई। आज बात महमूद साहब की।

29 सितंबर 1932 को मुंबई में जन्मे महमूद के पिता मुमताज़ अली मशहूर डांसर और अभिनेता थे, लेकिन परिवार ने आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया। महमूद ने टैक्सी चलाने से लेकर पोल्ट्री फार्म में काम करने तक कई छोटे बड़े काम किए। फिल्मों में शुरुआत छोटे छोटे किरदारों से हुई, लेकिन उनका आत्मविश्वास कभी नहीं डगमगाया। जल्द ही उन्होंने साबित कर दिया कि कॉमेडियन भी फिल्म का सबसे यादगार हिस्सा हो सकता है। फिल्म पड़ोसन में महमूद ने दक्षिण भारतीय संगीत शिक्षक का किरदार निभाया। इस भूमिका के लिए उन्होंने दक्षिण भारतीय लहजे और हाव भाव पर खूब मेहनत की। यही वजह है कि आज भी ये किरदार हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार हास्य पात्रों में गिना जाता है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अब बारी है संदेशों की। हमारे बहुत से श्रोताओं को शिकायत होती है कि मैं उनके मैसेज नहीं लेती हूं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कई बार समय की कमी के कारण मैसेज नहीं ले पाती हूं, पर आज मैंने देखा कि बहुत सारे श्रोता शिकायत कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने मैसेज लिया है। ये हैं हमारे साथ एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्किन, बीना मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु रिधान खुराना, और ये लिख रहे हैं कि आपसे गुजारिश है कि सभी के संदेश ज़रूर लेना जो बने होते हैं। ओके, आज के कलाकार में महमूद पर जानकारी अच्छी लग रही है और गाना भी उनको बहुत पसंद आ रहा है। तो मस्किन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और आशा है कि आपकी ये शिकायत भी आज दूर हो गई होगी। हमारे साथ बने हैं साउथ एक्सटेंशन से गुरमीत सिंह मीता, साथ में शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल, और आप हैं बड़ेखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, और आप हैं गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार। और ये मैसेज हमें मिला है छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मंगेली से मोहम्मद इसहाक,

खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलूफर फातिमा का। और ये मैसेज हमें मिला है चिनमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह और राम सहोदर जी का। और ये लिख रहे हैं कि हमें ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी प्रस्तुति पसंद आ रही है। तो इंद्रभान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है। और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। दोस्तों, महमूद सिर्फ हंसाते नहीं थे बल्कि वो किरदार को पूरी शिद्दत से निभाते थे। दक्षिण भारतीय शिक्षक हो, भोला नौकर हो या शरारती दोस्त, हर भूमिका में उनकी अलग छाप दिखाई देती थी। उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी सटीक थी कि कई बार दर्शक पुराण मुख्य नायक से ज़्यादा महमूद का इंतज़ार करते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि महमूद ने अभिनय के साथ साथ फिल्म निर्माण और निर्देशन में भी हाथ आजमाया। उन्होंने कई नई प्रतिभाओं को अवसर दिया। कहा जाता है कि उन्होंने कई कलाकारों और संगीतकारों को शुरुआती दौर में सहयोग दिया। वे दिल के उतने ही अच्छे इंसान थे जितने बड़े कलाकार।

आपको बता दें कि एक समय में महमूद को मीना कुमारी को टेबल टेनिस सिखाने के लिए नौकरी पर रखा गया था। बाद में उन्होंने मीना कुमारी की बहन मधु से शादी कर ली। शादी और पिता बनने के बाद ज़्यादा पैसे कमाने के लिए उन्होंने अभिनय करने का निश्चय किया। शुरुआत में उन्होंने दो बीघा ज़मीन और प्यासा जैसी फिल्मों में छोटे पात्र निभाए। पहला ब्रेक उन्हें मिला 1958 की फिल्म परवरिश में। गुमनाम फिल्म में उन्होंने दक्षिण भारतीय रसोई का कालजयी किरदार अदा किया। इसके बाद फिल्में आई प्यार किए जा, लव इन टोक्यो, जिद्दी, बॉम्बे टू गोवा, नीला आकाश, नीलकमल,

पत्थर के सनम और अनोखी अदा। बतौर निर्देशक उनकी सस्पेंस कॉमेडी थी भूत बंगला। अभिनेता, निर्देशक, कथाकार और निर्माता के रूप में काम करते हुए उन्होंने शाहरुख खान को लेकर वर्ष 1996 में आखिरी फिल्म दुश्मन दुनिया का बनाई, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही।

आईएस जौहर के साथ उनकी जोड़ी काफ़ी मशहूर हुई और उन्होंने जौहर महमूद इन गोवा और जौहर महमूद इन हांगकांग नाम से फिल्में बनाई। उन्होंने 1963 में दिल तेरा दीवाना के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और प्यार किए जा के लिए बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड जीता। इसके अलावा फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन 1967 की फिल्म लव इन टोक्यो में वे नामित हुए। 1960 और 70 के दशक में शायद ही कोई ऐसी बड़ी फिल्म रही हो जिसमें उनकी मौजूदगी दर्शकों के लिए आकर्षण बनी हो। उनकी खासियत ये थी कि वे बिना फुहरता के साथ साफ सुथरा हास्य प्रस्तुत करते थे जिसे पूरा परिवार साथ बैठकर देख सकता था।

23 जुलाई 2004 को अमेरिका में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज वो हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी फिल्में, उनके संवाद और मुस्कान आज भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। उन्होंने साबित किया कि एक कॉमेडियन केवल हंसाने वाला कलाकार नहीं, बल्कि फिल्म की आत्मा भी हो सकती है। दोस्तों, महमूद का जीवन हमें सिखाता है कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर चेहरे पर मुस्कान और दिल में हौसला हो तो मंजिल ज़रूर मिलती है।

0: हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं

0: इसी मुस्कुराहट के साथ अपनी दोस्त अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: तुम्हें किधर को जाता ही तंदा ना क्यों?

0: ताली तक धीमी तक ताली तक जमी तक झाला अंग तक जोगी तक ताली के
1: एक ही कलाकार कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे महमूद पर कार्यक्रम। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 3 बजे हैं और ये वक्त है कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज़ का, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं गोल्डन इरा के कुछ मीठे सुरीले गीत। कार्यक्रम को लेकर मैं हाजिर हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अर्चना गोयल। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम बेहद रोचक होने वाला है, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम मेलोडियस गानों के पीछे की घटना का जिक्र करेंगे कि कैसे वो गीत बना। तो पहले बात इस गीत की।

आपको यकीन नहीं होगा कि इस गीत की रचना एक छोटे से ढाबे पर हुई थी। शंकर, जयकिशन, हसरत जयपुरी और शैलेंद्र जब भी खंडाला जाते थे तो वो रास्ते में एक ढाबे पर रुका करते थे। वहाँ चाय नाश्ते के दौर चलते और वहीं पर एक काम करने वाले लड़के का नाम रमैया था। वो तेलुगु भाषी था। शंकर हैदराबाद रह चुके थे और तेलुगु समझते थे। उन्होंने आवाज़ लगाई, रमैया वस्ता वैया, जिसका मतलब था रमैया इधर कब आओगे। ये दो शब्द शैलेंद्र को इतने पसंद आए कि वो ये बार बार गुनगुनाने लगे। तभी हसरत मुस्कुराने लगे और बोले, बस इतना ही काफ़ी है। शैलेंद्र ने तुरंत अपनी अगली कड़ी जोड़ दी, मैंने दिल तुझको दिया। मुंबई लौटते ही शैलेंद्र ने ये गीत पूरा किया और राजकुमार राज कपूर को सुनाया। गीत सुनकर राज कपूर मुस्कुराए और खुश हुए और इस तरह जन्म हुआ इस खूबसूरत गीत का।

दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि किशोरदा ने सिर्फ अपनी आवाज़ से ही नहीं बल्कि एक साइकिल की घंटी से भी एक गाना सुपरहिट बना दिया था। और ये फिल्म थी पलकों की छाँव में, जिसमें हेमा मालिनी और राजेश खन्ना थे। लेकिन रिकॉर्डिंग के दिन किशोरदा ने एक कमाल कर दिया। वो साइकिल की एक पुरानी घंटी बजाते हुए आए। सबने हंसकर पूछा, दादा ये किस लिए लाए? तो किशोरदा मुस्कुराए और बोले, पोस्टमैन का गाना गाने वाला हूँ तो फील भी वैसी ही आनी चाहिए ना। इसके बाद उन्होंने उसी अंदाज में गीत को रिकॉर्ड किया। गीत के बोल लिखे थे गुलजार साहिब ने और संगीत दिया था लक्ष्मी प्यारे ने। और अपनी जादुई आवाज़ से हमेशा के लिए यादगार बना दिया किशोर दा ने।

और अब बात करते हैं 1963 की फिल्म हमराही की, जिसमें एक गाना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में रिकॉर्ड करने की योजना थी, लेकिन लता जी के पास समय की कमी थी, इसलिए गाने का डमी वर्जन मुबारक बेगम से रिकॉर्ड करवाया गया ताकि बाद में लता जी की आवाज़ में डब किया जा सके। लेकिन जब रिकॉर्डिंग का समय आया तब भी लता जी मौजूद नहीं थी। तब मोहम्मद रफ़ी ने संगीतकार शंकर जयकिशन की जोड़ी से कहा कि इस गायिका की आवाज़ नर्म और दिल को छू लेने वाली है। फिर क्या था, गाने को मुबारक बेगम की आवाज़ में ही रहने दिया गया और तैयार हुआ ये गीत मुबारक बेगम की आवाज़ में।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेट्रो, माफ कीजिएगा, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज और मैं हूं आज आपके साथ अर्चना गोयल। और अब बात करते हैं एक ऐसे गीत की जिसके गीत गाने थे रफ़ी साहब को लेकिन गाया किशोर कुमार ने। ये फिल्म थी मिस्टर एक्स इन बॉम्बे जिसके हीरो थे किशोर कुमार। हुआ ये कि रिकॉर्डिंग के समय अचानक ये गीत किशोर दा गुनगुनाने लगे और गीत गाते समय जो दर्द अपनापन छलका तो संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तुरंत फैसला किया कि अब ये गीत किशोर खुद गाएंगे। और सच ये है कि ये गीत आज भी लोगों की जुबान पर है और हमेशा याद किया जाता है। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

बात करते हैं उस समय की जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया था। 60 के दशक में दो महान गायक लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी में रॉयल्टी को लेकर बहस हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे के साथ गाना ना गाने की जिद कर बैठे। नतीजा ये हुआ कि 4 साल की लंबी खामोशी उनके बीच रही। रफ़ी साहब ने आशा और सुमन कल्याणपुर के साथ अनेक हिट गाने दिए। लता मंगेशकर को लगा कि कुछ फ़र्क नहीं होगा, लेकिन फिर हुआ ये कि फिल्म ज्वेल थीफ के संगीतकार SD वर्मन ने तय किया कि उनके गीत रफ़ी और लता ही गाएंगे। उन्होंने लता जी को काफ़ी आत्मीयता से मनाया कि उनके ईगो के कारण नए लोगों को लेना पड़ रहा है और उनके लिए ये ठीक नहीं। फिर लता जी को भी एहसास हुआ, इस तरह उन्होंने रफ़ी साहब के साथ फिर से गीत गाया और वो गीत था ज्वेल थीफ का।

क्या आप जानते हैं कि एक गाना जिसे एसडी बर्मन रफ़ी साहब से गवाना चाहते थे, लेकिन किशोर कुमार ने साफ कह दिया कि ये गीत वो खुद गाएंगे। ऐसा क्या था उस गीत में? ये किस्सा है 1971 में आई फिल्म कैमलर का। एसडी वर्मन का मानना था कि ये गीत राग भैरवी पर आधारित है, तो रफ़ी साहब पर यह आवाज़ सूट करेगी क्योंकि शास्त्रीय संगीत पर उनकी पकड़ कमाल की है। लेकिन किशोर कुमार को ये गीत इतना पसंद आया कि उन्होंने खुद गाने की जिद पकड़ ली और इस गाने के लिए उन्होंने दिन रात 3 दिनों तक अभ्यास किया। और वाकई ये गीत आज भी किशोर कुमार की आवाज़ में श्रोताओं के दिल तक पहुँचता है।

0: क्या आप यकीन करेंगी कि बॉलीवुड का एक गीत सिर्फ चार शब्दों से बना था? इन चार शब्दों ने गीतकार की 10 दिनों की खामोशी को ख़त्म कर दिया। ये बात है 1970 में आई फिल्म आन मिलो सजना की। सब तैयार था लेकिन गीतकार आनंद बख्शी पिछले कई दिनों से गाने की लाइन नहीं लिख पा रहे थे। तभी स्टूडियो में जे ओम प्रकाश आए और जाते जाते बस उन्होंने ये कहा, अच्छा तो अब हम चलते हैं। बिना सर उठाए आनंद बख्शी ने बस यही कहा, फिर कब मिलोगे? तो उन्होंने कहा, जब तुम कहोगे। और बस यही चार शब्द फिल्म की धड़कन बन गए। कुछ ही देर में कागज़ पर उतर चुका था वो अमर गीत, जिसे आवाज़ दी थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, और ये बना था दो दिलों की धड़कन और मिलने की उम्मीद का गाना।
1: अच्छा तो हम चलते हैं।

हम आकाशवाणी दिल्ली के हिंद प्रस्त चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

उर्दू मजलिस के तमाम सामईन की खिदमत में मोहम्मद अली कमाल का पुरखलूस आदाब। सामईन, आज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे है। सामईन, ये हकीकत है कि हयात इंसानी की बका और उसमें तवाज़ुन इंसान की ज़हनी और समाजी तरक्की पर है। इसीलिए ख़ुद को और दुनिया को बेहतर बनाने की इंसान ने हमेशा कोशिश की है। इसी कोशिश का नतीजा है कि नित नए तजर्बे किए गए और नई नई ईजादात की गई। उन्हीं ईजादात में एक ईजाद रेडियो की है। ये एक तरसील का आला साइंसी उसूलों पर काम करता है। रेडियो दरअसल बर्की लहरों को हासिल करके उसे आवाज़ की शक्ल में पेश करने का आला है। आवाज़ की रफ्तार को फ्रीक्वेंसी में नापा जाता है, जिसके लिए साइंसी लफ्ज़ हर्ट्ज का इस्तेमाल किया जाता है, जो हेनरिक रोडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर मौसूम है, जिसने सबसे पहले मकनातीसी लहरों का तजर्बा किया था। बहरहाल, दुनिया में रेडियो की ईजाद हुई और ब्रॉडकास्टिंग का सिलसिला शुरू हुआ। ब्रॉडकास्टिंग या रेडियो नशरियात किसी भी मास मीडिया के ज़रिए रेडियाई लहरों का इस्तेमाल करते हुए एक मखसूस जगह यानी स्टूडियो से मुतअद्दिद जगह आवाज़ को तकसीम करना कहा जा सकता है। हिंदुस्तान में बाकायदा नशरियात की शुरुआत 23 जुलाई 1927 को बम्बई, जिसे

इसके बाद 1930 में इसको हुकूमत ने अपनी तहवील में ले लिया। 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया और 1956 से इसको बाज़ाब्ता तौर पर आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाता है।

0: सामईन आकाशवाणी आवाम से राबते का एक अहम जरिया माना जाता है। ये नेटवर्क हमारे मुल्क का सबसे बड़ा नेटवर्क है और ये एक बहुत बड़ी आबादी तक रसाई का वसीला है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आकाशवाणी मकामी जबानों और बोलियों में तालीम, ज़रात, देही तरक्की और सेहत से मुतालिक मालूमात फराहम करता है। समय आइए सुनते हैं ये तकरीर, नौजवानों की किरदार साजी में आकाशवाणी का रोल। पेश कर रहे हैं जनाब SM शफीक।
1: शख्सियत क्या है, यह किसे कहते हैं? ख्यालात, एहसासात और जज्बात और बर्ताव ही एक शख्स को दूसरे से मुख्तलिफ बनाता है। शख्सियत के फरोग के लिए चंद बातें अहम हैं। खुला दिमाग, जिस्मानी ज़ुबान पर तवज्जो, मुस्बत अंदाज फ़िक्र, अच्छा सामे होना, खुश खुर्रम और नर्म हो, ईमानदारी और वफादारी, नए नए लोगों से राबता और ताल्लुकात, सब्र तहम्मुल और मुश्किलात में सुकून और ठहराव। एक शख्सियत में इन खसूसियात का इजहार मुख्तलिफ तरीक़ों और ज़राए से होता है। इनमें से एक ज़रिया है इबलाग का। तो आइए पहले ज़राए इबलाग की बात करते हैं, खुसूसन रेडियो की। ज़राए इबलाग का बुनियादी काम अवाम को बाखबर करना, उनके इल्म में इजाफा करना और उसमें बेहतरी लाना है। हिंदुस्तान जैसे तरक्की पज़ीर ममालिक में ज़राए इबलाग और मीडिया की बड़ी अहमियत है। मुल्क की आबादी का चूंकि एक बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, इसलिए ज़राए इबलाग की इस तबके में बेदारी पैदा करने की बड़ी जिम्मेदारी है। ये बेदारी तालीमी और सकाफती और समाजी नौयत की होती है। ज़राए इबलाग में रेडियो नौजवानों को बेदार करने में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। दुनिया में मालूमात और तफरी की लगातार बदलती रवायात और ज़राए के बावजूद रेडियो की अहमियत से किसी तो

0: इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत परवथानेनी हरीश ने पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित रखकर पानी के दुरुपयोग के आरोप पर ये जवाब दिया। फिलीपींस के मनीला में 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति का आह्वान किया और स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियमों पर आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने एक दूसरे के देशों में रहने वाले अपने नागरिकों की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। भारत यूएई संयुक्त वाणिज्य दूतावास समिति जेसीसीए की सातवीं बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रवासी भारतीय मामलों के काउंसलर, पासपोर्ट और वीजा सचिव श्री प्रिया रंगनाथन और यूएई के विदेश मंत्रालय के अवर सचिव उबैद मोहम्मद अलहसान अल शमसी ने इस बैठक की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने समुदाय के कल्याण पर बल दिया और कौंसलर, वीजा और कानूनी क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए आगामी रणनीति पर सहमति व्यक्त की। सरकार ने उन सोशल मीडिया पोस्टों का खंडन किया है जिनमें यह दावा किया गया था कि दिल्ली में नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान 21 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया कि ये सारे दावे झूठे हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Both the Houses of Parliament have been adjourned for the day following the opposition protest over various issues, including the NEET paper leak case and student protests. Meanwhile, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appealed to the opposition parties, particularly the Congress, to cooperate in holding a discussion on the NEET paper leak issue. He added that the government has already conveyed its willingness to hold a discussion on the issue in both houses as per the date and duration desired by the opposition. Mr. Rijiju appealed to the Congress party not to impose conditions, stating that such conditions may be seen as an attempt to avoid discussion. Union Minister and Leader of the House, J.P. Nadda, criticized the opposition, terming its conduct as highly irresponsible. He alleged that the opposition neither wants a discussion nor is willing to allow the House to function. Leader of the opposition, Mallikarjun Kharge, demanded the resignation of the Union Education Minister, saying that without his resignation, the discussion will not happen. He said that Congress is not shying away from discussion. Prime Minister Narendra Modi announced that the centre will set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks and asserted that protecting students' future remains the government's top priority. In a social media post, the Prime Minister said that nothing is more important than the welfare and future of the youth of the country. His statement comes amid ongoing student protests at Delhi's Jantar Mantar over the NEET paper leak case. The Prime Minister said he has directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. Delhi Police has clarified that the powers of detention granted under the National Security Act, NSA, to the Delhi Police Commissioner is not new, as it is a routine extension or renewal of powers. In a statement, the Delhi Police said this order is issued every 3 months and the present renewal was issued on the 7th of July for the period 19th July to 18th October this year. It said the renewal was issued well before the commencement of the students' protests. The Delhi Police has further clarified that no specific request was made in the present context. The police said that the renewal is a routine administrative exercise and has been interpreted out of context by certain media reports. President Draupadi Murmu will reach Bucharest in Romania today in the final leg of her three-nation visit. After her arrival at the Cotroceni Palace, she will be accorded a guard of honour. She will hold delegation-level talks with her Romanian counterpart, Nicușor Dan. Several MOUs will be signed after the talks. The President of Romania and the First Lady will host a state dinner in honor of President Murmu today. India has called for zero tolerance against terrorism and reaffirmed its commitment to a free, open, inclusive and rules-based Indo-Pacific at the 33rd ASEAN Regional Forum Ministerial Meeting in Manila, the Philippines. Addressing the meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, this forum remains an important platform for discussing political and security issues in the Indo-Pacific, particularly at a time of growing global complexities. India has rejected Pakistan's remarks at the United Nations on the Indus Waters Treaty, saying it cannot be expected while cross-border terrorism is used as an instrument of state policy by Islamabad. India's permanent representative, Ambassador Parvathaneni Harish, responded at the UN Security Council after Pakistan accused New Delhi of weaponizing water by keeping the Indus Waters Treaty in abeyance.
2: Our position on the Indus Water Treaty remains clear and consistent. Cooperation on the basis of mutual trust and goodwill cannot be expected when cross-border terrorism is regularly deployed as an instrument of state policy. As for the Union Territory of Jammu and Kashmir, it has always been, is, and will remain an integral and inalienable part of India. This is a constitutional and legal reality that Pakistan deliberately chooses to ignore.
1: The 23rd Commonwealth Games will begin in Glasgow, Scotland this evening. Teams from 74 nations will participate in the 10-day event. Olympic medalists Neeraj Chopra, Mirabai Chanu and Lavlina Borgohain are set to represent India at the Games. The IMD has issued a red colour warning for very heavy to extremely heavy rainfall over parts of Gujarat and Madhya Pradesh for today. And that is the end of this news bulletin.
3: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम रेट 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारी घड़ी में शाम के 4:10 हुए हैं। आइए आपको गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में जानकारी दे दें। सबसे पहले गुमशुदा व्यक्ति हैं जिनका नाम है सिद्धांत गौतम, पुत्र सोनू। सिद्धांत गौतम की उम्र है 12 वर्ष, कद 4 फुट 5 इंच, शरीर पतला है। ये 20 मई 2026 को जेवर गौतम बुद्ध नगर से अपने घर से बिना बताए चले गए हैं और अब लापता हैं। अगले गुमशुदा हैं सुजीता, पुत्री रंजीत। इनकी उम्र है 17 वर्ष, ये लड़की हैं। इनकी शरीर सामान्य है, कद 5 फुट। ये 22 मई 2026 को सदर सराय कॉलोनी सेक्टर 46 नोएडा से लापता हैं। वंशिका, पुत्री विजेंद्र सिंह, उम्र 16 वर्ष, कद 5 फुट 2 इंच, ये सेक्टर 73 नोएडा गौतम बुद्ध नगर से लापता हैं। अगली गुमशुदा हैं पूजा, पुत्री सतपाल सिंह, ये लड़की हैं। इनकी उम्र है 20 साल, कद 5 फुट, शरीर औसत है। इनके पैर अंदर की ओर मुड़े हुए हैं, ये बादलपुर गौतम बुद्ध नगर से लापता हैं। अगली गुमशुदा हैं वर्षा, इनकी उम्र है 18 साल, ये लड़की हैं। कद 5 फुट 1 इंच, शरीर की बनावट औसत है। इनके दाहिने हाथ पर जले का निशान है, ये रघुपुरा गौतम बुद्ध नगर से लापता हैं। ललिता शर्मा, पुत्र, कृपया से फिर सुन लें। ललित शर्मा, पुत्र विनोद शर्मा, उम्र 26 साल, कद 5 फुट 8 इंच, शरीर मजबूत है। इनकी ठोड़ी पर मस्सा है। ये ग्राम सैनी इकोटेक 3 गौतम बुद्ध नगर से लापता हैं। अगली गुमशुदा हैं निकिता, जिनकी उम्र है 20 साल, ये लड़की हैं। शरीर मजबूत है इनका, रंग गोरा, चेहरा गोल, कद 5 फुट 3 इंच। ये 21 अप्रैल 2026 को ग्राम देवई दनकौर गौतम बुद्ध नगर से लापता है। और अंतिम गुमशुदा व्यक्ति का नाम है रानी कुमारी, पुत्री अशोक राम, ये लड़की हैं जिनकी

0: 16 वर्ष, कद है 5 फुट, रंगे हुआ है, ये सेक्टर 20 नोएडा गौतम बुद्ध नगर से लापता है। श्रोताओं, इन गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में यदि कोई सूचना आपके पास है या कोई भी सूचना आपको मिले तो आप अपने नज़दीकी पुलिस थाने में इसकी सूचना दे सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप टोल फ्री नंबर 112 यानी कि 112 पर डायल करके इन गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना दे सकते हैं। अभी हमारे श्रोता गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना सुन रहे थे।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जन जन का रखे ध्यान, TB मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, TB मुक्त भारत अभियान।
5: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, TB रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और TB की हार।
6: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में TB के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर TB के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
4: जन जन का रखे ध्यान, TB मुक्त भारत अभियान।
5: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम

0: नमस्कार दोस्तों, वक्त हो चला है आपके अपने युवाणी प्रोग्राम का। आज मैं हूं श्वेता आपके साथ
1: और मैं नित्या। तो चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, टुडे इन हिस्ट्री।
0: नित्या, तुम्हें आज की डेट पता है?
1: आज तो 23 जुलाई है।
0: और आज पता है क्या है?
1: आज हमारे आकाशवाणी का दिन है।
0: बिल्कुल, आज ही के दिन यानी कि July 23, 1927 को इंडिया में पहली बार रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था, which went on air from the Bombay station under the Indian Broadcasting Company, IBC.
1: This day serves to highlight the profound impact of radio and broadcasting on India's development, education and cultural preservation.
0: Nitya, क्या तुम आकाशवाणी नाम का मतलब और उस तक पहुंचने का इतिहास जानती हो?
1: श्वेता, मतलब तो पता है। The Sanskrit term आकाशवाणी literally translates to voice from the sky or a message from heaven. ये टर्म पहली बार एक बंगाली पोयम में यूज हुई थी जो कि लिखी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इन 1938 एंड वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड एज द रेडियोस ऑन एयर नेम इन 1956।
0: बिल्कुल, पर 1956 से पहले हम आकाशवाणी को क्या बुलाते थे जानती हो?
1: अरे श्वेता, लिसनर्स का और मेरा ना अब सस्पेंस और मत बढ़ाओ, बता भी दो।
0: चलो बताती हूँ। द नेम इवॉल्व फ्रॉम द प्राइवेट इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इन 1927। The government took over operations and नाम दिया Indian State Broadcasting Services in 1930. On June 8, 1936, it was rebranded as All India Radio, AIR, to give it a more national identity. और फिर जाकर finally in 1956, the broadcaster officially adopted the name Akashvani.
1: अरे वाह श्वेता, ये तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था कि हमारे आकाशवाणी का इतिहास इतना लंबा है। And we are proud to be a part of this legacy, है ना श्वेता?
0: बिल्कुल।
1: और मैं जानती हूँ हमारे listeners भी जरूर होंगे, है ना दोस्तों? अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: जानते हैं लिसनर्स, आकाशवाणी 90 इयर्स से भारत को जानकारी और प्रोग्राम्स दे रहा है।
1: फॉर डेकेड्स आकाशवाणी हैज प्लेड अ वाइटल रोल इन कनेक्टिंग द नेशन बाय प्रोवाइडिंग रिलायबल न्यूज, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, कल्चरल कंटेंट एंड एंटरटेनमेंट।
0: इवन टुडे आकाशवाणी कंटिन्यूज टू सर्व मिलियंस ऑफ पीपल, रीचिंग रिमोट एरियाज एंड प्रमोटिंग यूनिटी थ्रू इट्स ब्रॉडकास्ट। 23 जुलाई भारत में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1927 में देश में संगठित रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी।
1: आकाशवाणी ने इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए दशकों से देश को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन से जोड़े रखा है। जानते हैं लिसनर्स, आकाशवाणी का मोटो कहता है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। रिटन इन संस्कृत इट ट्रांसलेट्स टू फॉर द हैप्पीनेस ऑफ द मेनी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेनी एंड डायरेक्ट्स द पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स मिशन टू एजुकेट, इन्फॉर्म एंड एंटरटेन द पब्लिक।
0: इसी बात पर सुनते हैं गाना मन का रेडियो।

0: लिसनर्स, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ,
1: मन से माइक्रोफोन। मन से माइक्रोफोन के सेगमेंट में हम सुनेंगे सोनल गोयल, आईएएस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, जिनसे बात की है संतोष द्विवेदी जी ने।
2: सुनल गोयल जी, आपका हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: सुनल जी, ये विचार कब आया आपके मन में कि आपको माउंट एवरेस्ट जाना है और इतनी कठिन जो यात्रा है वो आपको पूरी करनी है, जबकि आपके पास प्रशासन की भी इतनी सारी व्यस्तताएं रहती होंगी, तो आखिर कैसे आपके मन में आया और कैसे आपने इसे किया?
3: यात्रा कोई भी हो या लक्ष्य कोई भी हो, एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि उसकी तरफ जाने के लिए कोई एक एम चाहिए, उसके लिए कारण चाहिए।

0: एवरेस्ट बेस कैंप की बात करूं तो दिसंबर 2023 या मान लीजिए जनवरी 2024 में एक मूवी मैंने देखी, ऊंचाई। और उस मूवी में बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी दिखाई गई, एक जर्नी दिखाई गई फोर फ्रेंड्स की, चार ऐसे फ्रेंड्स जो कि 60+ एज के हैं। इतनी ओल्ड एज में आके उनमें से एक फ्रेंड का ये सपना है कि वो एवरेस्ट बेस कैंप पे जाए। और जब ये चारों मिलके डिसाइड करते हैं, सब अरेंजमेंट्स भी हो जाते हैं, और जो फ्रेंड जिनका सबसे ज़्यादा मन में विश्वास था कि हमें जाना है वहाँ पे, उनकी ही अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है। उनकी इच्छा को किस तरीके से बाकी तीन फ्रेंड्स ने पूरा किया, और हम सब ये समझ सकते हैं कि 60+ की जो एज होती है उसमें शारीरिक बहुत सारी लिमिटेशंस आ जाती हैं, और उस लिमिटेशंस को कैसे ओवरकम करके और फिजिकली और मेंटली ने चैलेंजिंग जर्नी को कैसे पूरा किया, वो उस फिल्म का संदेश है। तो मुझे एक तो प्रेरणा वहाँ से ज़रूर मिली। दूसरा, उन्हीं दिनों मतलब अक्टूबर 2023 में, 24 अक्टूबर 2023 में, मैंने अपने जीवन में जो मेरे पिलर सपोर्ट रहे, मेरे फादर, उनको हमने खोया अनफॉर्चुनेटली टू कैंसर। तो उस समय भी मतलब मेरा मन एक्चुअली एक ऐसी स्थिति में था कि एक जीवन का एक ऐसा पड़ाव था कि क्लैरिटी नहीं थी और एकदम से कहते ना वॉइड आ चुका था। तो कहीं ना कहीं ये मन में आया कि कैंसर एक ऐसा डिजीज है जिसको आज भी अगर हम देखें तो वो 100% क्योरेबल नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं कि उसको हम अवॉइड कर पाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल को चूज़ करके, रूटीन में अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप करा के। तो मुझे वही लगा कि मैं भी अपनी लाइफ के लिए एक लक्ष्य रखूं। और एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि इससे पहले मतलब जनवरी 2024 से पहले मैंने जो जीवन में कोई ट्रैक किया था, वो किया था सिर्फ अपनी ट्रेनिंग में एकमात्र ट्रैक, वो कि 2008 में था, जो कि एक मैंडेटरी ट्रैक होता है मसूरी में, जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं लबासना में, वहाँ कराया जाता है। तो उस ट्रैक के बाद में मैंने इन पिछले बीच में जितने भी साल गए, 15-16 साल गए, उसमें मैंने कुछ फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी नहीं की और ट्रैक तो कोई किया ही नहीं। तो जब ये लक्ष्य आया तो फिर मैंने सोचा कि ये करना ईजी नहीं है और उसके लिए फिर तैयारी भी करनी ज़रूरी है। तो बेसिकली रीज़न यही था कि एक मूवी से मुझे संदेश मिला और मुझे ये लगा कि कैंसर अवेयरनेस, प्लस हम ये भी देखते आ रहे हैं कि युवा जो है हमारे देश की जो शक्ति है, वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हर स्टेट में ड्रग्स के प्रति, जो आंकड़ों की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ यूथ, नंबर ऑफ पीपल हु आर गेटिंग अफेक्टेड थ्रू द ड्रग अब्यूज़ इज़ नॉट रिड्यूसिंग। और NCERB का डेटा भी अगर हम पढ़ें, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिर हमने ड्रग अब्यूज़ के अगेंस्ट अभियान भी जो चालू किया, और काफ़ी सारी स्टेट्स उसमें सक्रिय रूप से निभा रही हैं अपनी भूमिका। तो मुझे लगा कि ये फाइट अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ से, नो टू ड्रग्स, कैंसर अवेयरनेस, इन सब विषयों को लेके मैं एक जागरूकता का भी एक काम कर सकती हूँ। अपने इस लक्ष्य के प्रति मैं आगे बढ़ने का मैंने एक संकल्प लिया।
1: जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि आपको प्रेरणा उस एक फिल्म से मिली, और उसके बाद आपने जो हेल्थ अवेयरनेस है, जो कि युवाओं के लिए सबसे जरूरी आवश्यक चीज़ है उनके लिए, क्योंकि अगर जीवन में आगे पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, तो स्वास्थ्य तो सही होना ही चाहिए। तो सुनील जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे जब आपने यात्रा शुरू की तो आपको मानसिक और शारीरिक तौर पर, क्योंकि आपने जो पहले ट्रैक किया था वो करीब 18 वर्ष पहले किया था, अगर एक बच्चा जन्म ले तो अब वो 18 वर्ष का हो गया होगा, तो 18 वर्षों के बाद दोबारा ट्रैक करना और इतना कठिन ट्रैक करना, तो शारीरिक और मानसिक तौर पर आपको कितना मजबूत होना पड़ा?
0: जी, तो मैं इसके लिए बताना चाहूँगी कि जैसे जब जनवरी 24 में मेरे दिमाग में आया कि मुझे इसको अटेम्प्ट करना है, एटलीस्ट मैं ट्राई करूँगी, टाइमलाइन नहीं दी थी मैंने अपने आप को कि 2 साल में करूँगी या 3 साल में करूँगी, धीरे धीरे प्रयास शुरू किए। मई 2024 में मैंने एक ट्रैक किया, रुपिन सुपिन वैली के नाम से वो ट्रैक है, उत्तराखंड में ही वो ट्रैक होता है, और लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पे वो ट्रैक है। वो ट्रैक लगभग मुझे ध्यान है 5 दिन का ट्रैक था, और उसमें धीरे धीरे हम ऊपर जाते हैं, और लास्ट दिन जो है वो पूरा स्नो की बेल्ट है, स्नो केप्ड माउंटेन है जिसपे चलना होता है। तो वहाँ से एक्चुअली शुरुआत हुई मेरी, और मई 2024 में वो किया। उसके बाद मैंने मैराथन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, पहले 10 किलोमीटर से शुरुआत की, उसके बाद मैं अब हाफ मैराथन में पार्टिसिपेट करती हूँ, हाई अल्टीट्यूड मैराथन मैंने लद्दाख मैराथन में पार्टिसिपेट किया, पिछले साल मैंने कैलाश मानसरोवर यात्रा भी मुझे करने का मैं बोलूंगी कि परम सौभाग्य मिला कि महादेव ने बुलाया। और उसके अंदर भी जो यात्रा होती है उसमें 3 दिन का ट्रैक होता है अगर आप परिक्रमा करना चाहते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये अभी जो मैंने ईबीसी का ट्रैक किया वो एक सिंगल डे का एफर्ट नहीं था, ये एक जर्नी रही जिसमें अपने आप को मैंने फिजिकली तैयार किया एंड बीइंग अ फीमेल, मतलब हमारे हार्मोनल चेंजेस इतने होते हैं बॉडी में एंड आपके 30+ के बाद आपके अलग चेंजेस होते हैं, 35+ के बाद अलग चेंजेस होते हैं, 40+ के बाद अलग चेंजेस होते हैं. तो नाउ जस्ट लाइक आई एंटर्ड माई 40s, सो उसके बाद भी इमोशनली, फिजिकली, मेंटली देर आर सो मेनी चेंजेस विच कीप ऑन गोइंग.

0: है कि आपको वॉक के लिए जाना है या जॉगिंग करनी है या जिम जाना है या योगा करना है, उस रूटीन को अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हफ्ते में 1 या 2 दिन करने से नहीं होगा, यू हैव टू डू इट कंटिन्यूअसली। एक स्टैमिना जो है वो आपको डेवलप करना है।
1: सुनल जी, हमने अभी हाल ही में आपका एक व्याख्यान सुना था जिसमें आपने, जैसे अभी आपने बात की कैलाश मानसरोवर की बात की या फिर आप एवरेस्ट बेस कैंप तक गए, किसी भी महिला के लिए साधारण बात नहीं है कि वो इसको पूरा करे। लेकिन इसके साथ साथ जिस भी वर्क प्लेस पर वो काम कर रही होती है वहां पे भी कुछ ना कुछ सर्टेन बायसेस का सामना उन्हें करना पड़ता है। अगर ये बायसेस आते हैं तो इनसे कैसे एड्रेस करें, इन सबको धता बताते हुए कैसे अपने मंजिल तक पहुंचे वो?
0: तो सबसे पहले तो ये जो दो इम्पॉर्टेंट और एक डिफ़िकल्ट ट्रैक और यात्रा मैंने की, कैलाश मानसरोवर यात्रा हो एंड एवरेस्ट बेस कैंप, मैं ये बताना चाहूँगी कि ये दोनों में ही मैं सिंगल थी, मतलब मैं सोलो थी, मेरे साथ में कोई फैमिली फ्रेंड नहीं था। तो इट वॉज़ अ ग्रुप ऑफ अननोन पीपल इन बोथ द जर्नीज। और हुआ ऐसे कि इनिशियली प्लान था किसी के साथ जाने का, बट वो लास्ट मोमेंट पे कहते हैं ना कि शायद अगर आपका बुलावा लिखा है तो आप जाएंगे
1: आप ही
0: और किसी
1: जाएंगे।
0: का नहीं लिखा है तो वो नहीं जा पाएंगे। तो कैलाश यात्रा में भी ऐसे ही हुआ और एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक में भी ऐसे ही हुआ कि मेरे को पहले किसी के साथ जाना था, उनका कैंसिल होके और फिर मेरे को ये अवसर मिला। तो मैं फीमेल्स के लिए ये इम्पोर्टेंटली इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट कभी मत कीजिए कि आप ये चीज़ कैसे करेंगे। सारी क्षमताएं हमारे अंदर हैं और सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि अपनी स्ट्रेंथ पे खुद का विश्वास। और जो बात आपने कही बायसेस की, तो बायसेस डेफिनेटली हैं हमारे समाज में। मैं पानीपत हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, मेरी एजुकेशन दिल्ली में हुई है और नौकरी के तौर पे मैंने त्रिपुरा राज्य में, हरियाणा में मैंने काम किया। चाहे वो अर्बन एरियाज हो, चाहे हमारे ग्रामीण आंचल हो, चाहे हमारा नॉर्थ इंडिया हो या हमारा नॉर्थ ईस्ट हो, ये बायसेस इनहेरेंट हैं क्योंकि आज भी सोसाइटी में इक्वालिटी या इक्विटी की जो हम बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, वो जन्म से लेके, बच्ची के जन्म से लेके जब उसके अलग अलग पड़ाव आते हैं जिंदगी के, तो कहीं ना कहीं वो असमानताएं हैं। ये मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि कम हुई है क्योंकि शिक्षा का स्तर अभी बढ़ रहा है या पेरेंट्स भी बहुत इंकरेज कर रहे हैं लड़कियों को। सब जगह में इतनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स आ गई हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सपोर्ट कर रही हैं, तो ये बहुत एक पॉजिटिव चेंज है। लेकिन फिर भी एक महिला होने के नाते मैं ये बोलूंगी कि देर आर फ्यू इनहेरेंट बायसेस इन द सोसाइटी, इन द सिस्टम, एंड वी हैव नो ऑप्शन बट टू फेस देम, एनकाउंटर देम, चैलेंज देम एंड मूव टूवर्ड्स आवर गोल। तो वही मैंने बात जो पहले बोली कि अपनी क्षमताओं पे खुद का विश्वास, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी समझना कि हमारी दिक्कतें, हमारी परेशानियाँ ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू द मेल काउंटर पार्ट, बट दैट शुड नॉट डेटर अस। उसको हमें अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, उसको रीज़न नहीं बनाना है, कारण नहीं बनाना है कि हम ये नहीं कर सकते हैं। हर क्षेत्र में लड़कियाँ हमारे देश में आगे बढ़ रही हैं और बहुत आगे बढ़ेंगी, प्रोवाइडेड वी ऑल सपोर्ट देम।
1: बिल्कुल, चलना ही सिखाती है राह की ठोकर, ये सोच लोगे तो मुश्किल सफर ना होगा। और शायद हमारी जो आज विशिष्ट अतिथि हमारे साथ जुड़ी हैं सुनील जी, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही सोचा। और जो हमें सुनने वाले, हम बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं श्रीमती सुनील गोयल जी से, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी हैं और त्रिपुरा में सचिव के पद पर तैनात हैं। सुनील जी, हम अपनी बातचीत आगे करते हैं। हम अपने आप को बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत तैयार करते हैं, कई बार महापुरुषों की जीवनियां भी पढ़ते हैं, उनको आदर्श बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि हम अपने पथ पर अडिग होकर चलें। लेकिन फिर भी कई बार ऐसे मौके आते जरूर हैं कि जब हम सेल्फ डाउट करते हैं या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जब हमें एक बार पथ से विचलित करने की कोशिश करती जरूर है। तो मैं आपसे विशेष करके जानना चाहूंगा, कभी ऐसा आपको लगा कि कभी कोई ऐसा क्षण जब आपको खुद पे थोड़ा सा मुश्किल लगी, या क्योंकि ऐसा मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूँ, जो हमें सुन रहे हैं बच्चे या जो युवा सुन रहे हैं, सबके जीवन में कभी न कभी एक ऐसा क्षण आता है कि जब उसका मोरल हर समय उतना हाई नहीं रह
0: जी
1: पाता,
0: जी
1: उन
0: बिल्कुल।
1: क्षणों के लिए आप क्या कहेंगी?
0: तो बच्चों के लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि चाहे वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी हो या लाइफ में आप किसी भी करियर के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस आपको पहली बार में मिल जाए। तो फेलियर से घबराना नहीं है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि फेलियर इज़ नॉट द एंड एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम फेलियर। जैसे मेरा भी सिलेक्शन यूपीएससी में प्रथम प्रयास में ना होके मेरी सेकेंड अटेम्प्ट में हुआ। और ये जो आपने बात बोली सेल्फ डाउट की, कई बार एंग्जाइटी होती है, कई बार अप्रिहेंशन होते हैं, तो वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव पीरियड ही नहीं, नौकरी में आने के बाद भी ऐसे काफ़ी सारे फेजेस हम लोग फेस करते हैं आज भी। मतलब कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा होता है कि ये सिचुएशन ऐसी आई है, चैलेंजिंग सिचुएशन है, इसको कैसे हैंडल करें। कई बार आप ऊपर से गाइडेंस ले पाते हैं, कई बार

0: हैव टू डिसाइड ऑन द स्पॉट. तो मुझे लगता है कि अगर हमारी इंटेंशन करेक्ट है, इंटेंशन ट्रू है, और हमारे जो एक्शन है वो गाइडेड बाय यू नो प्रिंसिपल्स ऑफ कंपैशन, एम्पथी, ह्यूमैनिटी, तो हम कभी गलत नहीं हो सकते. मैंने एज ए ऑफिसर भी हमेशा यही कोशिश की है. ऑफ कोर्स रूल फॉलो करना है, लेकिन उस रूल के साथ साथ हम लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को कैसे सर्व कर रहे हैं विद एम्पथी एंड कंपैशन, आई थिंक दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट.
1: बिल्कुल, आपने एम्पैथी की बात की और ये मुझे लगता है आपने जिस मानवीय गुण की बात की है सबसे सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि समानुभूति के स्तर पर जब हम आते हैं तो हम वही फील करते हैं जो सामने वाला व्यक्ति कर रहा है, और तब शायद हमें उसकी वस्तु स्थिति समझने में बहुत
0: और
1: आसानी
0: मैं एक
1: होती है।
0: बात इसमें ऐड करना चाहूंगी कि आज की पेरेंटिंग इतनी, क्योंकि मैं भी पेरेंट हूँ, दो बच्चों की मदर हूँ, स्कूल में है अभी बच्चे, बट मुझे कहीं ना कहीं, जैसे मैं और भी पेरेंट्स से इंटरेक्ट करती हूँ, पीटीएम्स में जाते हैं, तो ऐसा हो गया कि सबकी लाइफ इतनी हेक्टिक है, सबकी लाइफ ही वर्किंग होने की वजह से, या नॉन वर्किंग भी है, तो इतनी फास्ट लाइफ हो गई जो हमारे बचपन में नहीं थी. तो एक रिक्वेस्ट मेरी सब पेरेंट्स से भी है, टीचर्स से भी है, कि ये जो वैल्यू सिस्टम बचपन में जो बच्चा सीखता है उसको ज़रूर इनकलकेट करने का हम सबको प्रयास करना चाहिए. ये जो प्रिंसिपल्स हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है, हमें कंपैशनेट इंडिविजुअल बनना है, हमें एक कहते हैं ना, एक मॉरल फैब्रिक जो हमारा यूथ में जो जनरेट होता है, वो हमें हर मुश्किल समय के लिए हमें हमारी हेल्प करता है. तो वो हमारी एज पेरेंट्स भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी यंगर जनरेशन को ये सब वैल्यू सिखाएं.
1: जी बिल्कुल, सुनील जी जैसे आपने कहा कि आप एक माँ भी हैं, आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में तो हैं ही, और आप एक ऐसे राज्य से भी आती हैं जो जहाँ शायद काफ़ी मुश्किल रही है एक समय पे, पर अब शिक्षा के बढ़ते स्तर के साथ थोड़ी चुनौतियाँ कम हुई हैं, पर फिर भी चुनौतियाँ तो हैं। सुनील जी जैसे आप माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से आईं, हर युवा ने अपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ एक एवरेस्ट बनाकर रखा हुआ जिसे
0: बिल्कुल
1: उसे फतेह करना है।
0: बिल्कुल
1: किसी युवा के लिए वो प्रतियोगी परीक्षा हो सकती है, किसी के लिए वो कोई करियर ऑप्शन हो सकता है, किसी के लिए आर्थिक संघर्ष, तो किसी के लिए स्वयं पर विजय, समिट विद इन जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे सभी युवा जो हमें अभी सुन रहे हैं, आप एक माँ, कुशल प्रशासक और एक मोटिवेटर स्पीकर, सभी को समाहित करते हैं, उनको कैसे एड्रेस करेंगे?
0: तो मैंने एक्चुअली कुछ समय पहले एक पॉडकास्ट भी शुरू किया था, और उसका टाइटल ही मैंने शिखर का सफ़र रखा है. तो वो शिखर का सफ़र, जैसे आपने बहुत ब्यूटीफुली इसको डिस्क्राइब किया एक्चुअली, कि सबका अपना एक पीक है, सबका अपना एक शिखर है. कोई एग्ज़ाम में एक्सेल करना चाहता है, कोई फिल्म लाइन में जाके अच्छा करना चाहता है, कोई स्पोर्ट्स में जाके अच्छा करना चाहता है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आपका जो लक्ष्य है उसके प्रति आपकी क्लैरिटी होना, और वो जो विजन है उस तक कैसे पहुँचेंगे, उस गोल तक कैसे पहुँचेंगे, उसके स्टेप्स आपके पास क्लियर होने चाहिए. और जब एक राह आप चुन लेते हैं तो बार बार डेविएट मत होइए, और रास्ते में मुश्किलें आएंगी, रुकावटें आएंगी, बट उनको नेविगेट कैसे करना है ये भी बहुत ज़रूरी है. आज के दिन में डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत हैं, अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया के रूप में बहुत सारे स्टडीज़ भी आ गई हैं कि किस तरीके से एंडलेस स्क्रोलिंग में बच्चे जा रहे हैं. तो मैं बच्चों को ये भी एडवाइस देना चाहूँगी कि जो भी पेजेस आप सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, जो भी वेबसाइट्स देखते हैं, जो भी चैनल्स देखते हैं, उनको फिल्टर कीजिए, और उतना ही समय लगाइए जो आपके नॉलेज एनहांसमेंट में हेल्प कर रहा है. डोंट बी मिसलेड, मिसगाइडेड बाय नेगेटिव प्रोपोगेंडा, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अपने जीवन का जो शिखर है उसको आप पहचानिए, उस लक्ष्य को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको फॉलो करना है. और अगर आपकी कमिटमेंट 100% है, आपके एफर्ट्स इन राइट स्ट्रेटजी डायरेक्शन में है, तो कोई भी आपको ताकत रोक नहीं सकती. जैसे एल्कमिस्ट जो मैंने नॉवल जब मैं अपनी स्कूल टाइम में थी तब वो पढ़ा, दैट इफ़ यू एस्पायर समथिंग जेन्युइनली फ्रॉम योर हार्ट, देन द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स एंड इनेबल्स यू टू अचीव दैट गोल. तो यही है कि पूरी कायनात आपकी मदद ज़रूर करेगी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपकी खुद की कमिटमेंट और आपके एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड ऑन, कि ये जो शिखर है ये कभी ख़त्म भी नहीं होंगे, इसीलिए मैंने उसका नाम भी रखा शिखर का सफ़र. आप एक मंजिल तक पहुंचेंगे, आपको लगेगा कि अब मैं दूसरे पड़ाव पे पहुंचूं या कुछ और नया करूं. तो इस जिज्ञासा को, इस विलिंगनेस को और इस इच्छा को कि कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है, हमेशा अपने अंदर जीवित रखिए. ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड वी आर ऑल लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, नेवर स्टॉप लर्निंग, नेवर स्टॉप एक्सपेरिमेंटिंग एंड नेवर स्टॉप आई वुड से इनोवेटिंग, बिकॉज दैट इज़ द पावर विद इन ईच वन ऑफ अस.
1: जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि प्रगति के

0: हर कदम पर नए सोपान मिलेंगे। आप
1: जी
0: एक चीज को अचीव करते हैं तो फिर आप दूसरे के बारे में सोचते हैं, और शायद यही मानव जीवन भी है कि हम जहां पर हैं उससे आगे की सोचें, और यही इसी में शायद पूरी मानवता की प्रगति भी है।
1: जी
0: सुनील जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपके इस प्रयास को भी मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि युवा शक्ति को विशेष रूप से एड्रेस करना और उनको एक मार्गदर्शन देना, ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। आकाशवाणी की पूरी टीम को मेरी बहुत बहुत बधाई, थैंक यू।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
2: लिसनर्स, अभी हमने सुनी सोनल गोयल जी की ये इंस्पायरिंग बातचीत, जिससे हमने सीखा कि अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर काम करते रहना चाहिए। आइए अब सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, अब वक्त है आज के क्विक बस सेगमेंट का, जहां हम आपको बताते हैं कुछ ही शब्दों में आज के वक्त की बातें।
1: नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट T1 एंड गुवाहाटीज लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट T2 वर नेम्ड अमंग द वर्ल्ड्स 7 मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स बाय द प्रेस्टिजियस प्रिक्स वर्सेलिस आर्किटेक्चरल एंड डिजाइन अवार्ड्स।
0: इस मॉनसून सीजन बनाइए सीट बॉम्ब्स।
1: बॉम्ब्स?
0: अरे वैसे वाले नहीं श्वेता,
1: तो कैसे नित्या?
0: मिक्स करिए अपने घर के पास पाए जाने वाले पौधों के बीज को पानी, क्ले और सॉइल के साथ। उसको एक गोल आकार देकर सूखने दें।
1: और फिर इन ड्राई हुए सीड बॉल्स को किसी भी खुले स्थान जैसे एम्प्टी गार्डन्स में फेंक कर पौधे उगाइए।
0: जी हाँ लिसनर्स, बाकी काम आपके लिए बारिश कर देगी।
1: अब मार्केट में आ गई है सेफ बायोडिग्रेडेबल एलोवेरा बैटरीज व्हिच सर्व्स एज अ ग्रेट वे टू रिड्यूस टॉक्सिक ई-वेस्ट।
0: वेस्ट से याद आया श्वेता, क्या आपको पता है लिसनर्स, थाईलैंड की सुपरमार्केट ने अब प्लास्टिक को बनाना लीफ से कर दिया है रिप्लेस एज अ पैकेजिंग मटेरियल।
1: बॉलीवुड में प्रीतम एंड पेड्रो वेब सीरीज काफी चर्चे में रही because the series blends light-hearted comedy with modern issues like cyber safety, deepfakes and online scams. It makes complex digital concepts easy and entertaining to understand for families.
0: IIT Madras और IIT Kanpur ने launch की India's first practice-oriented 4-year Bachelor of Cyber Security degree.
1: Nitya, क्या तुम social media पर हो?
0: बिल्कुल हूँ श्वेता।
1: और अभी हमने cyber security की भी बात की। तो क्या तुम सोशल मीडिया पे सेफ रहने की प्रैक्टिसेस फॉलो करती थी?
0: ऑफ कोर्स श्वेता, सोशल मीडिया पे स्कैम्स और फ्रॉड्स की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए हमें साइबर सिक्योरिटी को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाकर चलना ही पड़ेगा।
1: जी हाँ, और सोशल मीडिया पे सेफ रहने के लिए हम अपने लिसनर्स के लिए लाए हैं आज बहुत सारे टिप्स।
0: जैसे कि दोस्तों, आप हमेशा यूनिक पासवर्ड यूज करें,
1: कोई भी जानकारी शेयर करने से पहले सोचें,
0: किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले उसको वेरीफाई करें,
1: किसी भी डिजिटल फ्रॉड को भारत सरकार की साइबर हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करें जो कि है 1930।
0: जी हाँ लिसनर्स, यानी कि 1930। इन सब बातों का खास ध्यान रखें,
1: क्योंकि इस तेजी से बढ़ती दुनिया में हमको अपना ध्यान खुद ही रखना होगा।
0: बिल्कुल श्वेता,
1: और बच के रहना होगा। आजकल की ई रिक्शा इंसिडेंट ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है, क्या स्मार्ट और कनेक्टेड व्हीकल्स भी साइबर हैकर्स के निशाने पर आ सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि कुछ ब्लूटूथ इनेबल बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स यानी BMS में सिक्योरिटी की कमी थी, जिसकी वजह से अनऑथराइज्ड एक्सेस का रिस्क बढ़ गया।
0: आज की स्मार्ट कार्स और ई व्हीकल मोबाइल एप्स और इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं दोस्तों, लेकिन जितनी स्मार्ट टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना श्वेता, उतना ही साइबर अटैक का खतरा भी बढ़ रहा है।
1: तो आज के साइबर अलर्ट में हमने बात करी कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स और सिर्फ ऑफिशियल एप्स का इस्तेमाल करके आप अपनी स्मार्ट व्हीकल को कैसे सिक्योर रख सकते हैं। इसी बात पर एक जबरदस्त गाना, बच के रहना रे बाबा।

0: श्रोताओं, आप अभी सुन रहे थे आपका अपना प्रोग्राम युवानी। इस प्रोग्राम से रिलेटेड फीडबैक आप भेज सकते हैं yuvanifeedback@gmail.com, yuvanifeedback@gmail.com पर। आपको हमारा प्रोग्राम, गाने कैसे लगे और इस प्रोग्राम से जुड़े सुझाव आप हमें इस ईमेल पर भेज सकते हैं।
1: दोस्तों, आज हमने कई ज़रूरी बातों पर चर्चा की और जाना कि टेक्नोलॉजी जितनी हमारी ज़िंदगी को आसान बना रही है, उतना ही ज़रूरी है साइबर सेफ्टी को अपनी रोज़मर्रा की आदत बनाना। चाहे सोशल मीडिया हो या स्मार्ट व्हीकल्स, थोड़ी सी डिजिटल अवेयरनेस हमें कई बड़े साइबर फ्रॉड से बचा सकती है।
0: और आज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के मौके पर हमने रेडियो के उस सफ़र को भी याद किया जिसने दशकों से देश के कोने कोने तक जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन को पहुँचाया है।
1: हम उम्मीद करते हैं कि आज की बातें सिर्फ आपके कानों तक ही नहीं बल्कि आपके दिल और सोच तक भी पहुंची होगी। याद रखिए, सीखते रहिए, जुड़ते रहिए, सुरक्षित रहिए और जिंदगी के हर नए मौके को खुले दिल से अपनाइए।
0: इसी खूबसूरत संदेश के साथ हमें दीजिए इजाजत। मैं हूँ श्वेता।
1: और मैं हूँ नित्या।
0: फिर मिलेंगे युवाणी के अगले एपिसोड में नए विचारों और नए जज्बे के साथ।
1: और लिसनर्स, अपना फीडबैक युववाणी feedback@gmail.com पर देना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।

0: अभी आप युववाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 366.3 मीटर पर। शाम के 5 बजने को हैं, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का ये बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 2 बजे दूसरी बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर श्री सैकिया ने सदन को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले दोपहर 12 बजे पहली बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग करने की अपील की।
2: वो बहाना दूर रहा, आज तो फिर कांग्रेस दोनों सदनों में, शुरू में तो बोलता है अपना कंडीशन है, मांग है, पहले पूरा करो तब चर्चा होगा। अरे मांग चर्चा के दौरान में भी तो आप बोल बोल के मांग रख सकते हैं। आप जब बोलेंगे डिबेट में तो आपको जो कहना है वो आप कह सकते हैं, तो डिबेट को कैसे रोक सकते हैं आप? वो चर्चा को ही रोकना चाहते हैं।
1: उधर राज्यसभा को भी नीट मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम शुरू किया है। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि देश में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है। लोकसभा में आज लिखित उत्तर में श्री मनोहर लाल ने बताया कि जून 2026 तक देश की वर्तमान स्थापित उत्पादन क्षमता 548 गीगावाट से अधिक हो गई है। अप्रैल 2014 से लेकर अब तक लगभग 324.7 गीगावाट तक की नई उत्पादन क्षमता जोड़ी गई है। इससे देश बिजली की कमी वाले राज्य से बिजली की पर्याप्तता वाले देश में बदल गया है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत ने पश्चिम एशिया संघर्ष के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान तक पहुंचने के लिए संवाद और कूटनीति के माध्यम से बातचीत जारी रखने पर बल दिया है। राज्यसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने आज कहा कि सरकार ईरान सहित संघर्ष में शामिल पक्षों तथा अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकारों के साथ लगातार संपर्क में है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित और निर्बाध रहने चाहिए और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान किया। मनीला में 21वें पूर्वी एशिया शिखर

0: लोक रजनी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को हमारे
1: नमस्कार। तो पायल बहन हम हाजिर हो गए हैं लोक रंजनी कार्यक्रम लेकर के।
0: बिल्कुल, और अपने इस लोक रंजनी कार्यक्रम के माध्यम से अतुल भाई हम अपने सभी श्रोताओं को, सभी भाई बहनों को सुनवाते हैं प्यारे प्यारे लोकगीत और कभी कभी किस्से भी, रागनी भी, और कुछ जो जिनमें अच्छे अच्छे भाव जो उत्पन्न होते हैं ना, क्योंकि भाव से ही जो है एक शब्द निकलते हैं और शब्द निकलते हैं, और जब उन्हें संगीत में पिरोया जाता है, बुना जाता है, तो वो बन जाते हैं प्यारे से लोकगीत और रागनी। तो आज ऐसी ही एक रागनी सुनवाते हैं अपने सभी बहन भाइयों को भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में।
1: सुनते हैं जरा।

0: तुम्हारे वेदपुरा।
1: नारी महान बताई हो कहते मारे वेद पुराण। और अतुल भाई बात भी सच्ची है, क्योंकि एक नारी भाई दो परिवारों को शिक्षित करती है, दो परिवारों को संभालती है और दो परिवारों को आगे बढ़ाती है।
2: तो सुन भाई और एक रागनी सुनते हैं लेखराज की आवाज़ में, जंगल बियावान में जनक दुलारी।

0: तो पायल बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे लेखराज की आवाज में, ये रागनी किस्सा था रामायण का।
1: तो अब अपने सभी बहन भाइयों को सुनवाते हैं एक और रागनी सुधीर कुमार की आवाज में।

तो अतुल भाई, अभी हमारे सभी भाई बहन सुन रहे थे सुधीर कुमार पे ये रागनी, और किस्सा था महाभारत का। और अब चलते चलते एक और रागनी सुनवाते हैं पूर्णमल की आवाज़ में, और किस्सा रहेगा राजा तानपाद का।

0: तो पायल बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे पूर्णमल की आवाज़ में ये रागनी ऑर्केस्ट्रा था उत्तानपाद का। और इसी के साथ आज का हमारा लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोकरंजनी यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पारासर।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंजनी। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 होने को हैं। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आज धर्मेंद्र और
3: मैं रेणु गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ।
2: रेणु, आज तो खेलों में बहुत कुछ है। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत औपचारिक होनी है, लेकिन खेल शुरू हो गए हैं और भारत का एक मेडल भी पक्का हो गया है। क्रिकेट भी है, और क्या कुछ खास है हमारे पास?
3: जी हाँ धर्मेंद्र, आज हम अपने श्रोताओं को ले जाएंगे कॉमनवेल्थ गेम के मैदान में। साथ ही साथ बात करेंगे इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की जो T20 श्रृंखला है उसका पहला मुकाबला। साथ ही बात करेंगे चाइना ओपन बैडमिंटन की। ISSF राइफल पिस्टल शॉटगन से भी कुछ खास खबरें हमारे पास हैं। यूथ हॉकी की भी बात करेंगे और जूनियर स्क्वैश वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि कनाडा के ओंटारियो में चल रही है उस पर भी बात की जाएगी। इसके साथ ही चेन्नई ग्रैंड मास्टर की एक रिपोर्ट अपने श्रोताओं के साथ हम साझा करेंगे और बात करेंगे UTT Season 7 पर। और अगर समय ने हमें इजाज़त दी तो शायद कुछ और खेल खबरें भी हम ले पाएं।
2: जी तो शुरुआत हम कहाँ से करने जा रहे हैं?
3: तो ऐसा करते हैं धर्मेंद्र, शुरुआत हम सबसे पहले अभी जो हमारा ताज़ा मैच चल रहा है इंडिया जिम्बाब्वे का, उसी से कर लेते हैं। तो भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। स्क्वाड की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी मैच में ड्रॉप होने के बाद वैभव सूर्यवंशी आज वापसी कर रहे हैं। और अगर भारत की टीम की बात करें तो उसमें है वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, कप्तान श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, अशोक शर्मा और मयंक यादव। वहीं जिम्बाब्वे की कप्तानी जो कर रहे हैं वो है सिकंदर रजा। और मैच के ताज़ा हाल के लिए धर्मेंद्र, आप श्रोताओं को क्या जानकारी दे रहे हैं?
2: ताज़ा जानकारी ये है कि भारतीय टीम पहले गेंदबाजी कर रही है जैसा आपने बताया, और भारत ने अपना शिकंजा पूरी तरह से कस लिया है। अभी तक में कुल मिलाकर 9 अगर हम कहें तो एक्स्ट्रास के रन आए हैं, ओवर्स हुए हैं 10.5, और इन 10.5 ओवर में 4 विकेट गंवा दिए हैं जिम्बाब्वे ने सिर्फ 55 रन पर। और इन सफल गेंदबाजों में भारत की तरफ से मयंक यादव हैं जिन्होंने 2 विकेट अब तक लिए हैं, इसके अलावा प्रिंस यादव ने 1 विकेट लिया है और शिवम दुबे को भी 1 सफलता मिली है। 2 नॉट आउट बल्लेबाज जो इस समय मैदान पर हैं रियान बुरी और वेस्ले मैदवेरे, ये मैदान पर हैं। रियान बर्ल हैं बल्कि जो नए बल्लेबाज मैदान पर आए हैं, इस समय साथ दे रहे हैं अपने साथी खिलाड़ी का, 20 रन बनाकर खेल रहे हैं। उन्होंने कुल 25 गेंदों का सामना किया है, 1 चौका और 1 छक्का लगाया है। और उधर मैदवेरे 6 रन बनाकर खेल रहे हैं, 11 गेंदों का सामना किया है, कोई चौका और छक्का अभी तक उनकी पारी में नहीं है।
3: बिल्कुल, और मैच की ताज़ा जानकारी हम अपने श्रोताओं के साथ साझा करते रहेंगे, लेकिन अभी हम किसी दूसरे स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। तो क्या लेकर आ रहे हैं धर्मेंद्र आप?
2: अब कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स का आज से औपचारिक आगाज हो रहा है, खेलों की शुरुआत भी हो चुकी है और भारत के लिए एक मेडल भी पक्का हो गया। तो सुनते हैं ये रिपोर्ट।
4: द कॉमनवेल्थ गेम्स

स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 की रणभेरी आज बजने वाली है, लेकिन उससे पहले ही भारत के लिए बहुत अच्छी खबर आ गई है। मुक्केबाजी में भारत के लिए एक पदक पक्का हो गया है। लवलीना बोरगोहेन बाई मिलने के कारण अपने वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और उनका एक पदक पक्का हो गया है। वैसे हम बात करें तो लॉन बॉल्स के शुरुआती मुकाबलों के साथ खेलों का आज से आगाज हो गया है, लेकिन दुनिया के तीसरे

0: ट्वेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी पूरी तरह किसी इंडोर एरिना में आयोजित की जाएगी। इस समारोह में स्कॉटलैंड की संस्कृति पर आधारित प्रस्तुतियां, बड़े विजुअल इफेक्ट्स, सभी 74 देशों के लिए अलग अलग डिजाइन किए गए किंग्स बैटन की एंट्री और संगीत सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसमें मशहूर ब्रिटिश सिंगर टॉम वॉकर परफॉर्म करेंगे। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आधिकारिक शुभंकर फिनी है, जिसे स्कॉटलैंड के राष्ट्रीय पशु यूनिकॉर्न से प्रेरित होकर बनाया गया है। उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से मीराबाई चानू राष्ट्रीय ध्वज लेकर चलेंगी, जबकि लवलीना बोरगोहेन किंग्स बैटन लेकर दल का नेतृत्व करेंगी। इसके बाद कल से पदकों की दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने की कशमकश शुरू होगी। 74 देशों के 3000 से अधिक खिलाड़ी 2 अगस्त तक चलने वाले 11 दिनों के इस खेल महाकुंभ में चुनौती पेश करने जा रहे हैं। इस बार 10 खेलों की 215 स्पर्धा 7 स्टेडियम में होगी। कुल 215 गोल्ड सहित 1168 मेडल दांव पर होंगे। ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडल्स में मेजबान शहर की पहचान, इतिहास और समावेशिता की झलक देखेगी। पुरस्कार विजेता आर्टिस्ट और डिजाइनर मिलित्सा मिलेनकोवा ने मेडल डिजाइन किए हैं। ये मेडल ग्लासगो के लैंडमार्क्स, कोट ऑफ आर्म्स, औद्योगिक विरासत और सांस्कृतिक पहचान से प्रेरित हैं। हम आपको ये भी बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स में माइल की वापसी होने जा रही है। ये इवेंट आखिरी बार 1966 में हुआ था। इसमें 1500 मीटर की जगह 1 मील यानी 1.609 किलोमीटर की मेंस वीमेंस रेस होगी। 2026 में 6 खेलों में पैरा स्पोर्ट्स को पूरी तरह शामिल किया गया है। ये कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास का सबसे बड़ा पैरा स्पोर्ट प्रोग्राम है। साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में पहली बार मेडल्स में ब्रेल और टेक्सटाइल एलिमेंट्स शामिल किए गए हैं। इन पदकों को जीतने और ग्लासगो में आसमान की ऊंचाइयों पर तिरंगा फहराने के लिए भारत की ओर से 123 खिलाड़ियों का दल हिस्सा लेने जा रहा है, जो एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, वेटलिफ्टिंग, जूडो, तैराकी, ट्रैक साइकिलिंग, जिमनास्टिक्स, लॉन बॉल्स, 3x3 बास्केटबॉल और पैरा कंपटीशन में अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। खेल मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने भारतीय दल से ढेर सारी उम्मीदें जताई हैं और शुभकामनाएं दी हैं।
1: मेरा पक्का विश्वास और भरोसा है कि भारतीय एथलीट अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, बहुत हौसले के साथ खेलेंगे, देश का गौरव बढ़ाएंगे और भारत का परचम स्पोर्ट्स सेक्टर में कॉमनवेल्थ में लहराएंगे। स्पोर्ट्स का 75 इयर्स का हमारा इतिहास शायद मेडल टैली के हिसाब से बेस्ट माने ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन ये देश में यूथ में, क्योंकि 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है, ये देश के यूथ में टैलेंट की कोई कमी नहीं, जज्बे भी कोई कमी नहीं, ना कमी थी ना आज है ना भविष्य में रहेगी। दोस्तों, मोदी जी ने हमारे एथलीट को अपने परम मित्र कहे। दोस्तों, मोदी जी की शुभेच्छा आपके साथ है। देश के 140 करोड़ की जनता का भरोसा आपके साथ है।
0: आइए आपको बताते हैं कि कल भारत के एथलीट्स कब कब एक्शन में दिखाई देने वाले हैं। 24 जुलाई को भारतीय दल की सबसे अधिक निगाहें लॉन बॉल्स, बॉल्स एंड पैरा बॉल्स पर होंगी, क्योंकि इसी खेल ने बर्मिंघम 2022 में भारतीय खेल इतिहास का एक यादगार अध्याय लिखा था। भारतीय महिला टीम ने तब लॉन बॉल्स में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता था, जबकि पुरुष टीम ने रजत पदक हासिल कर इस खेल में भारत की बढ़ती ताकत का परिचय दिया था। अब ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ी उस सफलता को दोहराने और पदक अभियान की शानदार शुरुआत करने के लक्ष्य के साथ उतरेंगे। लॉन बॉल्स के अलावा भारतीय खिलाड़ी आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग, मुक्केबाजी और पैरा पावर लिफ्टिंग में भी अपनी चुनौती पेश करेंगे। कई युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर रहेगी, क्योंकि शुरुआती मुकाबले ही आगे के अभियान की दिशा तय कर सकते हैं। भारतीय समय के अनुसार दिन के 1 बजे कल बॉल्स एवं पैरा बॉल्स में रूपा रानी तिर्की और पिंकी सिंह महिला डबल्स के सेक्शनल प्ले में उतरेंगी। इसी समय बॉल्स एवं पैरा बॉल्स में पुतुल सोनोवाल पुरुष सिंगल्स के सेक्शनल प्ले में हिस्सा लेंगे। दोपहर 2:30 बजे आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में तपन मोहंती, तपेश्वर नाथ दास, स्वातिश केपी, योगेश्वर सिंह पुरुष टीम फाइनल और व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन सब डिवीजन 1 में शामिल होंगे। 3 बजे तैराकी एवं पैरा तैराकी में अली इमाम पुरुष S13 100 मीटर फ्री स्टाइल हीट्स, श्रीहरि नटराज पुरुष 50 मीटर बैक स्ट्रोक हीट्स में दावेदारी रखेंगे। कल 3:30 बजे मुक्केबाजी में प्रीति पवार महिला 54 किलोग्राम के राउंड ऑफ 16, जैस्मीन लेम्बोरिया महिला 57 किलोग्राम राउंड ऑफ 32, सुमित कुंडू पुरुष 70 किलोग्राम के राउंड ऑफ 32, जादूमणि सिंह पुरुष 55 किलोग्राम के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में रिंग में होंगे। शाम 5:30 बजे पैरा पावर लिफ्टिंग में अशोक मलिक पुरुष लाइटवेट, परमजीत कुमार पुरुष लाइटवेट, सुमन देवी और जसप्रीत कौर महिला लाइटवेट वर्ग में भार उठाएंगी। मुक्केबाज प्रिया घंगास रात 10:30 बजे महिला 60 किलोग्राम के राउंड ऑफ 16 में हिस्सा लेंगी। इसी समय पैरा पावर लिफ्टर

0: पूरी राजामणि महिला हैवीवेट सुधीर और झंडू कुमार पुरुष हैवीवेट में हिस्सा लेंगे। सच कहा जाए तो कल से ही पदकों की दौड़ शुरू होने वाली है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मचने वाली है। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा ने उम्मीद जताई है कि भारत के खिलाड़ी इस बार भी परचम लहराएंगे।
1: ग्लासगो में भी आई एम एक्सपेक्टिंग गुड परफॉर्मेंस भाई, बिकॉज द गवर्नमेंट, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑल एसोसिएशन इज इन वन लाइन एंड दे आर प्रोवाइडिंग ऑल द फैसिलिटीज विच प्लेयर्स वांट्स। सो एक्सपोजर इज द मस्ट, दे आर गेटिंग फोरन एक्सपोजर एंड ऑल दोस थिंग एंड एसोसिएशन इज वर्किंग ऑन इट एंड लॉट ऑफ स्पॉन्सर्स ऑल्सो फॉर IOA इज ऑल्सो गिविंग फुल सपोर्ट टू प्लेयर्स, सो दैट आई होप दैट प्लेयर्स अच्छा करेंगे।
0: ये तो हुई वर्तमान की बात, अब थोड़ा इन खेलों का इतिहास और भारत की उपलब्धियों को भी जान लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में हुई थी, तब इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। इन खेलों में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे देश हिस्सा लेते हैं। पहले एडिशन में ब्रिटिश साम्राज्य से जुड़े 11 देशों के 400 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इसमें एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, लॉन बॉल्स, रोइंग, स्विमिंग और रेसलिंग जैसे खेल शामिल थे। 1930 से 1950 तक इस टूर्नामेंट को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा गया। 1954 में इसका नाम बदलकर ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स किया गया। 1970 में ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स बना और 1978 से इसे कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता है। इसका आयोजन हर 4 साल में होता है। इसका मकसद कॉमनवेल्थ देशों के खिलाड़ियों को बड़े इंटरनेशनल मंच पर कंपटीशन का अवसर देना है। भारत ने पहली बार 1934 में हिस्सा लिया था। लंदन 1934 गेम्स में भारत की ओर से 6 एथलीट उतरे थे। भारतीय दल ने 10 ट्रैक एंड फील्ड्स इवेंट्स और एक कुश्ती स्पर्धा में भाग लिया। इसी एडिशन में भारत ने अपना पहला मेडल जीता था। पहलवान राशिद अनवर ने पुरुषों की 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहला मेडल हासिल किया था। यानी भारत का पहला कॉमनवेल्थ पदक उस समय आया जब देश का अपना तिरंगा भी आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज नहीं था। भारत को पहला गोल्ड आजादी के बाद 1958 में कार्डिफ में धावक मिल्खा सिंह ने दिलाया। उन्होंने 440 यार्ड दौड़ जीतकर इतिहास रच दिया। ये कॉमनवेल्थ गेम्स की एथलेटिक्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। इस जीत के बाद उन्हें फ्लाइंग सिख कहा जाने लगा। उसी संस्करण में पहलवान लीला राम ने भी स्वर्ण पदक जीता। 1934 में डेब्यू के बाद से भारत में 1950, 1962 और 1986 को छोड़कर बाकी सभी एडिशन में हिस्सा लिया है और अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल 564 मेडल जीते हैं। इनमें 203 गोल्ड, 189 सिल्वर और 172 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। भारत ने एक बार 2010 में इन खेलों की मेजबानी की थी। नई दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बना। 71 कॉमनवेल्थ देशों और क्षेत्रों के करीब 6000 खिलाड़ी 70 खेलों की 272 स्पर्धाओं में उस खेल में उतरे थे। तब मेजबान भारत ने 38 स्वर्ण, 27 रजत और 36 कांस्य समेत 101 पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स की पदक तालिका में भारत ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे स्थान पर पहुंचा। आज भी ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हम आपको ये भी बता दें कि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स एक बार फिर भारत लौटेंगे, मेजबानी अहमदाबाद करेगा। 2030 में ही कॉमनवेल्थ गेम्स के 100 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए इसे खास माना जा रहा है। तभी तो भारत के मिशन प्रमुख, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी और भारतीय डेविस कप टीम के कप्तान रोहित नागपाल कह रहे हैं कि ग्लासगो में इस बार खेलों से इतर भी भारत के लिए बहुत कुछ होगा।
2: हम लोग नेक्स्ट होस्ट हैं, तो खेल के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान हो चुकी है। वहाँ पे हम लोगों को बेटन लेना है, हम लोगों को वहाँ से फ्लैग लेना है कॉमनवेल्थ का, हम लोगों को कल्चरल डांस दिखाना है इंडिया का, फिर एक ट्रेड कट ग्रुप भी बन रहा है हम लोगों का। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है, एक्सचेंजेस जो कि हम लोग प्लान कर रहे हैं सारा वहाँ खेल के अलावा भी। तो सिम्बॉलिकली अगर देखा जाए, ऑलराउंडेडली, तो एक बहुत जरूरी ये एक ट्रिप है जिसके अंदर हम लोग जाके ये सब चीजें लेके आएंगे इंडिया के लिए, और सारा फिर फोकस शिफ्ट करेगा इंडिया पे कॉमनवेल्थ गेम्स का। तो ये काफी सालों बाद एक नया गेम्स इंडिया को आएगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और यही एक होलिस्टिक पिक्चर है।
0: वैसे कॉमनवेल्थ की कहानी शुरू होती है 1891 में, जब ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम पर था। दुनिया की करीब 1/4 आबादी और विशाल भूभाग ब्रिटेन के शासन में था। तब एक ब्रिटिश पादरी जॉन एस्टली कूपर ने एक ऐसा सपना देखा जिसने बाद में दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि साम्राज्य की ताकत सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि लोगों के रिश्तों से भी बढ़ती है। अगर ब्रिटिश साम्राज्य के अलग अलग देशों के खिलाड़ी एक मैदान पर उतरेंगे तो आपसी भरोसा और भाईचारा मजबूत होगा। अपनी सोच को उन्होंने नाम दिया पैन ब्रिटेनिक फेस्टिवल। लेकिन विचार देना आसान था, उसे सच करना बेहद मुश्किल। करीब 20 साल तक ये सपना कागजों में ही पड़ा रहा। फिर 1911 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक हुआ।

0: इसी मौके पर लंदन में फेस्टिवल ऑफ एम्पायर आयोजित किया गया। तब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के खिलाड़ी पहली बार एक ही आयोजन में उतरे। ये आधिकारिक कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं थे, लेकिन इतिहासकार इसे कॉमनवेल्थ गेम्स की पहली झलक मानते हैं। यहीं लोगों को एहसास हुआ कि ऐसा आयोजन सफल हो सकता है। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य के खेल प्रशासक मिले, यही फैसला हुआ कि ओलंपिक से अलग हर 4 साल में ब्रिटिश साम्राज्य के देशों के लिए अपना एक खेल आयोजन होगा। यही वह फैसला था जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स को जन्म दिया। हालांकि जब 16 अगस्त 1930 में कनाडा के छोटे से शहर हैमिल्टन में पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स शुरू होने वाले थे, तभी एक बड़ी समस्या सामने आ गई। उस समय हवाई यात्रा आम नहीं थी, ज्यादातर खिलाड़ी समुद्री जहाजों के जरिए कनाडा पहुंचते थे। कई देशों ने साफ कह दिया कि उनके पास यात्रा का खर्च नहीं है। तब आयोजकों ने कई टीमों की आर्थिक मदद की, फिर जाकर आयोजन हो सका था। अगर उस समय कनाडा पीछे हट जाता तो शायद कॉमनवेल्थ गेम्स का इतिहास वहीं खत्म हो जाता। आज हजारों खिलाड़ी इन खेलों में आते हैं, लेकिन पहले संस्करण में केवल 11 देशों के करीब 400 खिलाड़ी ही उतरे थे। इसमें सिर्फ 6 खेल एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, स्विमिंग, डाइविंग, कुश्ती और लॉन बॉल्स शामिल थे। आज इन खेलों में हजारों खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और दर्जनों खेल खेले जाते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास का पहला स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया के रोवर बॉबी पियर्स ने जीता। वे बाद में ओलंपिक चैंपियन भी बने। फिर 1942 और 1946 कॉमनवेल्थ गेम्स के 2 संस्करण दूसरे विश्व युद्ध की वजह से रद्द हुए। 1950 में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से खेलों की वापसी हुई। 1930 में इन खेलों का नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, लेकिन अगले 3 दशकों में दुनिया बदल गई। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, घाना, नाइजीरिया, मलेशिया जैसे कई देश आजाद हो गए। ब्रिटिश साम्राज्य सिकुड़ने लगा और नाम बदलने लगे। 1954 में इसका नाम ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया। 1970 में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स और फिर 1978 में कॉमनवेल्थ गेम्स इसका नाम हुआ। तो हमने कॉमनवेल्थ गेम्स के वर्तमान और इतिहास की बात कर ली। ये भी जान लिया कि हमने अभी तक दुनिया के इस तीसरे सबसे बड़े खेल आयोजन में कितने पदक जीते हैं। हम आपको बता दें कि पिछली बार हमने 61 मेडल जीते थे। उसकी संभावना इस बार कम है क्योंकि इवेंट्स कम है, लेकिन फिर भी जितने खेलों में भारत की दावेदारी है वो काफी मजबूत है। तो सब मिलकर करते हैं दुआ कि भारतीय टीम के खिलाड़ी इस बार भी जोरदार प्रदर्शन करें, ढेर सारे मेडल जीत कर लाएं और करोड़ों भारतीयों के दिलों में खुशी की लहर पैदा करें, क्योंकि ये दिल मांगे मोर।
1: The Commonwealth Games.
0: और कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ी ही खबर कुछ हमारे पास है। हमारा जो दल पहले 126 सदस्यों का था वो घटकर 123 रह गया है। कारण ये है कि पैरा स्विमर तेजस नंद कुमार खेल नियमों के कारण दल से बाहर हुए हैं। उनके अलावा जूडो खिलाड़ी अरुण कुमार, जो पुरुषों के 73 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लेने वाले थे, और वेटलिफ्टर दिलबाग सिंह डोपिंग मानकों पर खरा नहीं उतरने के कारण दल से बाहर हो गए हैं। ये ताज़ा जानकारी, और जानकारी ये भी है कि इस समय लॉन बॉल्स के मुकाबले चल रहे हैं, कुछ मुकाबले होने भी हैं। भारतीय चुनौती भी है और वीमेन्स पेयर्स सेक्शनल में सेक्शन बी राउंड बी में पहला मैच भारत और उसके साथ साथ माल्टा का चल रहा है। भारत 1-0 से आगे है। और इसके अलावा पुतुल सोनोवाल खेलेंगे कनाडा के रियान डेस्टर से। आज रात ये मुकाबला होना है मेंस सेक्शनल सेक्शन डी में। और अब कॉमनवेल्थ से चलते हैं शूटिंग की तरफ।
2: जी हाँ, अब कॉमनवेल्थ के बाद कुछ बातें शूटिंग थी। तो चीन के हांगजू में ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल शॉटगन में अब तक भारत की जोली में एक भी पदक नहीं आया है। आज मुकाबले का दूसरा दिन था। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस विमेंस के फाइनल में भारत की विदर्शा विनोद 6ठे स्थान पर रही। इससे पहले क्वालिफिकेशन में भारत की साक्षी पादेकर 15वें, अशी चौकसी 23वें, सिफत कौर सामरा 27वें, तिलोत्तमा सेन 40वें नंबर पर रही। इनमें से कोई भी फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं। जहां तक स्कीट मेंस की बात है तो भारत के गुरजोत खांगुरा फाइनल के 6ठे स्थान पर रहे। क्वालिफिकेशन में भारत के अभय सिंह 30वें, शिराज शेख 37वें और हरमेहर सिंह 68वें स्थान पर रहे। वहीं स्कीट वुमेन्स में कोई भी भारतीय महिला शूटर फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं। अरिबा खान 21वें, गनेमत शेखो 23वें, यशस्वी राठौर 28वें, दर्शना राठौर 34वें स्थान पर रही। 25 मीटर रैपिड फायर मेंस क्वालिफिकेशन का आज पहला दिन था। भारत के भावेश शेखावत फिलहाल 9वें स्थान पर चल रहे हैं। अनीश भानवाला 21वें

0: स्थान पर हैं और कल क्वालिफिकेशन का दूसरा दिन है। तो ये तो थी खबरें शूटिंग से।
1: और अब बात कर लेते हैं बैडमिंटन की, क्योंकि हम आपको बता दें कि चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जो 21 जुलाई से शुरू है और 26 जुलाई तक चलेगा, इसमें भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। पुरुष वर्ग में जो दो उम्मीदें थी आज वो भी खत्म हो गई हैं। राउंड ऑफ 16 में लक्ष्यसेन हार गए हैं अपने विरोधी खिलाड़ी वी लाई के खिलाफ 19-21 और 11-21 से। आयुष शेट्टी को भी पराजय का सामना करना पड़ा है एन एन ग्वेन के खिलाफ। हालांकि आयुष ने मुकाबला जरूर तगड़ा किया, पहला गेम उन्होंने 21-15 से जीता, लेकिन उस लय को आगे नहीं बरकरार रख सके। दूसरे गेम में उन्हें 13-21 से शिकस्त मिली और तीसरा गेम भी कड़े संघर्ष के बाद उन्होंने गंवाया, स्कोर रहा 20-22 का। महिला वर्ग में उम्मीद थी कि पीवी सिंधु ने पिछले टूर्नामेंट में जिस तरह का खिताबी जीत वाला प्रदर्शन किया था, इस बार भी कुछ वैसा ही करेंगी। उन्होंने मुकाबला भी काफी तगड़ा किया चीन की YF चेन के खिलाफ और पहला गेम उन्होंने जीत लिया 21-16 से। आसान रहा ये पहला गेम उनके लिए, लेकिन उसके बाद के जो दो गेम रहे वो काफी कठिन रहे। पीवी सिंधु दूसरे गेम में 20-22 के बहुत ही नजदीकी अंतर से पराजित हो गई और ये मैच मुकाबला उनके लिए काफी कठिन रहा। तीसरे में भी उन्होंने काफी संघर्ष किया और स्कोर को 18-18 की बराबरी तक ले गई थी, लेकिन जो अंत के 3 अंक थे वो चेन ने अपने नाम किए और तीसरा गेम सिंधु ने गवा दिया 18-21 से। तो इस तरह से भारत की चुनौती इस टूर्नामेंट में समाप्त हो गई है।
0: और अब अपने श्रोताओं को हम ले चलते हैं कनाडा के ओंटारियो में, जहां चल रही है जूनियर वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप। तो सबसे पहले बात करते हैं राउंड ऑफ 16 की, जहां पर शीर्ष वरीयता प्राप्त भारत की अनाहत सिंह मलेशिया की प्रतिद्वंदी को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। यहां उनका मुकाबला इजिप्ट की हबीबा रिजिक से होगा। वहीं राउंड ऑफ 16 में भारत के आर्यवीर दीवान हार गए हैं। बात करें अगर 17 से 32वें स्थान के लिए, तो यहाँ पर विमेन्स में 17 से 32वें स्थान की बात करें तो मेंस में यूशा नफीस जीत गए हैं और रुद्र सिंह जो हैं वो हार गई हैं। 17 से 32वें स्थान के लिए ही सानवी कलंकी भी हार गई हैं।
1: जी, और अब क्यों ना बात कर लें दिल्ली हाफ मैराथन 2026 की, जिसका आयोजन 18 अक्टूबर को होना है, जो इसका 21वां संस्करण होगा, और इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आयोजक विवेक सिंह।
2: ये सचमुच खास है, यू नो व्हेन यू टर्न 21 इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। और 21 साल हुए हैं इस इवेंट को, ऐसी लहर उठाई है इस इवेंट ने पूरे देश में। 2005 में आप मानोगे नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं, देयर वाज नो कल्चर ऑफ रनिंग। पूरा कल्चर बदल दिया है। आप लेडीज की बात करो, कमिंग आउट एंड रनिंग, टेकिंग कंट्रोल ऑफ देयर हेल्थ। एंड आप इतना याद रखना, जब एक वुमन, एक महिला जब भागती है, पूरा परिवार का हेल्थ बदलता है। व्हाट दे शुड ईट, व्हाट ऑयल शुड गो इन द फूड, व्हाट शुड हैपन, एवरीथिंग चेंजेस। तो ये सब आप देखे जाए तो इसलिए हम कहते हैं कि एक रियल मूवमेंट है ये। और ये मूवमेंट ऐसी मूवमेंट है जिसमें हेल्थ, फिटनेस, प्राइड, प्रेस्टीज सब जुड़ा हुआ है। सो इट इज समथिंग क्वाइट मैजिकल। We are very grateful to the government of Delhi, to the government of India, to every citizen, to every institution, to every partner, to every sponsor that has supported us. So it is the world's most prestigious half marathon. Eliud Kipchoge yahan daud ke jeet ke gaya hai. To wo to aayenge, abhi sab khabar milengi, which will athletes have signed up, wo hum media ko batate rahenge. But be rest assured, it is the world's most prestigious half marathon and we will ensure that it stays that. Prize money kareeb $200,000 se zyada hai, $2 lakh se zyada hai. Aur phir appearance fees bhi hai, उसपे ऊपर हॉस्पिटैलिटी भी है, विच इज व्हाई इट्स नॉट जस्ट द रिचेस्ट बट इट्स आल्सो द मोस्ट प्रेस्टिजियस हाफ मैराथन।
0: और ये तो थी बात हाफ मैराथन की, और अब बात कर लेते हैं टेबल टेनिस की। तो अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 7 में डेम्पो गोवा चैलेंजर्स लगातार जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर बनी हुई हैं। मौजूदा चैंपियन यू मुंबा टीटी ने भी लगातार 2 जीत दर्ज कर प्लेऑफ की दौड़ में मजबूत वापसी की है। कल खेले गए मुकाबलों की अगर बात करें तो उसमें 2 बार की चैंपियन डेम्पो गोवा चैलेंजर्स ने यूपी प्रोमेथियंस को 10-5 से हराया और इस तरह से लीग स्टेज का समापन अपराजित रूप से किया। आज दबंग दिल्ली टीटीसी और पीबीजी पुणे जगुआर्स के बीच एक अहम मुकाबला खेला जाएगा। अगर ग्रुप स्टेज स्टैंडिंग्स की बात करें तो पहले स्थान पर डेम्पो गोवा चैलेंजर्स हैं 56 अंकों के साथ, दूसरे स्थान पर 49 अंकों के साथ हैं HVR कोलकाता थंडर ब्लेड्स, तीसरे स्थान पर हैं यू मुंबा टीटी जो हैं 48 अंकों के साथ, चौथे स्थान पर अहमदाबाद APL पाइपर्स 45 अंकों के साथ, 36 अंकों के साथ दबंग दिल्ली TTC हैं पांचवें स्थान पर, वहीं छठे स्थान पर हैं PBG पुणे जेगुआर्स 34 अंकों के साथ, सातवें स्थान पर UP प्रोमेथियंस हैं 32 अंकों के साथ। तो ये तो थी बात टेबल टेनिस से, और अब धर्मेंद्र आप क्या खबर लेकर आए हैं?
1: शतरंज की बात कर लेते हैं। फ्रांस के ग्रैंडमास्टर अलीरेजा फिरोजा ने कल भारतीय ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगेसी के खिलाफ सातवें और अंतिम दौर की बाजी ड्रॉ खेलकर चौथे चेन्नई ग्रैंडमास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में जो है वो खिताब अपने नाम कर लिया। फिरोजा ने सात दौर में 2 जीत और 5 ड्रॉ के साथ कुल 4.5 अंक हासिल किए। उन्होंने प्रतियोगिता की शुरुआत लगातार 2 जीत से की थी और अंतिम दौर में अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों एरिगेसी और उज्बेकिस्तान के ग्रैंडमास्टर नोदिरबेक अब्दुसत्तारोव पर आधे अंक की बढ़त के साथ पहुंचे। खिताब जीतने की कोशिश में काले मोहरों से खेल रहे अब्दुसत्तारोव को ग्रैंडमास्टर दिमित्री आंद्रेकिन ने 37 चालों में हरा दिया। इससे फिरोजा को चैंपियन बनने के लिए एरिगेसी के खिलाफ केवल ड्रॉ की दरकार थी और उन्होंने 41 चाल में मुकाबला बराबरी पर समाप्त कर खिताब सुनिश्चित कर लिया। अगर हम फिरोजा की बात करें तो उनको 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिली है। आंद्रेकिन 4 अंकों के साथ एरिगेसी के बराबर संयुक्त दूसरे स्थान पर रहे। अब्दुसत्तारोव, निहाल सरीन और एम प्रणेश ने 3.5-3.5 अंकों के साथ संयुक्त चौथा स्थान हासिल किया। वहीं मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश का संघर्ष जारी रहा। उन्हें 7 में से 3 बाजी में हार का सामना करना पड़ा और वे केवल 2 अंकों के साथ तालिका में अंतिम स्थान पर रहे। तो एरिगेसी का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में जरूर अच्छा रहा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं गुकेश की तो वो अभी तक लय हासिल करने में कामयाब नहीं हुए हैं। अब चलते हैं मेंस एशियन हॉकी फाइबेस 2026 की तरफ, जो 20 जुलाई से 25 जुलाई तक मस्कट ओमान में चल रही प्रतियोगिता, और इसमें भारत के प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो अभी तक भारत अविजित रहा है। उसने अपना पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला था जो 7-3 से अपने नाम किया था। फिर दूसरे मैच की बारी आई जिसमें मेजबान ओमान को पूरी तरह से धूल चटा दी भारतीय टीम ने। 14-0 से ये मुकाबला भारत ने आसानी से जीत लिया। और फिर चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ जो मुकाबले की बारी थी उसमें भी भारत हावी रहा। 7-4 से भारत ने यह मुकाबला 21 तारीख को जीता था। अब भारत के सामने अगली चुनौती रहने वाली है बांग्लादेश की, और ये मैच होना है भारत और बांग्लादेश का। देखना है इसमें कौन सी टीम जीतती है। आज ये मुकाबला होगा भारतीय समय के अनुसार 9:30 बजे, और इसके साथ साथ भारतीय टीम ओमान से फिर खेलेगी, और ये मैच होगा 24 जुलाई को। पाकिस्तान से फिर एक और मुकाबला होना है मस्कट में ही, और ये मैच होगा 24 जुलाई शुक्रवार को। तो ये भारत के मुकाबलों की बात है पुरुष वर्ग में। महिला वर्ग की तरफ अगर जाते हैं तो भारतीय टीम ने इस अभियान की शुरुआत कजाकिस्तान के खिलाफ 8-3 की जीत के साथ की थी। फिर भारतीय टीम का मुकाबला चाइना के साथ 2-2 से बराबर रहा। उसके बाद बारी आई उज्बेकिस्तान की जिसमें भारतीय महिला टीम ने 16-0 से जीत हासिल की, और अब आज भारत का मुकाबला होना है कजाकिस्तान से। भारतीय टीम 8:00 बजे मैदान पर उतरेगी। फिर चाइना से एक और मुकाबला होगा शुक्रवार 24 जुलाई को, और फिर भारतीय टीम उज्बेकिस्तान से एक बार फिर खेलेगी 24 जुलाई को ही। तो ये मुकाबलों की बात है भारतीय टीम की, और अभी तक भारतीय दोनों ही दलों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। क्रिकेट की बात चली है तो हम आपको एक खबर ये बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने घोषणा की है कि 2027 में जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC का फाइनल होगा वो 9 से 13 जून तक द ओवल में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने पिछले साल 2027, 2029 और 2031 के अगले 3 WTC फाइनल की मेजबानी के अधिकार हासिल किए थे। प्रत्येक चरण के लिए मैदान का चयन मेजबान बोर्ड इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECB करेगा। अब तक खेले गए WTC के तीनों फाइनल भी ब्रिटेन में आयोजित किए गए हैं। ये दूसरा मौका होगा जब द ओवल WTC फाइनल की मेजबानी करेगा। इससे पहले 2023 में ये फाइनल खेला

0: गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर टेस्ट चैंपियनशिप की गदा अपने नाम की थी। क्रिकेट की बात हम चलते चलते ये भी बता दें कि जो भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 मुकाबला चल रहा है, उसमें जिम्बाब्वे की टीम ने अब 16.3 ओवर के बाद 97 रन बना लिए हैं, 5 विकेट गंवा दिए हैं। और अब घड़ी की सुइयां इस तरफ इशारा कर रही हैं कि आज के हमारे खेल खिलाड़ी कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ मुझे यानी धर्मेंद्र
1: और मुझे रेनू को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार
1: नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीट पेपर लीक मामले पर फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने के निर्णय की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ये निर्णय युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों को त्वरित अदालतों के माध्यम से कड़ी सजा दी जाएगी। श्री गोयल ने विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया है।
1: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
0: वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वे खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे दूसरी बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर श्री साइकिया ने सदन को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद पुनः शुरू होने पर विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामे के कारण राज्यसभा को भी दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में डॉक्टर सिंह ने कहा कि रोड मैप के अनुसार मौजूदा 8.78 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता के 2031-32 तक लगभग 22 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती हुई घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में औद्योगिक क्षमता से अधिक उत्पादन और कड़ी स्पर्धा के कारण लाभ कम हो गया है।

0: ग्रहीतव्यः।
1: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर लीडिंग टू पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्व्ड एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्डेड। जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है।
2: श्री नड्डा सोद्वेगम अवोचत यत् कांग्रेस नेता लोकसभायां प्रतिपक्ष नेता च राहुल गांधी अस्मात् प्रकरणात् राजनैतिक लाभं प्राप्तुं चेष्टते, एतत् सर्वथा शोचनीयमस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। फिलीपींस देशस्य राजधान्यां मनीलायां आयोजिते 33वें आसियान क्षेत्रीय मंचस्य मंत्रिस्तरीय सम्मेलने भारतेन आतंकवादं प्रति असहिष्णुतायाः नीतिः पुनः प्रतिपादिता। एतदतिरिच्य भारतेन कस्यचन स्वतंत्रस्य उन्मुक्तस्य समावेशिनः नियमाधारितस्य च हिंद प्रशांत क्षेत्रस्य रक्षणाय स्वस्य प्रतिबद्धता पुनरुदीरिता। सम्मेलनं संबोधयन् विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः प्रावोचत् यत् प्रवर्धमानानां वैश्विक समस्यानां मध्ये हिंद प्रशांत क्षेत्रे राजनैतिक सुरक्षा विषयेषु चर्चायै एषः मञ्चः अति महत्वपूर्णः वर्तते। अत्रावसरे डॉक्टर एस जयशंकरः ब्रुनेई देशस्य विदेशमंत्रिणा राजकुमार अब्दुल मतीन इत्यमुना साकमपि द्विपक्षीय सहयोगस्य प्रवर्धनाय विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः ड्रोन प्रौद्योगिक्याः डिजिटल नवप्रवर्तनस्य दृढीकरणाय वार्ताम् अकरोत्। सामाजिक संजालीय तंत्रांशे असौ प्राकाशयत् यत् भारत ब्रुनेई देशौ भारतस्य एक्ट ईस्ट नीतेः अनुरूपं द्विपक्षीय कार्यसूचीम् अग्रे नेतुम् आसियान आधारांतर्गतं बहुपक्षीय सहभागितां च सुदृढीकर्तुं सम्मतिं प्रकटितवन्तौ। अपरतः डॉक्टर एस जयशंकरः पापुआउ न्यू गिनी देशस्य विदेशमंत्रिणा जस्टिन डब्ल्यू इत्यमुना साकमपि भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंचस्य माध्यमेन द्विपक्षीय सहयोगस्य दृढीकरणाय उपवेशनम् अकरोत्। संयुक्त राष्ट्र संघे सिंधु जलसंधिमधिकृत्य पाकिस्तानस्य मृषापवादाः किंवा निराधाराक्षेपाः भारतेन पूर्णतया प्रत्याख्याताः। भारतेन समुदीरितं यत् यावत् इस्लामाबाद आतंकवादः राजनीतेः साधनत्वेन प्रयुज्यते तावदस्य संधेः स्वाभाविक कार्यान्वयनस्य अपेक्षा नैव कर्तुं शक्यते। संयुक्तराष्ट्रसंघे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिना राजदूत पर्वतनेनी हरीशेण सुरक्षापरिषदि एतत् प्रत्युत्तरं दत्तम्। अद्य राष्ट्रियप्रसारणदिवसो वर्तते। 27th-19th वर्षे अस्मिन्नेव दिने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इत्यस्याः तत्वावधाने मुंबई केन्द्रात् देशस्य प्रथमं रेडियो प्रसारणं नभसी गुंजितम्। तदनन्तरं 37th-19th वर्षस्य जून मासस्य 8 दिनांके इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस इति संस्था ऑल इंडिया रेडियो इति नामना परिगणिता। अस्माकं वार्ताहरस्यानुसारं अयम् उत्सवः सूचना प्रदाने शिक्षा प्रसारे मनोरंजन विधाने राष्ट्रस्य एकसूत्रे निबंधने च प्रसारण जगतः प्रायः एकशताब्द्याः अवदानं स्मरति। दिवसोयं भारतस्य विकासयात्रायां शैक्षणिक प्रसारे सांस्कृतिक संरक्षणे च प्रसारणस्य मुख्य भूमिकां विशेषतः प्रकाशयति। स्वातंत्र्य आंदोलनात् आरभ्य राष्ट्र निर्माण पर्यन्तं विशेषतः ग्रामीण भारते सूचना प्रसारणे साक्षरता संवर्धने स्वास्थ्य जागरूकतायां कृषि ज्ञानस्य विचारे च आकाशवाण्याः अभूतपूर्वा भूमिका आसीत्। 57th-19th वर्षे राष्ट्रीय प्रसाराय आकाशवाणी इति दिव्यं नाम स्वीकृतम्। ततः लोकप्रिय चलचित्र संगीत प्रधानयुक्ता विविध भारती सेवा प्रारब्धा। युगात् युगं यावत् जनसामान्यस्य सेवां कुर्वती आकाशवाणी बहुजनहिताय बहुजनसुखाय इति स्वकीयस्य ध्येयवाक्यस्य यथार्थं

0: पालनं करोति। राष्ट्रीय प्रसारण दिवसः केवलं तांत्रिक प्रगतेः न अपितु विविधतापूर्णस्य राष्ट्रस्य एकीकरणस्य सूचना शिक्षा मनोरंजनानां च तस्याः शाश्वत शक्तेः उत्सवः वर्तते। अद्य सायं स्कॉटलैंड देशस्य ग्लास्गो नगरे 23वां राष्ट्रमंडल क्रीडा महोत्सवः समारप्स्यते। 10-दिनात्मक दीर्घ्यस्मिन् महास्पर्धा आयोजने 74 राष्ट्राणां क्रीडा दलानि भागं ग्रहीष्यन्ति। ओलंपिक पदक विजेतारौ नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, लोवलीना बोरगोहेन चस्मिन् महाकुंभे भारतस्य प्रतिनिधित्वं विधास्यन्ति। इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले हमारी सभी बहन भाइयों को हमारे
1: राम राम। तो पायल बहन हम हाजिर हो गए हैं ग्राम संसार कार्यक्रम लेकर के, और आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन होता है हमारा SMS पर आधारित लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम। और देखिए हर दिन अपने आप में खास होता है भाई। आज 23 जुलाई है और 23 जुलाई 1927 को भारतीय प्रसारण कंपनी द्वारा मुंबई स्टेशन से रेडियो प्रसारण की शुरुआत के ऐतिहासिक दिवस यानी राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सभी श्रोताओं को।
0: बिल्कुल, और नेशनल ब्रॉडकास्ट डे यानी कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, अतुल भाई
1: जी,
0: एक ऐतिहासिक, इसका अपने आप में एक महत्व है, एक सफर है। इसकी शुरुआत 23 जुलाई 1927 को निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत देश में आधिकारिक व नियमित रेडियो प्रसारण की तौर पर शुरुआत इसकी हुई थी। और अतुल भाई, इसका नाम जो है 8 जून 1936 को इसका जो सेवा है, इसका नाम इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस से बदलकर ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR आकाशवाणी किया गया।
1: बिल्कुल, और इसका आदर्श वाक्य आकाशवाणी का मुख्य उद्देश्य बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के मंत्र के साथ देश के कोने कोने तक सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाना है।
0: बिल्कुल, और इसका जो योगदान है देश के जनसंचार और प्रसारण माध्यमों के में अमूल्य, इसका योगदान एक तरह से याद करना चाहिए हमें।
1: बिल्कुल, और देखिए कहते हैं ना कि सुदूर व ग्रामीण इलाकों तक सूचना और संस्कृति के प्रसार में रेडियो और अन्य प्रसारण माध्यमों की भूमिका को रेखांकित करना है।
0: बिल्कुल, देखिए ये तो रही बात आज के इस खास दिन की, और इस खास दिन में एक खास बात और है अतुल भाई, वो है चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती।
1: जी, जो कि हर साल 23 जुलाई को ही मनाई जाती है।
0: बिल्कुल, उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले, जो कि तत्कालीन झबुआ जिला जिसे कहा जाता है, उस गांव में हुआ था, और उनका मूल नाम चंद्रशेखर तिवारी था।
1: जी, और इनके माता पिता जगरानी देवी और सीताराम तिवारी थे। और देखिए इन्होंने जो इनका संगठन था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये इनका संगठन था, और इनका उपनाम जिसे आज़ाद कहा जाता है।
0: बिल्कुल, चंद्रशेखर का जो उपनाम था वो आज़ाद था, और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया था, असहयोग आंदोलन में कम उम्र में ही भाग लिया और पहली बार गिरफ्तार हुए थे।
1: बिल्कुल, और देखिए राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर के एक पायल बहन काकोरी कांड और अन्य क्रांतिकारी जो गतिविधियां थीं उनमें इन्होंने अहम भूमिका निभाई।
0: भगत सिंह और सुखदेव जैसे महान क्रांतिकारियों का मार्गदर्शन किया, और 27 फरवरी 1931 को जो है अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए उन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
1: बिल्कुल, तो ये तो रही जानकारी, और जैसा कि हमारा आज का कार्यक्रम SMS पर आधारित लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम है, तो हमारे पास में काफ़ी SMS हमारे सभी श्रोताओं के आ चुके हैं। पायल बहन, आज के हमारे कलाकार हैं सुरेश चंद गोला, और इनके लिए ये जो SMS हमारे पास में आई है पलारी छत्तीसगढ़ से भेजने वाले

0: दुर्ग छत्तीसगढ़ से भी हमें एसएमएस भेजा है बलकरण वर्मा और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने। ये फरमाइश हमारे पास आई है, रिंगनी छत्तीसगढ़ से भेजने वाले भाई हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। और ये फरमाइश हमारे पास आई है योगी मोहल्ला बराड़ा जिला अम्बाला से भेजने वाले भाई हैं रवि कुमार राहुल और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये फरमाइश हमें भेजी है गोविंदगढ़ गांव गोविंदगढ़ माझीवाला से, करनपुर राजस्थान से, और भेजने वाले भाई हैं राजू टूटेजा खुशदिल और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: ये फरमाइश हमारे पास में आई है पायल बहन दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले हैं हीरा मणि वर्मा और इनका पूरा परिवार। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से हमें फरमाइश भेज रहे हैं अकरम हुसैन प्रिंस डाक बाबू और इनका पूरा परिवार। ये एसएमएस हमें मिला है रामगढ़ कैंट से, भेजने वाले हैं महेंद्र मोदी ठाकुर साहब और इनका पूरा परिवार।
0: दुर्गा कॉलोनी हांसी से ये एसएमएस हमें प्राप्त हुआ है, भेजने वाले भाई हैं राजू मिगलानी और परिवार के सभी सदस्य। ये एसएमएस हमें मिला है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, भेजने वाले भाई हैं अभिजीत गवणकर राही और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर सुरेश चंद गोला की आवाज़ में ये रागनी।

छुपा रखे खड़ा परीक्षक, खड़ा परीक्षक।

0: पतली कमर लर्ज खाती ज्यों लर्ज बांस बरेली का। बहुत ही बढ़िया रागनी हमने अपने सभी भाई बहनों को सुनवाई। और भाई किस्सा था नवल दे का, और अतुल भाई रागनी उस मौके की जब नवल दे राजा वासुकी की लड़की भाई पांडवों के किले में पानी भरने जाती है, और भाई कुएं के पास ही राजा परीक्षित उन्हें देख लेते हैं। तो उस मौके की ये रागनी हमने अपने सभी भाई बहनों को सुनवाई, और भाई आवाज़ थी सुदेश चंद्र गोला की।
1: बिल्कुल, और देखिए ऐसे में हमारे पास में और भी आ चुके हैं पायल बहन। अगले जो हमारे कलाकार हैं वो हैं सुखपाल सिंह और उनके साथी, और ये ऐसे में समय मिला है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से भेजने वाले हैं लालगिरी गोस्वामी और इनका पूरा परिवार। ये ऐसे में समय मिला है हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से भेजने वाले हैं रजाक मोहम्मद और इनका पूरा परिवार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से भी हमें फरमाइश भेज रहे हैं कौशल्या देवांगन, रोशनलाल देवांगन उनका पूरा परिवार। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलैनशहर से भी हमारे पास में SMS आया है, भेजने वाले हैं मोहम्मद सईद अब्बासी और इनका पूरा परिवार।
0: ये फरमाइश हमें भेजी है पुरुषोत्तम कुमार ने और इनके पूरे परिवार ने, और इन्होंने ये भेजी है गाँव डंडी तहसील भद्रवाह जिला डोडा कश्मीर जम्मू कश्मीर से। और ये फरमाइश हमारे पास

0: भाई है ढाणा नारसान भिवानी से भेजने वाले भाई हैं जगदीश चिंडालिया और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये फरमाइश हमारे पास आई है गांव उंगाला जिला अम्बाला हरियाणा से भेजने वाले भाई हैं राजेंद्र कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: ये फरमाइश हमारे पास में आई है दादरी गेट भिवानी से भेजने वाले हैं कृष्ण मेहरा और इनका पूरा परिवार। गांव चौहलदा बागपत उत्तर प्रदेश से फरमाइश भेज रहे हैं संजय ढींगिया और इनका पूरा परिवार। बेहरवाला खुर्द सिरसा से फरमाइश भेज रहे हैं बलवंत जाखड़ और इनका पूरा परिवार। हनुमानगढ़ टाउन से फरमाइश भेज रहे हैं सुल्तान सिंह तारड़ और इनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमारे पास में यह है पायल बहन MLB रोड ग्वालियर से भेजने वाले हैं सुरेश खुराना पप्पी और इनका पूरा परिवार।
0: ये फरमाइश हमारे पास आई है आदर्श नगर मलौट पंजाब से भेजने वाले भाई हैं राज शर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। और ये फरमाइश हमें भेजी है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से भेजने वाले भाई हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी और परिवार के सभी सदस्य। ये फरमाइश हमें भेजी है दादा बाबू रोड झारखंड से भेजने वाले भाई हैं मोहम्मद यासीन अंजान और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये फरमाइश हमें भेजी है गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से भेजने वाले हैं सैयद मसरूर और परिवार के सभी सदस्य।
1: बिल्कुल, खुर्जा उत्तर प्रदेश से हमें फरमाइश भेज रहे हैं तिलकराज अरोड़ा और इनका पूरा परिवार। GTB मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से फरमाइश भेज रहे हैं मोहम्मद अनवर अंसारी और इनका पूरा परिवार। और सुखपाल सिंह को ही सुनना चाहा है गांधीनगर गुजरात से भेज रहे हैं सुरेश राठौड़ और इनका पूरा परिवार। पटेल नगर मैलौट से SMS भेज रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया और इनका पूरा परिवार। बाबा कोटी रायगढ़ से भी हमारे पास में फरमाइश आई है भेजने वाले हैं शिव कुमार चौहान और इनका पूरा परिवार।
0: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से ये फरमाइश भेजी है सत्येंद्र कुमार जनसौलिया और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। भोपालगढ़ राजस्थान से भी हमें फरमाइश भेजी है धर्मेंद्र छिपा और परिवार के सभी सदस्यों ने। ये फरमाइश हमें भेजी है जनकपुरी सहारनपुर से और भेजने वाले हैं जॉन डिकेस्ट्रो और इनके परिवार के सभी सदस्य। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से ये फरमाइश आई है PS नावकर और इनके परिवार के सभी सदस्यों की। संदीप मक्कड़ ज्योति और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने यह फरमाइश हमें भेजी है पिंगावाला चौक गौराया जलंधर से।
1: ये फरमाइश हमारे पास में आई है मुंगी पैठन महाराष्ट्र से भेजने वाले हैं बाबा साहेब कंगनकर और इनका पूरा परिवार। वडिंगखेड़ा पंजाब से भी हमारे पास में फरमाइश आई भेजने वाले हैं मिंटू टॉम्स और इनका पूरा परिवार। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से फरमाइश भेज रहे हैं ओम प्रकाश राय। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से भी फरमाइश भेज रहे हैं प्रतीक राय और उनका पूरा परिवार। गांव चौधरीवास हरियाणा से हमारे पास में फरमाइश आई है भेजने वाले हैं मांगेराम सतौड़ और इनका पूरा परिवार। कनेरा मोहल्ला पटियाला से फरमाइश भेज रहे हैं मुकेश बत्ता और इनका पूरा परिवार। चंडीगढ़ से भी फरमाइश भेज रहे हैं सतीश अनेजा और इनका पूरा परिवार। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से फरमाइश भेज रहे हैं ताज मोहम्मद अंसारी और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में ये है जमानिया गाजीपुर से भेजने वाले हैं सुरेश जायसवाल और इनका पूरा परिवार। गांव खोकरावली से भी हमारे पास में फरमाइश आई है भेजने वाले हैं विनोद बारशा और इनका पूरा परिवार। तो सुनवाते हैं पायल बहन सभी की फरमाइश पर सुखपाल सिंह और उनके साथी की आवाज़ में ये रागनी।

0: तो अतुल भाई, अभी हमारे सभी भाई बहन सुन रहे थे, ये रागनी और किस्सा था नरसी का भात। और भात ऐसा कि भाई जो आज तक भी भात में नाम हुआ कि भाई नरसी जैसा भात ना तो किसी ने भरा और ना कोई भरेगा।
1: भरेगा बिल्कुल
0: तो आइए, हमारे जो अगले कलाकार हैं उनके लिए भी हमारे पास SMS आ चुके हैं।
1: बिल्कुल। अगले जो हमारे कलाकार हैं वो हैं महेंद्र शर्मा, इनके लिए भी SMS ये आया है हमारे पास में। कुलाम रोड, हरगोविंद नगर, नवा शहर, पंजाब से भेजने वाले हैं सुरेंद्र संधू, इनका पूरा परिवार। और बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश से फरमाइश भेज रहे हैं सुरेश ग्रोवर और इनका पूरा परिवार।
0: ये फरमाइश हमारे पास आई है जटवाड़ा गाजियाबाद से, भेजने वाले भाई हैं शीशपाल अकेला। और ये फरमाइश हमें भेजी है धनौरी तेलीवाला से, भेजने वाले भाई हैं निसार सलमानी और इनके परिवार के सभी सदस्य। रावर करनाल से हमें फरमाइश भेजी है ज्ञान भूषण शर्मा और परिवार के सभी सदस्यों ने। छत्तीसगढ़ डोंगर गांव से हमें फरमाइश भेजी है राष्ट्रपाल गजबिये और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।
1: ये फरमाइश हमारे पास में है जिला नांदेड़ यताला, महाराष्ट्र से भेजने वाले हैं शंकरलाल जायसवाल, उनका पूरा परिवार। भटिंडा रोड, मंडी डबवाली से फरमाइश भेज रहे हैं राजेंद्र नारंग और इनका पूरा परिवार। गांव 5 MD पतरोड़ा, अनूपगढ़, राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं मंगल जनागल और इनका पूरा परिवार। गाँव लहरौड़ा, जिला बागपत से फरमाइश भेज रहे हैं जगमोहन सिंह प्रजापत और इनका पूरा परिवार। करावल नगर, दिल्ली से भी हमारे पास में SMS आया, भेजने वाले हैं रामनाथ प्रजापति और इनका पूरा परिवार।
0: गांव कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से ये फरमाइश भेजी है विक्रम कडवासरा और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। जलालपुर जिला सहारनपुर से हमें फरमाइश भेजी है श्रवण कुमार प्रजापति और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। ये फरमाइश लोहगढ़ ठुकरावाला से हमें फरमाइश भेजी है स्वर्ण सिंह गिल और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।
1: सूरतगढ़, राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं भूपेंद्र मिशन और इनका पूरा परिवार। अनारकली बाजार जगराओं, पंजाब से फरमाइश भेज रहे हैं सुनील पाठक और इनका पूरा परिवार। और तो सभी की फरमाइश पर सुनवाते हैं महेंद्र शर्मा की आवाज़ में ये राग।
2: और अशवपति बोले मंत्री।

0: तो पायल बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे महेंद्र शर्मा की आवाज़ में ये रागनी, और किस्सा था सत्यवान सावित्री का। और इसी रागनी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी
1: राम
0: राम
1: राम।
0: इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पारासर।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर। और लीजिए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का ये बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वो स्वयं बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को भंग करने के लिए जिम्मेदार लोगों को शीघ्रता से दंडित किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे दूसरी बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद पुनः शुरू होने पर विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामे के कारण राज्यसभा को भी दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार ने आज बताया कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए कुल 1,000 तीर्थ यात्रियों के लिए व्यवस्था की गई है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि विदेश मंत्रालय स्वयं के खर्च पर यात्रियों को परिवहन, आवास, भोजन, चिकित्सा परीक्षण, मार्गदर्शन आदि जैसी सेवाएं प्रदान करता है। सिक्किम में नामची जिले के समरदुंग में NHPC तीस्ता जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे सभी 25 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसके साथ ही 4 दिन के बाद बचाव अभियान समाप्त हो गया। सिक्किम सरकार ने इस दुखद घटना के कारणों का पता लगाने के लिए 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। समिति को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा कि अब से केवल नामित सरकारी अधिकारी ही ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे। ये कदम विशेष रूप से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में व्यापक अनियमितताओं का पता चलने के बाद उठाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कोटरोसेनी पैलेस में राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्रीमती मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकुसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। इस दौरान कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में औद्योगिक क्षमता से अधिक उत्पादन और कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ कम हो गया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में आज ठाणे, पालघर, नासिक और पुणे के घाट क्षेत्रों के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तरी कोंकण, दक्षिणी कोंकण और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में शनिवार तक तेज बारिश की संभावना है। प्रशासन ने पुणे और कोंकण की ओर यात्रा करने वाले पर्यटकों से अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में जिम्बाब्वे ने भारत को 100

0: 26 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 5 ओवर में 1 विकेट पर 52 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान भाई बहनों को हमारी
1: राम राम, राम।
0: अतुल भाई
1: जी, पायल बहन
0: भाई, कृषि जगत कार्यक्रम के अंतर्गत हम अपने सभी किसान बहन भाइयों का मनोरंजन तो कराते हैं, लेकिन कुछ अच्छी बातें, काम की बातें भी जो उनके काम आ सकती है, जिससे कि वो अच्छा लाभ, अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, ऐसी भी जानकारी हम समय समय पर अपने किसान भाई बहनों को देते रहते हैं।
1: बिल्कुल, देखिए हमारे कृषिगत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए विशेष जानकारी, उनकी फसल से संबंधित हो, चाहे उनके पशुपालन से संबंधित हो, चाहे उनके स्वास्थ्य से संबंधित हो, जानकारी समय समय पर हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम पहुँचाते रहते हैं। ऐसी ही आज एक जानकारी हम भी लेकर के आए हैं, मशरूम उत्पादन की संरक्षित खेती, संरक्षित एवं आधुनिक तकनीकी।
0: बिल्कुल, क्यों ना ये बातचीत अपने सभी बहन भाइयों को सुनवाई जाए।
1: बिल्कुल, और इसकी जानकारी दे रहे हैं पवन कुमार, प्रगतिशील किसान, और इनसे बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल। तो पहल भी लेते हैं ये जानकारी।
2: किसान भाइयों नमस्कार, हम अपने कार्यक्रम में कभी कभी प्रगतिशील किसानों को भी बुलाते हैं जो कि कृषि के क्षेत्र में कुछ न कुछ नया करते हैं, चाहे वो सब्जी उत्पादन हो, चाहे बागवानी की बात हो, और चाहे फसल उत्पादन की। और अगर हम सब्जी की बात करें तो सब्जियों में भी बहुत सी सब्जियां हैं, कोई तो फूलगोभी उगाता है तो कोई दूसरे तरीके की सब्जियां उगाता है, लेकिन अगर हम बात करें एक विशेष जो पौष्टिक सब्जी है जिसको कहते हैं कि मशरूम, और कुछ लोग इसको कुंभ के नाम से भी जानते हैं, तो आज हमारे साथ हैं पवन कुमार जी जो कि एक मशरूम उत्पादक हैं, और इनसे जानेंगे कि मशरूम उत्पादन की संरक्षित और आधुनिक तकनीक क्या है। पवन कुमार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्ते सभी को जी। मेरा
2: सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि जैसे मशरूम जिसको कुंभ भी कहते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि जो हमारे किसान भाई करना चाहते हैं, कि कई तो जंगली मशरूम होते हैं और जो हमारे किसान भाई उगाते हैं सब्जी के तौर पे जिन्हें प्रयोग किया जाता है, तो इनमें क्या अंतर है, कौन से उगाए जाते हैं?
3: जो जंगली मशरूम होती है उनमें कुछ खाने के योग्य सभी मशरूम नहीं है जंगली।
2: हाँ, मतलब खाने योग्य नहीं है।
3: हाँ, सभी नहीं है, है कुछ खाने योग्य
2: जी,
3: मगर वो लोग खा सकते हैं जिनको पहचानो नहीं, तो वो विषैली भी है।
2: और जो उगाते हैं किसान भाई वैज्ञानिक तरीके से,
3: हाँ ये एक साइंटिफिक तरीके से, इसका मशरूम एक फंगस है तो वो तैयार किया जाता है लैब में, जो कि हमारे शरीर में उसका कोई भी नुकसान नहीं होता।
2: तो आपने मशरूम का उत्पादन कब से शुरू किया था?
3: मैं 2016 में किया था जी।
2: तो आज जो मशरूम आपने शुरू किया था, अब उसकी स्थिति क्या है?
3: हमने स्टार्टिंग में छोटे कंट्रोल कंडीशन फार्म से शुरू किया था
2: जी,
3: तो बटन मशरूम से शुरू किया था। अब हम दो तीन तरह के मशरूम उगाते हैं, बटन भी उगाते हैं, ओस्टर भी, क्रिमनी, एक पोर्टोबेलो। उनमें थोड़ा सा प्रोटीन विटामिन एक्स्ट्रा है, और टेस्ट भी अलग है और बनाने का तरीका भी अलग है।
2: जैसे आपने जब शुरू किया तो क्या मशरूम के बारे में पहले से जानकारी आपको थी, या आपने इसकी कहीं से ट्रेनिंग ली?
3: नहीं, मैंने मेरे नज़दीक KVK उजवा था दिल्ली में
2: जी,
3: तो वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली, फिर उसके बाद मैंने हैक से भी ली, सोलन से भी ली नए रिसर्च के लिए। तो वहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने शुरू किया, फिर मैं धीरे धीरे हर साल अपने कंट्रोल कंडीशन के जो हमारे प्लांट है वो बढ़ाता गया।
2: तो आज के कितनी स्थिति है, कितने क्षेत्रफल में आपने लगा रखा है?
3: अभी हमारा जो है इसका क्षेत्रफल, इसमें जी स्टेप बनते हैं
2: जी,
3: और हमारे सारे AC प्लांट हैं कंट्रोल कंडीशन।

0: 12 महीने चलते हैं।
1: तो 12 महीने उत्पादन मिलता है।
0: हाँ जी, 12 महीने उत्पादन मिलता है हमारा। अभी 80 टन खाद आता है, तो 80 टन का मतलब होता है कि अगर आप मैनेजमेंट आपका ठीक ठाक है तो 18 से 22% निकलती है एक बैच में। 80 टन का मतलब हो गया 16,000 किलो। एक बैच हमारा 70 दिन के आसपास हमारा कंपोस्ट अंदर भी और बाहर हो जाता है। एक बैच मतलब 70 दिन के आसपास लग जाते हैं, 60 से 70 दिन।
1: और कंपोस्ट आप क्या खरीदते हैं या बनाते
0: हाँ जी,
1: हैं?
0: मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ तो यहाँ मैं बना नहीं सकता, मेरे को कंपोस्ट बनाने की परमिशन नहीं मिली थी, तो बाहर से लेता हूँ, मगर फार्मूला हम अपना देते हैं।
1: अच्छा, उनसे अपने तरीके से बनवाते
0: हाँ
1: हैं।
0: जी, उनसे अपने तरीके से बनवाते हैं, और 30-40 फार्म मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हरियाणा, राजस्थान में भी, दिल्ली में भी और उत्तराखंड में भी, उनको भी खाद हम ही दिलवाते हैं।
1: जो आपने कंपोस्ट तैयार कराते हैं उसकी क्या विशेषता है, किस तरीके से बनवाते हैं?
0: हमारा वहाँ भी कंट्रोल कंडीशन से ही बनता है कंपोस्ट।
1: कंपोस्ट भी?
0: हाँ, वो ओपन में नहीं बनता, उसके अंदर जैसे ओपन में बनता है उसमें हमें पोस्चराइज करने के लिए बहुत केमिकल यूज़ करना पड़ता है। हमारा टनल बंकर में बनता है, तो हम उसको एक हाई टेम्परेचर पे लेके जाते हैं, वो प्रोसेस है, तो उसमें कोई केमिकल या पेस्टिसाइड ये यूज दवा या कोई यूज़ नहीं होती उसके अंदर। हाई टेम्परेचर से जो हमने पोस्चराइज करना पड़ता है उसी से मशीनों में हो जाता है, टनल बंकर में।
1: जो कंपोस्ट बनते हैं ये केवल मशरूम के लिए?
0: हाँ, मशरूम के लिए ही बनता है जी, वो अलग से ही बनता है, मशरूम का ही बनता है वो। वैसे तो सभी मशरूम का अलग अलग है,
1: जी,
0: मगर जो हम 2-3 तरीके की बनाते हैं, जैसे बटन का है, पोर्टोबेलो क्रीमनी, उसमें एक दोनों ये एक ही यूज हो जाता है। ओस्टर का जो बनाते हैं वो हम खुद बनाते हैं, बाकी कुछ मशरूम अलग है उनका हम खुद बनाते हैं, उसके लिए टनल बंकर की जरूरत नहीं होती।
1: मान लीजिए आपने कंपोस्ट ले ली
0: हाँ
1: और
0: जी,
1: उसके बाद उसमें जब स्पॉन मिलाने का वो होता है तो उसको क्या, कौन सी तकनीक अपनाते हैं?
0: हम अपने फार्म पे 2 तरीके से उगाते हैं, एक बेड पे और एक बैग में। तो जैसे बैग में है, बहुत से किसान तो क्या करते हैं कि जहाँ कंपोस्ट बनता है
1: जी
0: उन्हीं को कह देते हैं कि जी हमारा स्पोन इसके अंदर मिक्स करके दे देना, मगर उसमें किसान को कई बार नुकसान हो जाता है। जब कंपोस्ट ट्रेवलिंग करता है
1: तो
0: तो
1: गर्म
0: गर्मियों
1: होता
0: के
1: है।
0: टाइम में उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो उससे उसका स्पोन मरने का डर रहता है। हम ऐसा नहीं करते,
1: जी
0: हमारे साथ कई बार क्या होता है, जैसे कंपोस्ट आया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो हम उसको बेड में कन्वर्ट करते हैं, बैग में नहीं डालते ना उसके अंदर स्पोन डालते हैं, उसको हम अपने बेड पे डाल देते हैं, और फिर जब उसका टेम्परेचर उसमें हमारा जो एक साइंटिफिक 24-25 डिग्री
1: जी
0: उतना आ जाता है, हमारे एसी उसको ठंडा करते हैं, 1 दिन के अंदर हो जाता है, फिर उसके अंदर हम स्पोनिंग करते हैं, या बैग में भी करना पड़ता है तो बैग को हम ऐसे ही बगैर स्पोनिंग के रखते हैं, जब उसका टेम्परेचर एक ठीक ठाक आ जाता है 24-25 डिग्री, तभी उसमें स्पोनिंग करते हैं, नहीं तो नहीं करते।
1: तो ये
0: किसान
1: स्पॉन?
0: ये गलती करते हैं
1: जी
0: कि थोड़ी सी ये कर लेते हैं कि जी बैग बने बनाए ले लिए, अब वो रास्ते में ट्रेवलिंग में या टेम्परेचर में भीग गया, या कभी लापरवाही हो जाए या हाई टेम्परेचर हो गया, तो उससे किसान का नुकसान होने का डर है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। टेम्परेचर जब 24-25 डिग्री आ जाए तभी स्पोनिंग करें उसमें।
1: तो जो स्पॉन है वो कहाँ से लेते हैं आप?
0: फोन हमारा जी दिल्ली से भी आता है और सोनीपत से भी आता है, लैब है वहाँ,
1: जी,
0: उन लैब से लेते हैं हम।
1: तो अलग अलग किस्मों के अलग अलग होते
0: हाँ,
1: होंगे।
0: वैरायटी अलग अलग है जी।
1: और जो आपने जिस तरीके से कहा कि हमारा पूरा संरक्षित दशाओं में है, तो उसमें टेम्परेचर आप कैसे मेंटेन करते हैं?
0: हमारे पास कमर्शियल एसी लगे हुए हैं, इसके लगाने के लिए पूरा कोल्ड स्टोर टाइप बनाना पड़ता है, हमारे कोल्ड स्टोर टाइप है सारे, उन्हीं में रैक है, उन्हीं में हमारी कंट्रोल कंडीशन के लिए एसी लगे हुए हैं, कमर्शियल एसी लगते हैं सेंट्रलाइज, वो लगे हुए हैं, तो उसी से टेम्परेचर मेंटेन होता है।
1: अच्छा, कोई भी चीज़ जब हम संरक्षित दशाओं में उत्पादन करते हैं तो उसके लिए उसमें स्वच्छता की बहुत ज़रूरत होती
0: हाँ
1: है,
0: जी,
1: तो वो आप कैसे करते हैं?
0: देखो पहले धारणा क्या थी कि मशरूम सड़ी गली चीज में पैदा होती है,
1: जी
0: अगर हमारे कंपोस्ट में कुछ पार्ट पोस्चराइज ठीक नहीं हुआ या सड़ा गला है, वहाँ मशरूम नहीं आएगी जी, बड़ी शुद्ध जगह में मशरूम पैदा होती है। तो हम अपने प्लांट में जो हमारे कमरे हैं जिनमें हम उगाते हैं उनको बड़ा साफ सुथरा रखते हैं जी, जब हम उसके अंदर कंपोस्ट डालते हैं तो उसको कम से कम नहीं तो हम 24 घंटे या 48 घंटे पहले सफाई करके फिर ट्रीट करके उसको बंद कर देते हैं कि इसके अंदर कोई बैक्टीरिया या मक्खी मच्छर कोई चीज़ ना हो।
1: तो जैसे इसमें, क्योंकि जब आप बिल्कुल उसको बंद रखते हैं तो निश्चित तौर पे उसमें कीटों का तो कोई प्रभाव होने की संभावना रहती ही नहीं है।
0: नहीं, कई बार क्या होता है जी, जैसे मौसम में अब जैसे बरसात का है
1: जी
0: तो

0: किसानों को ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इन दिनों में।
1: अच्छा कीट आ जाते हैं
0: हाँ जी, उसके लिए अब हमारे कमरे बंद होते हैं,
1: जी
0: इसका एक बनाने का भी तरीका होता है कमरे का।
1: जी
0: ऐसा नहीं है कि आपने एक कमरा बनाया और उसके आगे पूरा ही खुला है, दरवाज़ा खोला, बाहर से हवा आ रही है या कीट आ रहे हैं। तो बनाने से पहले ये दो तीन चीज़ें देख ले कि कमरे से आगे एक और कमरा बनाए जो आपके बाद में स्टोर या पैकिंग में यूज़ हो जाएगा। तो एंट्री जब भी होगी किसी चीज़ की, पहले उस कमरे में होगी, फिर प्रोडक्शन यूनिट में होगी।
1: मान लीजिए फिर अगर उसमें कीट आ गए तो
0: हाँ,
1: उनका नियंत्रण कैसे करें?
0: कुछ कीट ऐसे हम पे नियंत्रण बड़ा मुश्किल हो जाता है। सावधानी और साफ सुथरा रखना ही बचाव है। ध्यान रखना चाहिए किसानों को कि दवाई वाई ना यूज़ करके सावधानी बरते
1: अच्छा मशरूम
0: खुद।
1: में भी कोई बीमारियां वगैरह भी होती हैं?
0: बीमारियां तो जी आ जाती है, बहुत तरह की बीमारी है, उसमें कुछ पीछे से भी आ जाती है। कई बार क्या होता है कि हमारा जो बीज है स्पोन,
1: जी
0: उसमें भी आ सकती है, कंपोस्ट में भी आ सकती है। कंपोस्ट पोस्चराइज ठीक नहीं हुआ हो, शुद्धिकरण उसका ठीक नहीं गया, उसका एक टेम्परेचर पे ले जाके फिर उसको डाउन करने पे गलती कर देता है कई बार किसान, तो उसमें किटोनिया उटोनिया टाइप कई तरह की बीमारी है, तो उसमें मशरूम नहीं आती। कुछ
1: अच्छा
0: बीमारी तो ऐसी है, स्टार्टिंग में जब हम कंपोस्ट में स्पोन मिलाते हैं, स्पोन रन होते ही थोड़े दिन बाद ही बीमारी आ जाएगी और कोई मशरूम पैदा नहीं होगी।
1: तो मान लीजिए मशरूम ऐसी फसल है कि जिस तरीके से लोग गेहूं धान काटते हैं इकट्ठा तैयार हो जाता है, लेकिन मशरूम में ऐसा नहीं है,
0: हाँ
1: धीरे धीरे आता है, तो इसकी जो कटाई है, ग्रेडिंग है, इसमें आप क्या सावधानी रखते हैं?
0: अगर आप ग्रेडिंग का और क्वालिटी का ध्यान रखोगे तो आपको अच्छा रेट मिलेगा।
1: जी
0: थोड़ी सी सावधानी और अच्छा रेट। देखो, आप सब्जी लेने जाते हो मार्केट में,
1: जी
0: जो आपको सब्जी में कोई भी पैकिंग में या खुली है जो सबसे अच्छी लगती है ग्राहक को, सबसे पहले उसी को उठाता है।
1: बिल्कुल, साफ सुथरी हो,
0: हाँ, तो ये चीज़ें तो आपको
1: चमकदार
0: ध्यान
1: हो।
0: रखनी चाहिए उस अपने फार्म पे ही। जब आप मार्केट पे जाओ, उससे पहले उसकी ग्रेडिंग करवा दो, तो ए बी ग्रेड भी दोनों बिक जाती है, ये नहीं है बिकती नहीं है, बिक जाती है। तो ग्रेडिंग बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कस्टमर का भी ध्यान रखना चाहिए,
1: जी
0: जो हमें पैसे दे रहा है
1: बिल्कुल
0: उसके भी
1: बिल्कुल।
0: स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखना चाहिए।
1: और क्योंकि देखो उत्पादन तो सभी कर लेते
0: हाँ
1: हैं
0: जी,
1: और मेहनत करते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं बहुत से उत्पादन कर लूं, लेकिन असली बात आती है कि उसकी मार्केटिंग की, क्योंकि
0: देखो,
1: जब तक वो बिकेगी नहीं तब तक उसे फायदा नहीं होगा। तो आप मार्केटिंग कैसे करते हैं?
0: मार्केटिंग की तो सबके पास अपने अपने स्रोत है जी। हमारे पास तो ज्यादातर हमारी खुद सप्लाई है। हम होलसेल में, जैसे मंडी है
1: जी
0: आड़ती जहाँ बैठते हैं, वहाँ हमारी बहुत कम जाती है। वहाँ हमारी तब जाती है जब हमारे पास एक्स्ट्रा हो, नहीं तो
1: अच्छा
0: हमारे पास, मैं तो दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, मार्केट तो किसानों के लिए सबके लिए है, मगर वहाँ लेने वाला देखेगा ना जी कि किसकी क्या क्वालिटी है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप क्या क्वालिटी दे रहे हो और वो क्या क्वालिटी ले रहे हैं। हमारी तो दिल्ली में जो टॉप मार्केट है ना, उनके अंदर हम देते हैं और ठीक ठाक रेट हमें मिलता है। मंडी के अंदर क्या होगा कि आड़ती के हाथ में रेट है।
1: हाँ, वो अपने हिसाब से डिसाइड करते
0: हाँ, और
1: हैं
0: यहाँ हम दे रहे हैं और उसको अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, तो हमारे हाथ में रेट है।
1: जी, वो मनमाना पैसा देते हैं। तो जैसे क्योंकि जिस तरीके से आप संरक्षित दशाओं में कर रहे हैं तो इसमें लागत भी ज़्यादा आती है,
0: हाँ जी,
1: तो जो
0: लागत
1: हमारे
0: तो
1: छोटे किसान अगर इस कार्य को करना चाहें उनके लिए आपकी क्या सलाह है?
0: उसमें हर स्टेट के अंदर गवर्नमेंट भी सहायता करती है।
1: जी
0: अगर उनके पास अपना पैसा नहीं है तो वो पहले इसके लिए ट्रेनिंग करे, सीखे अच्छी तरह, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों। उसके बाद बहुत सी संस्था है हर स्टेट के अंदर,
1: हर राज्य में है।
0: हाँ, जो उनको फाइनेंशियल हेल्प कर सकती है, उनसे सहायता ले सकते हैं। अगर वहाँ से भी कोई बात नहीं बनती तो उसके पास जितना बजट है वो अपना छोटा काम कर सकता है। दूसरा, इसके अंदर एक और फायदा है कि परिवार में जितने भी बेरोजगार हैं उनको सबको रोजगार मिलेगा और दूसरे लोगों को भी आप रोजगार दोगे।
1: मतलब केवल कार्य नहीं शुरू कर रहे हैं, उसके साथ अपने पूरे परिवार के लोगों को उसमें रोजगार भी उपलब्ध करवा रहे
0: अब
1: हैं।
0: ये देखो ना, हम किसी से खाद भी ले रहे हैं, बीज भी ले रहे हैं, मार्केट में भी हम मशरूम,
1: जी जी
0: तो कितने लोगों को
1: हाँ,
0: हम
1: कोई
0: जुड़े हुए
1: ग्रेडिंग
0: हैं,
1: कर
0: उनको
1: रहा है,
0: सबको
1: कोई
0: रोजगार
1: पैकिंग कर
0: मिलता है।
1: रहा है, कोई
0: हाँ
1: उसकी कटाई कर रहा है, कोई स्पॉन मिलाने का काम करता है, मतलब पूरा बेड बनाने से लेकर के उसकी मार्केटिंग तक पूरा कार्य रहता है। लेकिन जब कोई भी कार्य किया जाता है, निश्चित तौर पे जितनी उसमें आसानियां होती हैं उतनी चुनौतियां भी होती हैं, तो इसके अंदर क्या चुनौतियां हैं?
0: देखो, इसके अंदर सबसे पहले तो चुनौती ये है कि आपका जो खाद है वो आप एक अच्छे उससे चुने और बढ़िया ले।
1: अच्छी जगह से
0: हाँ, जो उसके अंदर पूरा मटेरियल अच्छे तरीके से डाल दे, जिसका

0: आपकी उत्पादन का जो परसेंटेज है वो ठीक आ जाए। अगर वो नहीं आया तो आप उत्पादन
1: विश्वसनीय
0: नहीं ले
1: जगह
0: सकते।
1: होनी चाहिए।
0: हाँ, दूसरा फिर आपके पास काम करने वाले जो लोग हैं वो भी ठीक ठाक हो, उनको पहले आप अच्छे तरीके से सिखाओ, नहीं तो वो भी गलती कर देंगे तो भी नुकसान है। जो मशरूम खाद में अगर बीज मिलाना है तो टेम्परेचर देखना, वो सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर वो बीज के जो कुछ प्रोसेस है कि भाई हमारा माइसीलियम फैल गया, फंगस फैल गई, तो उसके अंदर हम एक केसिंग मिट्टी मिलाते हैं, वो कैसे तैयार होती है, वो इन चीज़ों का कि हमने कितना पीएच, इन सब चीज़ों का हमने ध्यान रखना पड़ेगा। फिर लास्ट में जब हमारी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है
1: जी
0: तो प्रोडक्शन के टाइम हमें खास ध्यान रखना पड़ता है ग्रेडिंग का, जो आप बात कर रहे थे कि भाई रेट की,
1: जी
0: जब आप ग्रेडिंग करोगे तो आपको रेट बढ़िया मिलेगा, तो उस टाइम बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बात आती है पैकिंग हो गया आपका माल,
1: जी
0: फिर मार्केट भेजना। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई हमने पैक करके रख दिया, भाई कल भेज देंगे परसों, नहीं, आज अगर हमारी मशरूम की कटिंग होनी है तो वो आज ही होगी और मार्केट भी आज ही जाएगी। स्टोरेज नहीं है इसमें,
1: जी
0: थोड़ा
1: जी
0: बहुत टाइम के लिए स्टोरेज है, नहीं तो नहीं है स्टोरेज। एक और भी है जी कि जो शाकाहारी लोग हैं
1: जी
0: उसके लिए बड़े फायदेमंद है मशरूम। विटामिन डी मशरूम में ही मिलता है और फैट फ्री है, 0% फैट है मशरूम में। दूसरा कैंसर, बीपी और शुगर, इनमें ये हेल्पनेस है। ये हमारे जो मार्केट दिल्ली में मिलती है बटन मशरूम, ये बाकी जो मेडिसिन की है वो तो है ही अलग,
1: जी
0: मशरूम में मेडिसिन की भी है जो हर कोई नहीं खरीद सकता, कॉस्टली है, बाकी ये भी हेल्पनेस है खाने के लिए।
1: जी बिल्कुल पवन कुमार जी, आप निश्चित तौर पे बहुत अच्छी जानकारी दी और निश्चित तौर पे इससे किसान भाइयों को काफ़ी फायदा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो अतुल भाई, अभी हमारे सभी भाई बहन सुन रहे थे ये बातचीत मशरूम उत्पादन की संरक्षित एवं आधुनिक तकनीक जिससे आप खेती कर सकते हैं। इस बातचीत में भाग ले रहे थे पवन कुमार, जो कि एक प्रगति किसान है, और इनसे बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल।
3: बिल्कुल, और देखिए योजना भी हमारी सरकार ने काफ़ी चलाई हुई है हमारे सभी किसान बहन भाइयों के लिए। पायल बहन, उन्हीं में से एक योजना है प्रति बूंद अधिक फसल, यानी कि जब बूंद, यानी कि जब आप फसल को बूंद बूंद सिंचाई करते हैं, यानी कि पौधे की जड़ तक आप जो है जल पहुंचाते हैं, तो निश्चित रूप से जैसे पूरे खेत में पानी फैल जाता है, तो पूरे खेत में पानी ना फैला करके पाइप बिछा करके प्रत्येक पेड़ किया, जैसा कि आपने बैंगन का पेड़ लगाया हुआ है या गोभी के पेड़ लगाए हुए हैं, तो उनके पौधे की जड़ में जो पानी पहुंचाया जाता है बूंद बूंद सिंचाई के द्वारा।
2: बिल्कुल, और देखिए इससे फ़ायदा भी है अतुल भाई कि पानी की बचत भी होती है और फसल भी आपकी बहुत अच्छी होती है।
3: बिल्कुल, और देखिए बरसात का मौसम भी चला हुआ है पायल बहन, तो हम तो यही कहेंगे अपने सभी किसान बहन भाइयों से कि भाई अपने स्वास्थ्य का भी आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि देखिए बरसात के मौसम में खांसी जुकाम भी हो जाते हैं, और कई बार बरसात में अगर आप भीग भीग जाते हैं तो भाई बुखार भी आपको जो है हो जाता है, तो अपने स्वास्थ्य का भी आप विशेष ध्यान रखें। आप चलते चलते अपने भाइयों का मनोरंजन करवाते हैं और सुनवाते हैं तेजवीर विदुड़ी की आवाज़ में ये उपदेश।

0: तो पायल बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे तेजवीर विधुड़ी की आवाज़ में ये उपदेश, और इसी उपदेश के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को हमारी राम
1: राम राम।
0: राम। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पाराशर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 7:30 हो रहे हैं और अब आप सुनेंगे कुछ गज़ल। लीजिए, सबसे पहले सुनते हैं पंकज उदास के स्वर में ये गज़ल।

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे पंकज उदास की गाए कुछ गज़लों का। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और लीजिए, आप सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो।

0: प्रयोग करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोविड 19 में कर्तव्य निर्वहन के दौरान जान गंवाने वाले अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री ने पश्चिमी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन और सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन परियोजना का शुभारंभ किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, राजधानी दिल्ली में यातायात भीड़ को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शुरू की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, पेपर लीक के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई परिश्रमी छात्र के साथ न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कल नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा और आज विश्व प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोविड 19 महामारी के दौरान कर्तव्य के निर्वहन में सर्वोच्च बलिदान देने वाले फ्रंटलाइन वर्कर के परिजनों को वर्षों से लंबित 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि कर्तव्य के निर्वहन में सर्वोच्च बलिदान देने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स के योगदान का स्मरण और उनके परिवारों के प्रति दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता सदैव सर्वोपरि रहेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज बताया कि राजधानी दिल्ली में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शुरू की हैं। दक्षिण दिल्ली से लोकसभा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी के प्रश्न के लिखित उत्तर में श्री गडकरी ने बताया कि इस परियोजना से दिल्ली में 2105 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
4: श्री गडकरी ने बताया कि दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे की योजना के अंतर्गत डीएनडी से फरीदाबाद और सोहना होते हुए 6 लेन का ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसकी लागत 4,583 करोड़ रुपए है। इसके अलावा लगभग 7,000 करोड़ रुपए की लागत से द्वारका एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग 48 को नेल्सन मंडेला मार्ग वसंत कुंज से जोड़ने के लिए शिवमूर्ति से 6 लेन की टनल भी शामिल है। उन्होंने बताया कि इन सभी योजनाओं पर व्यय की जाने वाली कुल राशि 1,04,145 करोड़ रुपए है। आश्रम से बदरपुर बॉर्डर तक महरौली गुड़गांव रोड, INA से महिपालपुर और कालिंदी कुंज जंक्शन से ओखला बैराज तक एक इंटरचेंज के निर्माण की अन्य परियोजनाओं का प्रस्ताव है। नितिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पश्चिमी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन और सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने अत्याधुनिक तकनीक से लैस 917 कचरा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
5: यह डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन और सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन परियोजना पश्चिमी दिल्ली नगर निगम के 25 वार्डों के लगभग 4.5 लाख परिवारों को कवर करेगी। इसकी शुरुआत पहले चरण में 6 वार्डों से हो गई है, जबकि शेष 19 वार्डों को इस वर्ष 31 अगस्त तक जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ, हरित और विकसित दिल्ली का निर्माण केवल सरकारी प्रयासों से नहीं बल्कि जन भागीदारी से ही संभव है। उन्होंने नागरिकों से घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था का सहयोग करने, गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण सुनिश्चित करने तथा अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने का आह्वान किया। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार ने नगर निगम को निर्देश दिया कि इसके लिए जो भी फंड चाहिए वह सरकार प्रदान करेगी।
6: दिल्ली सरकार ने भी नगर निगम को ये कहा कि जितना भी फंड लगेगा, परंतु दिल्ली सरकार की ये प्रायोरिटी है कि दिल्ली साफ होनी चाहिए, दिल्ली सुंदर होनी चाहिए। किसी भी शहर की सुंदरता जो सबसे पहले आकी जाती है वो वहाँ की सफाई व्यवस्था से आकी जाती है।
5: उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आधुनिक तकनीक, मजबूत बुनियादी ढांचे और जन सहभागिता के समन्वय से दिल्ली देश की सबसे स्वच्छ और सुव्यवस्थित राजधानी के रूप में स्थापित होगी। इस अवसर पर दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, महापौर परवेश वाही और नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार भी उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नीतिका गुप्ता।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कहा कि पेपर लीक के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का निर्णय हर परीक्षा में छात्र के साथ न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों के अधिकारों और उनके परिश्रम पर आघात करने वालों के विरुद्ध कानून पूरी कठोरता के साथ काम करेगा। दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों को लागू करना हो या प्रधानमंत्री द्वारा आज सुबह बताए गए फास्ट ट्रैक कोड बनाना हो, सरकार कोई भी अस्थायी समाधान या जल्दबाजी में किए जाने वाले उपाय नहीं कर रही है। एक प्रेस वार्ता में श्री सूद ने कहा कि सरकार उन सभी कमियों को खत्म करने की कोशिश कर रही है जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कल नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। इस बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में ब्रिक्स सहयोग के विकास में महत्वपूर्ण है। मंत्रालय के अनुसार बैठक इस बढ़ती वैश्विक समझ को दर्शाती है कि आपदाएं सतत विकास, जलवायु अनुकूलन, आर्थिक स्थिरता और मानव सुरक्षा के लिए व्यापक और गंभीर जोखिम उत्पन्न करती हैं। बैठक में ब्रिक्स के 10 सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज पीएचडी चैम्बर हाउस में सेफ स्कूल्स लीडरशिप 2026 पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यक्रम में स्कूल की सुरक्षा और मुश्किल हालात का सामना करने की क्षमता के लिए एक व्यापक और भविष्य के हिसाब से तैयार दृष्टिकोण की जरूरत पर जोर दिया गया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि अब स्कूल की सुरक्षा का दायरा केवल भौतिक बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है, इसमें साइबर सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, आपदा की तैयारी और अप्रत्याशित स्थितियों में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने की क्षमता भी शामिल है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। हालांकि DMRC ने बताया कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा की समस्या को रोकने के लिए आज दिल्ली शाहदरा शामली रेलखंड के लोनी रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाले कुल 71 मामले पकड़े गए और 37,210 रुपये का रेलवे राजस्व वसूला गया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत दिल्ली पुलिस आयुक्त को दी गई हिरासत में लेने की शक्तियां नई नहीं हैं, बल्कि ये शक्तियों का नियमित विस्तार या नवीनीकरण है। एक बयान में दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये आदेश हर 3 महीने में जारी किया जाता है और वर्तमान नवीनीकरण 7 जुलाई को इस वर्ष 19 जुलाई से 18 अक्टूबर की अवधि के लिए जारी किया गया था। पुलिस ने कहा कि ये नवीनीकरण छात्रों के विरोध प्रदर्शन शुरू होने से काफी पहले जारी किया गया था। सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में लिखित जवाब में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम शुरू किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर आज कहा कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री लाना जारी रखेगा। प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के बारे में श्री द्विवेदी ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म के पहले से ही लगभग 1.1 करोड़ उपयोगकर्ता हैं और ये तेजी से बढ़ रहा है।
0: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं, और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का, स्मरण करने का, और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को, अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दीं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक ऐसा माध्यम है जो देश को जानकारी देता है, प्रेरित करता है और एकजुटता करता है, साथ ही विकसित भारत की भावना को भी आगे बढ़ाता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज भारतीय मजदूर संघ के स्थापना दिवस पर सभी श्रमिकों और समर्पित कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दीं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि दत्तोपंत ठेंगड़ी के मार्गदर्शन में स्थापित भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रहित, उद्योग हित और श्रमिक हित के आदर्शों को आधार बनाकर श्रमिकों के सम्मान, अधिकारों और कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें नमन किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वराज और स्वदेशी के प्रबल समर्थक लोकमान्य तिलक ने भारतीयों में आत्मगौरव और राष्ट्रीय चेतना को नई दिशा दी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उनके विचारों, साहस और नेतृत्व के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन का स्वरूप

नमन किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वराज और स्वदेशी के प्रबल समर्थक लोकमान्य तिलक ने भारतीयों में आत्मगौरव और राष्ट्रीय चेतना को नई दिशा दी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उनके विचारों, साहस और नेतृत्व के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण और स्वाभिमान का संदेश सदैव स्मरणीय रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वाधीनता के लिए चंद्रशेखर आजाद का अदम्य साहस, अटूट स्वाभिमान और सर्वोच्च बलिदान प्रत्येक भारतीय के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। सरकार ने उन सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि दिल्ली में नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान

तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोविड-19 में कर्तव्य निर्वहन के दौरान जान गंवाने वाले अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री ने पश्चिमी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन और सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन परियोजना का शुभारंभ किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, दिल्ली में यातायात भीड़ को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शुरू की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, पेपर लीक के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई परिश्रमी छात्र के साथ न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कल नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा और आज विश्व प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और श्रोताओं, अब वक्त है गीत मालिका में फिल्म संगीत का। तो आज ये कार्यक्रम लेकर मैं आपके साथ आपकी दोस्त हाजिर हूँ शिल्पा गोस्वामी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, प्रोग्राम चालू करते हैं। साथ अगर हम सफ़र हो तो डगमगाते हुए भी समल जाते हैं कदम। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर हमारे साथ हमारा हम सफ़र साथ चल रहा है तो हम किसी भी मुश्किल वक्त में हंसते हंसते निकल जाते हैं।

साथियों, प्रेम तो सब करते हैं, लेकिन प्रेम का जो असली मतलब है वो है इंतज़ार। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि प्रेम तो हर कोई कर लेता है, लेकिन इंतज़ार हर कोई नहीं कर सकता।

साथियों, किसी से दिल लग जाए क्या वो प्रेम है? नहीं, लेकिन किसी के बिना दिल ना लगे वो प्रेम है।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

0: यूं ही साथ साथ चलते।
1: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ में फिल्म दीवाना से ये गीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए

फास्ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंश

0: ही सरकार ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था जिन्होंने वास्तव में यह अपराध किया था।
1: उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया गया है।
2: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
1: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मानसून सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। इस हंगामे की वजह से आज लोकसभा और राज्यसभा में कोई खास कामकाज नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह भरोसा दिलाए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे पहले से शर्तें थोप रहे हैं और नीट पेपर लीक मामले पर बहस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस चर्चा से पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। लोकसभा में भी हालात ऐसे ही रहे। गतिरोध जारी रहने के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गयी। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण

0: एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
1: भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित और निर्बाध रहने चाहिए। मनीला में 21वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि नाविकों, नागरिक जहाजों या बुनियादी ढांचे पर हमले किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। श्री जयशंकर ने आसियान की केंद्रीयता, क्षेत्रीय स्थिरता और एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। विदेश मंत्री ने आज फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर से मुलाकात की और आसियान की अध्यक्षता के लिए भारत के समर्थन से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत भारत फिलीपींस सहयोग में मजबूती आ रही है। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सबरीमला सोना घोटाला मामले में आज विशेष जांच दल एसआईटी ने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष पीएस प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व टीडीबी अध्यक्ष पर यह आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2025 में सबरीमला मंदिर से सोने की परत चढ़े पैनलों को मरम्मत के लिए चेन्नई स्थित एक फर्म को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा है कि अब से केवल नामित सरकारी अधिकारी ही ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर कहा है कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
2: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं, और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का, स्मरण करने का, और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को, अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के।
1: श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री को लाना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के लगभग 1.10 करोड़ उपयोगकर्ता हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन भी प्रभावित है। हमारी संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।
3: गुजरात में कई हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जिसमें खास करके दक्षिण और मध्य गुजरात के जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। नवसारी के खेरगाम में आज सुबह से शाम तक 16 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जबकि सूरत के उमरपाड़ा में 15 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। बाढ़ की परिस्थिति को देखते हुए उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने नवसारी पहुंचकर शीर्ष अधिकारियों के साथ डिजास्टर कंट्रोल रूम में आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा की है। राहत और बचाव युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, जहां एनडीआरएफ के जवान फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित आश्रय स्थानों में पहुंचा रहे हैं। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगले दो दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत में भी अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। विभाग के अनुसार कल कर्नाटक, तमिल

तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे और तेलंगाना में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। दिल्ली में कल बादल छाए रह सकते हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत आज रात ग्लासगो में होगी। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में, रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डेन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के विरुद्ध पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और इसके साथ ही समाचार संध्या

0: बहुत से हिस्सों में शदीद बारिश के बायस मामूल की जिंदगी में खलल पड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई है। 23वें नौरते मुश्तरका गेम्स आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नीट पेपर लीक मामले पर एहतजाज कर रहे तलबा से ये कहते हुए बात करने की अपील की है कि हुकूमत तमाम मामलात पर तबादला ख्याल करने के लिए तैयार है। मीडिया से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि जारी एहतजाज के तलबा नुमाइंदगान को पिछले 24 घंटों में बात करने की 4 मरतबा पेशकश की गई। उन्होंने एहतजाजी नौजवानों को बात करने के लिए दावत दी। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी वजीर JP नड्डा मुजाकरात के दौरान मौजूद रहेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि ये बातचीत मरकजी वजीर JP नड्डा की रिहायशगाह या उनके दफ्तर में खुले जहन के साथ की जा सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि बातचीत के बगैर कोई हल नहीं निकलेगा।
1: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री JP नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।

0: सकते हैं ना, तो डिबेट को कैसे रोक सकते हैं आप, वो चर्चा को ही रोकना चाहते हैं।
1: मरकजी वजीर और ऐवान के लीडर जगत प्रकाश नड्डा ने अपोजिशन की ये कहते हुए नुक्ताचीनी की कि उनका तर्ज अमल इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है और उन्हें इल्जाम लगाया कि अपोजिशन ना तो बहस के लिए तैयार है और ना ऐवान की कार्रवाई चलने देना चाहती है। अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अपोजिशन बहस के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने मुतालबा किया कि

0: मीटिंग की सदारत की। वज़ीरे आला ने बारिश से मुतासर अजला के कलेक्टरों को हिदायत दी है कि वो सैलाब से मुतासर और नशेबी इलाकों में राहत और लोगों को बाहर निकालने की कोशिशों को तेज़ करने को अव्वलिन तरजीह दें। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तूफानी बारिश ने गुजरात के बहुत से हिस्सों में मामूल की जिंदगी को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया है। जुनूबी और वस्ती अजला इस बारिश से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। नौसारी के खेड़गांव में 16 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि सूरत के अमरपाड़ा में आज शाम तक 15 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। वलसाड, भरूच और खेड़ा जिलों में भी शदीद बारिश की रिपोर्टें मौसूल हुई हैं। नौसारी में वजीर हर्ष संघवी ने आला हुक्काम के साथ कुदरती आफात के बंदोबस्त के कंट्रोल रूम में हंगामी तैयारियों का जायजा लिया। औरंगा और दमन गंगा जैसे तुगयानी पजीर दरियाओं ने हुक्काम को बहुत सी शाहराहें बंद करने पर मजबूर कर दिया। गोलवाड़ और उम्बेर गांव के दरमियान एक पुल पर सतह आब खतरे के निशान तक पहुंचने के बाद आज मगरबी रेलवे की खिदमात बुरी तरह मुतासिर हुई। इसके बाईस बहुत सी ट्रेनों को कलील मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। राहत

लेना बोरगोहिन दौलत मुश्तरका गेम्स 2026 में भारतीय टीम की क्यादत करेंगी। दूसरी जानब भारत ने इफ्तिताही तकरीब से पहले ही अपने तमगों की मुहिम का आगाज़ कर दिया है, क्योंकि ओलंपिक में तमगा हासिल करने वाली बॉक्सर लवलीना ने बाय मिलने के साथ ही सीधे खवातीन के 75 किलोग्राम के सेमीफाइनल में जगह बना ली। कुरानंदाजी में सिर्फ 5 खिलाड़ी होने की वजह से मुकाबला करने वाले 3 खिलाड़ी जिनमें लवलीना भी शामिल हैं को बराह रास्त आखिरी 4 सेमीफाइनल में पहुँचा दिया गया, जबकि बाकी 2 खिलाड़ी एक क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगी। लवलीना 31 जुलाई को सेमीफाइनल्स में तफाकी के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज़ करेंगी, जहां जीतने वाली खिलाड़ी को सोने के तमगे के मुकाबले में जगह मिल जाएगी। दौलत मुश्तरका गेम्स 2026 में सिर्फ 10 खेल होंगे, जो बिरमिंघम 2022 के मुकाबले 9 कम है। ये मुकाबले 8 मील के दायरे में 4 मकामात पर

0: Countrywide.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए सौर ऊर्जा से हरित हाइड्रोजन तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय सौर

0: जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। अब हरित हाइड्रोजन कैसे बनती है? हरित हाइड्रोजन बनाने के लिए हमें बिजली का इस्तेमाल करना होगा। आप पानी लेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है, अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उसमें, तो उससे हाइड्रोजन बनती है और निकलती सिर्फ ऑक्सीजन है, तो कोई पर्यावरण के लिए नुकसान नहीं। तो हमारा जो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, नेशनल हरित हाइड्रोजन मिशन जो
1: जी
0: आपने कहा, ये असल में हमारे राष्ट्रीय हरित ऊर्जा मिशन का एक्सटेंशन है एक तरह से। हमने उसी को आगे बढ़ाते हुए कि हम अपने इलेक्ट्रिसिटी को भी हरित कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ट्रांसपोर्ट को भी हरित कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इंडस्ट्री जहां हाइड्रोजन इस्तेमाल होती थी उसको भी हरित हाइड्रोजन से हम रिप्लेस करना चाह रहे
1: रेहन
0: हैं।
1: जी, जिस तरह से आपने तमाम चीजों को जोड़ा है, तो थोड़ा सा अगर पीछे अगर के बात करते हैं, तो सरकार का सोलर एनर्जी पर भी काफी फोकस रहा है कि सौर ऊर्जा को अधिकतम देश में बढ़ावा दिया जाए, और कई सारी योजनाएं भी सरकार ने लागू की हैं। तो आपको लगता है कि ये दोनों ही पैरेलल चलने वाली चीजें हैं कि सौर ऊर्जा में भी देश काफी प्रगति कर रहा है और आगे भी करेगा, और हरित ऊर्जा का एक मिशन तो हम अब लेकर के चल ही रहे हैं?
0: नहीं, ये दोनों एक दूसरे को एक तरह से पूरक हैं, एक दूसरे को समर्थन करने वाली, एक दूसरे की सहायता करने वाली
1: जी
0: थी। कैसे होंगी मैं आपको इसमें बताता हूँ। देखिए, हमने पिछले 10-12 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी से हम कहते हैं, जिसमें कि हम सोलर विंड इनको मानते हैं, उसके अंदर बहुत काम किया है और बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन है हमारे ऊर्जा सिस्टम में। जो सोलर हमारे पास 10-12 साल पहले 1,000 मेगावाट भी नहीं था, आज हम 180 गीगावाट, 180,000 मेगावाट से ऊपर चले गए हैं। और हमारे सामने एक बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड लक्ष्य है, 2030 तक हम कितना करेंगे, 35 तक, 2047।

0: और दूसरे हमने जो हाइड्रोजन की वजह से एमिशंस हो सकते थे उन्हें ख़त्म किया। इसके अलावा सोलर के साथ क्या है कि वो दिन में है, जितनी देर सूरज की रोशनी होगी उतनी देर आप बिजली पैदा कर सकते हो उससे। तो हम इस सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमारे पास दिन में बहुत सारी ऊर्जा होगी जो हम सोलर यानी सौर ऊर्जा से बिजली में बनाएंगे। तो अगर हम उसको, जो ऊर्जा हम उससे पैदा कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल करेंगे हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए, तो हम जो हमारा सिस्टम बढ़ा रहे हैं, हम और सौर ऊर्जा भी बनाते जाएंगे, उसके साथ लगाते जाएंगे, उसी को इस्तेमाल करके अगर और हम ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करेंगे तो ये हमें डबल बेनिफिट हुआ। तो ये दोनों एक दूसरे को समर्थन कर रहे हैं। ये तो सिर्फ पर्यावरण की बात हुई, लेकिन हमें एक अपनी ऊर्जा सुरक्षा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल के मामले में हम मोस्टली डिपेंडेंट थे यानी आयात के ऊपर। अब सौर ऊर्जा को कहीं से आयात नहीं करना है आपको, पवन ऊर्जा को कहीं से आयात नहीं करना, लेकिन उसके जो कंपोनेंट हैं, पैनल जो इस्तेमाल होते हैं, वो आपको बनाने, तो वो उसके ऊपर बड़ा काम हुआ है और पैनल में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं उस सेल में और दूसरे कंपोनेंट में। इसी तरह से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी पार्ट है, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइजर यूज होता है, जो मैंने बताया, जो पानी को कन्वर्ट करेगा, उसको लेके के यहीं देश में बने, उसके ऊपर ये मिशन का कंपोनेंट है, उस पर भी मिशन काम कर रहा है। और दोनों ही सेक्टर जो है ये रोजगार देने वाले भी हैं, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इनसे हो रहा है।
1: रेहन जी, अभी भारत में रिन्यूएबल एनर्जी समिट एंड एक्सपो 2026 का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन एक ऐसे समय पर हो रहा है जब देश स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री ने भी कुछ दिन पहले ही हरित हाइड्रोजन ट्रेन को भी झंडी दिखाई थी। तो इस सम्मेलन को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये केवल एक उपलब्धियों का साझा करने का मंच है, या फिर भविष्य की योजनाएं हैं, जो रोड मैप है उनको साझा करने की दिशा ये प्रदान करेगा?
0: ये अवसर दोनों चीजों के लिए होगा। पहली बात तो ये कि जिस तरह से हमने अपने ऊर्जा क्षेत्र में जिस तरह का परिवर्तन हम लाए हैं, ये ऊर्जा क्षेत्र में एक मिसाली परिवर्तन है। ऐसा एक डेवलपिंग कंट्री, जो सबसे पॉपुलेटेड कंट्री भी है, जिसको अपनी ऊर्जा जरूरतें भी पूरी करनी थी और साथ में

0: की दिशा ये प्रदान करेगा।
1: ये अवसर दोनों चीजों के लिए होगा। पहली बात तो ये कि जिस तरह से हमने अपने ऊर्जा क्षेत्र में जिस तरह का परिवर्तन हम लाए हैं, ये ऊर्जा क्षेत्र में एक मिसाली परिवर्तन है। ऐसा एक डेवलपिंग कंट्री जो सबसे पॉपुलेटेड कंट्री भी है, जिसको अपनी ऊर्जा जरूरतें ही पूरी करनी थी और साथ में ये पर्यावरण कह लीजिए, ऊर्जा सुरक्षा कह लीजिए, उन दोनों को देखते हुए जितनी तेजी से हमने ये बदलाव किया है, ये बहुत सारे देशों के लिए इससे क्या प्रेरणा का स्रोत हो सकता है, सीखने का स्रोत हो सकता है, या वो इसको अपने यहाँ पे भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि क्योंकि इसमें बहुत काम हो चुका है, लेकिन आगे सालों, जैसे मैंने बताया, इसमें

हो सकता है, सीखने का स्रोत हो सकता है, या वो इसको अपने यहाँ पे भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि क्योंकि इसमें बहुत काम हो चुका है, लेकिन आगे सालों, जैसे मैंने बताया, इसमें हमारे आगे के सारे टारगेट सेट हैं, जिसे कहना चाहिए हमारा जो विजन और पाथ है वो क्लियर है, तो ये उसके लिए भी मौका है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, किन चीज़ों को हम और मजबूती देंगे। और तीसरी बात यह कि ये कोई भी जो क्षेत्र है, वैसे भी ऊर्जा क्षेत्र, ग्लोबल वार्मिंग, नेट ज़ीरो, ये सब बहुत बड़े काम हैं, इसमें

कि स्टील की बात है, फर्टिलाइजर की बात है, रिफाइनरी है, शिपिंग है, भारी परिवहन, जैसे कि ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करते हैं, इन क्षेत्रों के लिए बहुत ही उज्ज्वल भविष्य देखा जा रहा है इस ईंधन का, कि ये ईंधन हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होगा, लागत कम आएगी, रिस्पॉन्स ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, और आगे चल करके जैसा आपने बताया था कि डिपेंडेंसी वाली बात जो है वो उसमें काफी कमी आएगी। आज जो आप देख रहे हैं तमाम चीजें, तो आपको क्या लगता है कि हमारा आत्मनिर्भर होना कितना आवश्यक है और साथ ही हम

बाद फिर 2014 और 15 के बाद जो हमारा ना वो एक तरह का एक्सपेंशन फेज था। आज आप देखें कि सोलर एनर्जी एक आम तौर पर एक्सेप्टेड सिस्टम है, लोग अपने आप ही लगा रहे हैं, सरकार की मदद है, किसानों और इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को जो घरों में लगा रहे हैं। और आप देखो 50 लाख के करीब तो रूफटॉप सोलराइजेशन हो गए, किसान भी लगा रहा है। तो ये अब हम इस दौर में आ गए हैं कि सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा हमारे मेन सिस्टम रहेंगे और हमारे सिस्टम इसके इर्द गिर्द ही डेवलप।

0: आम लोगों में उसकी पूरी तरह पहुंच हो जाए, उसमें उसके पर्यावरण के एंगल के साथ साथ उसके पैसे का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। लोग ये भी देखते हैं, जैसे हमने सौर ऊर्जा को किया, आज वो सबसे इकोनॉमिक, सबसे कम कॉस्ट वाली ऊर्जा स्रोतों में से है, तो वो पिछले जो 10-12 सालों की जो डेवलपमेंट थे उसी से हुआ। इसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन में क्या है कि अभी कोशिश ये है कि इसकी कॉस्ट ग्रे हाइड्रोजन के बराबर या उससे भी कम लाई जा सके। उसी की तरफ ये घरेलू उत्पादन जो आपने भी बताया PLI और सब स्कीम्स।
1: Countrywide.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बिना समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वे खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
1: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का ये बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों को त्वरित अदालतों के माध्यम से कड़ी सजा दी जाएगी। संसद परिसर में श्री गोयल ने विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया।
2: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं, इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
0: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कोट रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी

0: त्रिवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर कहा कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने ये बात कही। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है, कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत अब से कुछ ही देर में ग्लासगो में होगी। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाई के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Union Minister Dr. Jitendra Singh has appealed to the protesting students of the NEET paper leak issue to come for talks, saying government is ready for discussions on all issues. Talking to media, the minister said that in the last 24 hours, as many as 4 offers were made to the student representatives of the ongoing protests for a dialogue. He gave a standing invitation for discussions to the protesting youth, adding that Union Minister J.P. Nadda and he will be present with the dialogue. He also informed that the talks can be held with an open mind at the residence of Union Minister J.P. Nadda or at his office. He added that without a dialogue, a solution will not be found.
2: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं।
3: We are always ready for dialogue. The doors of the government are always open and you are welcome to engage in discussions at any time as per your convenience. We are prepared to discuss every issue including those related to the movement as well as any other matters of concern. The Union Health Minister and Senior Leader Shri J.P. Nadda will hold discussions and I will also be present during the meeting.
2: इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं।
1: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस दैट द सेंटर विल सेट अप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स टू एंश्योर स्विफ्ट एंड स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर दोज इन्वॉल्वड इन नीट पेपर लीक्स एंड असर्टिंग दैट प्रोटेक्टिंग स्टूडेंट्स फ्यूचर रिमेन्स द गवर्नमेंट्स टॉप प्रायोरिटी। इन अ सोशल मीडिया पोस्ट द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ द यूथ ऑफ द कंट्री। हिज स्टेटमेंट कम्स अमिड ऑनगोइंग स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट एट दिल्ली जंतर मंतर ओवर नीट पेपर लीक केस। The Prime Minister said he has directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. Both the Houses of Parliament have been adjourned for the day following the opposition protest over various issues, including the NEET paper leak case and student protests. Meanwhile, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appealed to the opposition parties, particularly the Congress, to cooperate in holding a discussion on the NEET paper leak issue. He added that the government has already conveyed its willingness to hold a discussion on the issue in both houses, as per the date and duration desired by the opposition. Mr. Rijiju appealed to the Congress party not to impose conditions, stating that such conditions may be seen as an attempt to avoid discussion. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman today said that the government is highly sensitive to the concerns of students, particularly over competitive examination paper leaks. Talking to media, Ms. Sitharaman said that the government has acted swiftly by arresting those involved in the NEET paper leak issue. She added that Prime Minister Narendra Modi's announcement of fast-track courts is intended to reassure students and their families that those responsible for undermining the sanctity of the examinations will be punished swiftly. In Gujarat, heavy rainfall continues to lash several parts of the state, especially in South Gujarat region, disrupting normal life, inundating towns and villages, and affecting rail and road transport. Relief and rescue operations are in mission mode in rain-affected districts including Valsad, Surat and Navsari. Prime Minister Narendra Modi today spoke to Gujarat Chief Minister भूपेंद्र पटेल ओवर द फोन.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसमें आज आपने सुना सुमिता दत्ता की कुछ गज़लें। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर, अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और अब वक्त है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का, जिसमें आज आप सुनेंगे नीता माथुर की गाए राग मियां मल्हार। तबले पर संगत दे रहे हैं शांति भूषण झा, और हारमोनिया पर संगत दे रहे हैं ललित सिसोदिया। तो लीजिए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में नीता माथुर को।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नीता माथुर के गाए राग मियां मल्हार को। तबले पर संगत दे रहे थे शांति भूषण झा और हारमोनियम पर संगत दे रहे थे ललित सिसोदिया। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी।
2: विषय पर अपनी बात।
1: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बिना समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वे खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
3: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का ये बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि

0: पेपर लीक मामले के आरोपियों को त्वरित अदालतों के माध्यम से कड़ी सजा दी जाएगी। संसद परिसर में श्री गोयल ने विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया।
1: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
0: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा स्थापन के बाद इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया की बुखारेस्ट पहुंची। किटोरोसिनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हो रहा है। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहली 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। यूनियन मिनिस्टर डॉ जितेंद्र सिंह हैज अपील्ड टू द प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स ऑफ द एनईईटी पेपर लीक इशू टू कम फॉर टॉक्स, सेइंग गवर्नमेंट इज रेडी फॉर डिस्कशंस ऑन ऑल इश्यूज। टॉकिंग टू मीडिया द मिनिस्टर सेड that in the last 24 hours, as many as 4 offers were made to the student representatives of the ongoing protest for a dialogue. He gave a standing invitation for discussions to the protesting youth, adding that Union Minister J.P. Nadda and he will be present during the dialogue. He also informed that the talks can be held with an open mind at the residence of Union Minister J.P. Nadda or at his office. He added that without a dialogue, a solution will not be found.
1: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं।
0: वी आर ऑलवेज रेडी फॉर डायलॉग द डोर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर ऑलवेज ओपन एंड यू आर वेलकम टू एंगेज इन डिस्कशंस एट एनी टाइम एज पर योर कन्वीनियंस। वी आर प्रिपेयर्ड टू डिस्कस एवरी इशू इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू द मूवमेंट एज वेल एज एनी अदर मैटर्स ऑफ कंसर्न। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एंड सीनियर लीडर श्री जे पी नड्डा विल होल्ड डिस्कशंस विद यू एंड आई विल ऑल्सो बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द मीटिंग।
1: इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं।
0: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड दैट द सेंटर विल सेट अप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स टू इंश्योर स्विफ्ट एंड इट्स स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर दोज इन्वॉल्वड इन एनईईटी पेपर लीक्स एंड असर्टिंग दैट प्रोटेक्टिंग स्टूडेंट्स फ्यूचर रिमेन्स द गवर्नमेंट्स टॉप प्रायोरिटी। इन सोशल मीडिया पोस्ट द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ यूथ ऑफ द कंट्री। हिज स्टेटमेंट कम्स अमिड ऑनगोइंग स्टूडेंट प्रोटेस्ट at Delhi's Jantar Mantar over NEET

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: तो दोस्तों, आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और फटाफट से हमें मेल करिए हमारे ipradiodelhi@gmail.com पर और अपनी फरमाइश भेजिए जो गीत आप सुनना चाहते हैं। फिलहाल सुनते हैं आप ही की भेजी गई हुई एक फरमाइश फिल्म हमराज से।

तो श्रोता हमारे पास भर भर के संदेश आए हैं। पहला संदेश है सेक्टर 68 से मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। अगला संदेश है ट्विंकल खन्ना का।

0: राजकोट से, इनके साथ है रुचि गुप्ता और उमा गुप्ता। और श्रोताओ, जो अगला संदेश है वो है यासीन अनजान का, और इनके साथ है साइमा नवाज़, हसन नवाज़, बापू अहद, मिफ्रा नवाज़, बेबी चाहत, सादिया, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं गिरिडीह झारखंड से। अगला संदेश है
1: फिल्म सिटी मुंबई से
0: अदीबा
1: नाज
0: नाज़
1: आलिया और शबा अंसारी का। और जो अगला संदेश आया है हमारे पास वो आया है मारहरा दरवाज़ा एटा से, नवी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी और रसीद वारसी जी का।
0: और श्रोताओ, जो अगला संदेश है वो है मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक, लुबना और यश मंसूरी का। यह हमें लिखकर भेज रहे हैं बाजार रोड मुंगीसापुर से। अगला संदेश है सुखविंदर सिंह जौड़ा का, और यह हमें लिखकर भेज रहे हैं कृष्णा पार्क दिल्ली से, इनके साथ है सिटी दीवाना।
1: और जो अगला संदेश आया है हमारे पास वो आया है नागलोई दिल्ली से मदन चक्रवर्ती और राजेंद्र चड्ढा जी का।
0: अगला संदेश है स्वीटी जौरा का, और इनका संदेश हम
1: हम ले चुके हैं
0: जी
1: पहले
0: हाँ
1: ही।
0: अगला संदेश है राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। अगला जो संदेश है वो है मल्होत्रा टीडी मोहाली, इनका संदेश भी हम पहले ही ले चुके हैं।
1: और जो अगला संदेश आया है हमारे पास दीक्षा, वो आया है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गुहाटकर, श्रीमती सरिता गुहाटकर, प्रिंस एकांश गुहाटकर, बदलापुर मुंबई से प्रणीता गुहाटकर, सिद्धांत गुहाटकर, अर्जुन गुहाटकर, टुक टुक जी का।
0: और जो अगला संदेश है वो है सुदर्शन शाह का, और इन्होंने हमें भेजा है पद्मा टॉकीज नेपा नगर से, इनके साथ है प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। तो श्रोताओं, फिलहाल पढ़ेंगे आगे भी संदेश, लेकिन इससे पहले सुनते हैं अगला गीत।

0: दीक्षा, अगला जो हमारे पास संदेश आया है वो आया है ग्राम पंजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक आलोकिक चंसोलिया जी का। और अगला संदेश है पुराना तालाब डुमराव से वल्ली उल्ला अंसारी, अस्मा नाज अंसारी और शबनम बानो, जेल रोड बक्सर से राज एस डी अंसारी और फातिमा नाज जी का।
1: और जो अगला संदेश है वो है बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद खंडवा मध्य प्रदेश से बेबी शालिया डावर, बेबी हलीमा डावर और बेबी जिक्रा डावर, परदेसीपुरा खंडवा से शेख सैयद रही और अनस भाई। अगला जो संदेश है वो है अब्दुल गफर का और इनके साथ हैं जियाउल हक डावर और अब्दुल हक डावर, और जो हमें लिखकर भेज रहे हैं नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से। अगला संदेश जो है वो है फागुराम यादव का, संबलपुर कांकेर से इनके साथ है ज्योति यादव ओजस्वी यादव।
0: और जो अगला संदेश आया है दीक्षा हमारे पास वो आया है अस्तपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी जी का, और बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर और रिजवाना परवीन जी का।
1: और जो अगला संदेश है जो आया है हमारे पास वो आया है राजीव शर्मा का और ये लिखकर भेज रहे हैं कि प्लीज़ हमारे मैसेज को शामिल करें। और जो अगला संदेश है वो है हिमकेश्वर साहू का, भाटापारा छत्तीसगढ़ से इनके साथ एक करण राहुल साहू चंपा साहू। अगला जो संदेश है पूनम गजनेजा जी का है और इनके साथ है सुरेश विशाल प्रिया दिशानी और निमित।
0: जी हाँ, और दीक्षा अगला संदेश आया है हमारे पास राजकोट गुजरात से रश्मि झरना और भरत कुमार जी का। देखो जो अगला संदेश है दीक्षा वो लिखते हैं, नमस्कार दीक्षा और शिल्पा बहन जी, हमारा आपको भी बहुत प्यार भरा नमस्कार। और ये संदेश आया है चंडीगढ़ सिटी सतीश अनेजा और विमला अनेजा जी का।
1: और ये हमें राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी श्रोताओं को भी इसके लिए बहुत सारी बधाइयाँ।
0: अगला संदेश है एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे और स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी देविका चौधरी।
1: और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं कि हमें किसी भी फिल्म का गीत सुनवाए आर
0: जी
1: कुमार,
0: बिल्कुल।
1: जो अगला संदेश है वंडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा।

0: देखो दीक्षा, आप जो अगला संदेश हमारे पास आया है वो लिखते हैं हमें आदरणीय जी, दुआओं में हमेशा याद रखना। दीक्षा, एक बात तो मैं ये कहूँगी कि हम अपने श्रोताओं को हमेशा दुआओं में याद रखते हैं और यह उम्मीद भी करते हैं कि वो भी हमें अपनी दुआओं में याद रखें। ये संदेश आया है हमारे पास अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक जी का।
1: जी, और जो अगला संदेश है वो है किशन सपकाल का, सपकाल का इनके साथ है आशा, सोनिया सपकाल, विशाल सपकाल, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं शास्त्री नगर बीट शहर से। अगला जो संदेश है वो है स्वर्ण सिंह गिल का, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से।
0: और जो अगला संदेश आया है हमारे पास बिहार स्टेट डुमराव से अस्मा अंसारी, आमना परवीन, टुक टुक अंसारी, लड्डू अंसारी, वल्ली उल्ला अंसारी, और गाजियाबाद से
1: जो संदेश है वो है सीमा गांधी, मनोहर लाल गांधी, डोंडी छत्तीसगढ़ से मास्टर शमसुल हक और राधिका पूजा डोमीन का।
0: जी,
1: अगला जो संदेश है वो है ओम गायक गायकवाड़ का, और इनके साथ है आविष्कार, अनामिका, प्राणिता, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं तामसा रोड हदगांव महाराष्ट्र से।
0: जी, और जो अगला संदेश है हमारे पास वो है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर जी का।
1: जी, जो अगला संदेश है वो है हमारे पास काफ़ी बहुत सारे रिपीटेटिव संदेश आ रहे हैं हमारे पास, और जो अभी जो संदेश आया है वो है दिलावर खान का, और इन्होंने लिखा है जो आवाज़ जन जन को जोड़ दे वही सच्चे प्रसार की पहचान है, भारतीय प्रसार दिवस पर संचार की इस अमूल्य विरासत को नमन, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो दीक्षा, अगले जो संदेश हैं हम लेते हैं, लेकिन उससे पहले अपने श्रोताओं को गीत सुनवा दें।
1: जी जी

0: दीक्षा, अगला जो संदेश हमारे पास आया है वो आया है फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से। नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद और गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबीहा मुजावर और मिखाइल मुजावर, जैनब मुजावर जी का।
1: अगला जो संदेश है वो हाजी मजहर जी का है और इनके साथ है राजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, आज़ाद अली अनवर, रिजवान परवीन बहादुरपुरगंज गाजीपुर से। जो अगला संदेश है वो प्रेम छत्तीसगढ़ से, शंकरदेव जालोटिया, प्रभा जालोटिया और बिहार से शफी उल्लाह अंसारी और समी उल्लाह अंसारी। अगला संदेश है,
0: अगला संदेश आया है हमारे पास मुंबई फिल्म सिटी से मोहम्मद सलीम और निगहत परवीन जी का। कोहात से हाशिम आज़ाद और कासिम आज़ाद जी का।
1: जो अगला संदेश है रेडियो लव से डोंडी लोहारा से प्रभा जाटव, राधिका और शनि चौक खंडवा से अनीता कुमारी और दुर्गा कुमारी
0: जी। और जो अगला संदेश आया है वो आया है
1: शीशपाल जी का, जो हमें लिखकर भेज रहे हैं गाजियाबाद से
0: जी। और जो अगला संदेश आया है दीक्षा, वो आया है रेडियो के दीवाने ग्रुप दिल्ली से रेशमा अंसारी, निशा और जालंधर से देवशंकर जटोलिया जी का।
1: ट्विंकल खन्ना का अगला संदेश है और इनके साथ है रुचि गुप्ता और उमा गुप्ता।
0: और जो अगला संदेश आया है वो आया है हमारे पास जी, ये जो आया है ये आया है हमारे पास जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा वे।

0: दीक्षा, अगला जो संदेश हमारे पास आया है वो आया है गौरव कुमार जी का और रिया प्रकाश का। ये हमें लिखते हैं रोहिणी सेक्टर 7 दिल्ली से।
1: और जो अगला संदेश है वो है नरेंद्र सुथार जी का और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं नोहर राजस्थान से। मनोज सुथार, रेडियो पर आवाज कट कट के आ रही है, हो सकता हो कि
0: देखो आज ना दीक्षा मुझे लगता है नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है
1: जी। और जो अगला संदेश है वो रामेश्वर का है और इन्होंने जो संदेश लिखा है, आपकी फरमाइश कार्यक्रम प्रस्तुत करना, दोनों बहनों को सादर प्रणाम और सदा खुश रहो और खुशियां बांटो। बहन दीक्षा जी, मेरा मेल जरूर शामिल कर ले, हम काफी दिनों से मेल कर रहे हैं।
0: देखिए देर ना करते हुए हमने फटाफट से आपका मेल शामिल कर लिया है
1: जी, और आपकी दुआओं के लिए, आप सबकी दुआएं हम सब पर बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो अगला संदेश है वो है कौशल्या जोशी का और सुरेश जोशी, सोनाली जोशी हमें लिखकर भेज रहे चंद्रनगर सहारनपुर से और जेल रोड रायगढ़ से। प्रभा जाटव और आशु जाटव हमें लिखकर भेज रहे हिसार से, गुंजन और सृजन।
0: अगला जो संदेश आया है हमारे पास वो आया है ऑक्सीजन पार्क नगर अमरावती महाराष्ट्र से, सिद्धार्थ गोडाने, अर्चना गोडाने, प्रणय कुमारी प्रसिद्धि और हीरामन शेंडे का।
1: जी, और जो अगला संदेश है मानेवाड़ा रोड नागपुर, देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, सुदर्शन मुखी संदेश हमें भेज रहे हैं, इनके साथ है अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से।
0: अगला जो संदेश आया है वो आया है हमारे पास पंचकुला से, आशु चुग, अश्वनी चुग और गोविंद चुग जी का।
1: रामेश्वर जी हमें लिखकर भेज रहे हैं, इनका संदेश हम पढ़ चुके हैं। और जो अगला संदेश है वो प्रकाश वर्मा का है और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं छत्तीसगढ़ पलारी से, इनके साथ है प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा
0: जी। और अगला संदेश है नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे और जयश्री महत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा।
1: बब्लीश पनवार हमें लिखकर भेज रहे हैं, पनवार हमें लिख के भेज रहे हैं, इनके साथ है डैनी पनवार, मनीष पनवार, गांधी चौक बाड़मेर से।
0: अधीक्षा आप सुनाते हैं एक गीत।

0: दीक्षा, अगला जो संदेश आया है हमारे पास वो आया है बलौदा छत्तीसगढ़ से, दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल जी का।
1: और जो अगला संदेश है वो स्वर्ण सिंह का है और इनके साथ है दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अभिराज सिंह, गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से, गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी, ये कोई भी गीत सुनना चाह रहे हैं। और जो अगला संदेश है वो बसंत कुमार सिन्हा का है और इनके साथ है अजय कुमार गुप्ता, नन्हे मुन्ने, अनविका, तनुश्री। श्रोताओ, क्योंकि अब समय की थोड़ी कमी है और जाने से पहले हम आपको एक गीत और सुनवाना चाह रहे हैं, तो आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: तो दोस्तों वक्त हो गया है इस कार्यक्रम से विदा लेने का। इसी के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
1: और आज हम आपके साथ थे शिल्पा गोस्वामी
0: और दीक्षा।
1: आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर्स अर्थात 809 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 12 बजने को है, अब समाचार होंगे। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होंगे। सुबह के 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज़ 24/7 पर हमारे प्रसारण जारी है। जय हिंद।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने बताया कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बिना समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वे खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
2: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंची। कोटरोसिनी पैलेस में उनका स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया की राष्ट्रपति निकोस डैन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की, जिसमें द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO में खुले, समावेशी, पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जिनेवा में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा के अंतिम सत्र में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि WTO में सुधार विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए।

0: समीक्षा बैठक में WTO के 68 सदस्य देशों ने भारत की व्यापार नीतियों पर अपने विचार रखे। श्री अग्रवाल ने सभी सदस्य देशों का सक्रिय भागीदारी और भारत की व्यापार नीतियों में रुचि दिखाने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। पुलिस के अनुसार ये हैंडल छात्रों और युवाओं को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठी जानकारी फैला रहे थे। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी जानकारी पर विश्वास करने या उसे साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जाँच जरूर करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, 12 खंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालन, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने इसे सस्ती, पारदर्शी और चालक हितेशी सेवा बताया। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हो रहा है। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. Union Minister Dr. Jitendra Singh has appealed to the protesting students of the NEET paper leak issue to come for talks, saying government is ready for discussions on all issues. Talking to media, the minister said that in the last 24 hours, as many as 4 offers were made to the student representatives of the ongoing protest for a dialogue. He gave a standing invitation for discussions to the protesting youth, adding that Union Minister J.P. Nadda and he will be present during the dialogue. He also informed that the talks can be held with an open mind at the residence of Union Minister J.P. Nadda or at his office. He added that without a dialogue, a solution will not be found.
2: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं।
1: वी आर ऑलवेज रेडी फॉर डायलॉग द डोर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर ऑलवेज ओपन एंड यू आर वेलकम टू एंगेज इन डिस्कशंस एट एनी टाइम एज पर योर कन्वीनियंस वी आर प्रिपेयर्ड टू डिस्कस एवरी इशू इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू द मूवमेंट एज वेल एज एनी अदर मैटर्स ऑफ कंसर्न द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एंड सीनियर लीडर श्री JP नड्डा विल होल्ड डिस्कशंस विद यू एंड आई विल ऑल्सो बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द मीटिंग
2: इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं।
1: Earlier, Prime Minister Narendra Modi announced that the center will set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in NEET paper leaks and asserting that protecting students' future remains the government's top priority. In a social media post, the Prime Minister said that nothing is more important than the welfare and future of youth of the country. His statement comes amid ongoing students' protest at Delhi's Jantar Mantar over NEET paper leak case. The Prime Minister said he has directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. Both the Houses of Parliament were adjourned yesterday following the opposition protest over various issues, including the NEET paper leak case and student protests. Meanwhile, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appealed to the opposition parties, particularly the Congress, to cooperate in holding a discussion on the NEET paper leak issue. He added that the government has already conveyed its willingness to hold a discussion on the issue in both the houses as per the date and duration desired by the opposition. Mr. Rijiju appealed to the Congress party not to impose conditions, stating that such conditions may be seen as an attempt to avoid discussion. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that the government is highly sensitive to the concerns of students, particularly over competitive examination paper leaks. Talking to media, Ms. Sitharaman said that the government had acted swiftly by arresting those involved in the NEET paper leak issue. She added that Prime Minister Narendra Modi's announcement of fast-track courts is intended to reassure students and their families that those responsible for undermining the sanctity of examinations will be punished swiftly. The Delhi police has informed that 480 Pakistan-based social media handles involved in coordinated misinformation campaigns have been identified and blocked. The police said that these social media handles were involved in spreading rumors and false claims to mislead the students and the youth. They urged the people always to verify information before trusting and sharing them. President Draupadi Murmu held delegation-level talks with her Romanian counterpart Nicosor Dan at Bucharest yesterday. In a joint press meet after the talks, President Murmu said several MOUs were signed between the two countries to strengthen cooperation in science and technology and sports, further deepening the bilateral partnership. President Murmu reached Romania yesterday on the final leg of her three-nation visit. After her arrival at the Cotroceni Palace, President Murmu was accorded a guard of honor. The 23rd Commonwealth Games, that is CWG, have officially begun in Glasgow, Scotland. The opening ceremony is underway. Teams from 74 nations will participate in the 10-day event. Olympic medalist Neeraj Chopra, Meerabai Chanu and Lovlina Borgohain are set to represent India at the CWG 2026. Meanwhile, India have opened their medal tally at the Commonwealth Games before the opening ceremony as the Olympic medalist boxer Lovlina moved straight into the women's 75kg semi-finals after receiving a bye. And that is the end of this news bulletin.
3: यह आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। सुनते हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी की संगीत में कार्यक्रम सुरों का सफरनामा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अल्पना और यह सुहाना सफर आज समर्पित है उस आवाज को जिसने प्रेमी दोस्ती, जुदाई, उम्मीद और जिंदगी के हर रंग को अपनी गायकी में से यादगार बना दिया। जी हाँ, वह आवाज़ थी के यानी कि कृष्ण कुमार कुंथ की। जी हाँ, 23 अगस्त 1968 को दिल्ली में जन्मे के ने कभी संगीत को औपचारिक शिक्षा नहीं ली, लेकिन अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर वे भारतीय फिल्म सिनेमा के सबसे प्रिय गायकों में शामिल हुए। उनकी आवाज़ में ऐसी सादगी और भावनात्मक गहराई थी कि हर गीत सीधे दिल तक पहुंच जाता था। आइए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं उस गीत से जिसने उन्हें हर घर में पहचान दिलाई। जी हाँ, आवाज़ केके की और फिल्म है हम दिल दे चुके सनम।

जी हाँ, कितना खूबसूरत गीत और कितनी प्यारी आवाज़। मुंबई आने से पहले केके ने लगभग 8 महीने होटल में सेल्स एग्जीक्यूटिव की नौकरी की, और लेकिन उनका अब सपना सिर्फ एक था, गायक बनने का। जी हाँ, और उसके लिए वो हर पल तैयार थे। उन्होंने लगभग 3500 से अधिक विज्ञापन जिंगलों में गाया, और इन्हीं जिंगल्स ने उन्हें संगीतकारों तक पहुंचाया, और फिर बॉलीवुड के दरवाजे उनके लिए खुल गए। तो अगला गीत सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत गीत है ये फिल्म का, और ये भी केके की आवाज़ में। जैसे कि आप जानते हैं कि ये शो है समर्पित बहुत ही अच्छे सिंगर केके के नाम, तो गैंगस्टर फिल्म से हमने ये गीत चुना है, सुनते हैं।

साथियों, आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल और मैं हूं अल्पना और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा, जिसमें आपको हम सुनवा रहे हैं जादुई आवाज के मालिक के कुछ प्यारे प्यारे गीत और उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम को और बताते हैं कि केके की प्रेम कहानी भी बेहद खूबसूरत थी। जी हाँ, उन्होंने अपने बचपन की दोस्त ज्योति कृष्णा से विवाह किया था और दोनों स्कूल के दिनों से ही एक दूसरे को जानते थे। उनके दो बच्चे थे, नकुल कृष्णा और तामारा। जी हाँ, लोकप्रियता के बावजूद भी केके ने अपने परिवार को हमेशा लाइमलाइट से दूर रखा। वे कहा करते थे कि मंच की चमक से ज़्यादा उन्हें अपने परिवार की मुस्कान प्रिय है। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं फिल्म सॉरी भाई से केके की आवाज़ में।

साथियों, 2000 के दशक में रोमांटिक गीतों की जब भी बात की जाएगी तो केकर का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। उनकी आवाज़ की मासूमियत, अपनापन और गहराई आज भी सबके दिलों पर राज कर रही है। जी हाँ, केके ने हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, मराठी और गुजराती सहित कई भाषाओं में गीत गाए। उन्होंने भारत ही में नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देशों में लाइव कॉन्सर्ट्स किए और उनका एल्बम पल भारतीय इंडी पॉप संगीत का इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। तो चलिए एक और गीत फिल्म तुम मिले से, जो कि 2009 का प्रोडक्शन है और प्रीतम का संगीत है इसमें और बोल हैं सैयद कादरी के, तो सुनते हैं ये

इसने। जी हाँ, कहते हैं ना, जिनकी आवाज़ दिलों में उतर जाए उन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं होती। तो अगला गीत फिल्म द ट्रेन से।

जिया केकी की आवाज़ हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा रही और उन्होंने कभी सफलता को सिर पर नहीं चढ़ने दिया। वे मंच पर भी उतरे उतने ही सहज रहते थे जितने कि परिवारों के बीच और साथियों के बीच। तो अगला गीत सुनते हैं केकी की फिर से आवाज़ में, और ये बहुत ही प्यारा गीत है लाइफ इन मेट्रो फिल्म से।

साथियों 31 मई 2022 को कोलकाता के नजरुल मंच में लाइव प्रस्तुति करने के बाद के इस दुनिया को अलविदा कह गए। किसी कलाकार के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि वो अपनी अंतिम सांसें अपने श्रोताओं के लिए के बीच में गया हो। जी हाँ, फनकार कभी दुनिया से नहीं जाती, उनकी आवाज़ें समय से आगे निकल जाती हैं। तो चलिए अगला एक और खूबसूरत गीत फिल्म जिस्म 2 से।

साथियों, जब भी बात होती है दोस्ती की तो आपको केके का एल्बम यारो याद आता है, और प्यार की बात हो तो तू ही मेरी शब है गीत याद आता है। जी हाँ, केके की आवाज़ हमारे दिलों को में हमेशा जीवित रखे रहेगी। और इसी भावना के साथ पेश है कार्यक्रम का अंतिम गीत, फिल्म साया से। बहुत ही प्यारा गीत है जिसमें केके के साथ श्रेया घोषाल की भी आवाज़ आपको सुनाई देगी। अनु मलिक का संगीत है।

साथियों, आज के शुरू के सफरनामा में हमने याद किया एक ऐसी गायक को जिसकी आवाज़ ने हर भावना को सुरों में ढाल दिया। सुर बदल जा सकते हैं, दौर बदल सकते हैं, लेकिन कुछ आवाज़ें हमेशा अमर रहती हैं और के उन्हीं अमर आवाज़ों में से एक हैं। इसी के साथ मुझे यानी अल्पना को अनुमति दीजिए इस शुरू के सफरनामा के साथ छोड़े जा रही हूँ इस प्यारे से गीत के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफ़रनामा। यह आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 1 बजने को है। आप सुनिए पहले हिंदी में फिर अंग्रेज़ी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। नीट पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 महीनों में इस मामले में कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना था कि छात्रों का साल बर्बाद ना हो और परीक्षाएं जल्द आयोजित की जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक एक गंभीर मुद्दा है, जिससे लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों को परेशानी हुई है। उन्होंने बताया कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और उन कड़ी सजा के प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल में चर्चा होगी और सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संसद के अगले सप्ताह के सत्र में सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने का प्रयास करेगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट प्रश्न पत्र लीक मामले, छात्र विरोध प्रदर्शनों और अन्य विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के वर्तमान सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। TK अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव किटकिथिला श्रीनिवास को उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। केशव चंद्र को खान मंत्रालय का सचिव बनाया गया है, जबकि चंद्रभूषण कुमार श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव होंगे। सुशील कुमार लोहानी को पशुपालन और डेयरी विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। सत्येंद्र सिंह को शहरी विकास विभाग का सचिव और डी थारा को राजधानी विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। पीयूष गोयल को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव नियुक्त किया गया है। इन सभी नियुक्तियों को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंची। कोट्रोसेनी पैलेस में उनका स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की, जिसमें द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO में खुले, समावेशी, पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जिनेवा में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा के अंतिम सत्र में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि WTO में सुधार विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए। समीक्षा बैठक में

डब्ल्यूटीओ के 68 सदस्य देशों ने भारत की व्यापार नीतियों पर अपने विचार रखे। श्री अग्रवाल ने सभी सदस्य देशों का सक्रिय भागीदारी और भारत की व्यापार नीतियों में रुचि दिखाने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालन, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, अंदरप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। अभी अभी जानकारी मिली है कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मेदांता अस्पताल में श्री वांगचुक से मुलाकात कर अनशन तोड़वाया। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई कस्बे और गाँव जलमग्न है तथा रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हो रहा है। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गोल्डन एरा फिल्म संगीत की सुनहरी। जी हाँ, इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं ओल्ड हिंदी फिल्म गीत और जिसे कि हम गोल्डन एरा के गीत कहते हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें उस सुनहरे पलों की तो उस समय इतने प्यारे प्यारे गीत कंपोज किए गए कि आज भी उन गीतों को सुनूं तो वही ताजगी नज़र आती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ जिसकी में आवाज़ से सजाया है लता मंगेशकर ने, बोल है शैलेंद्र के और संगीत है शंकर जयकिशन का। फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से हमने ये गीत चुना है।

और अगला गीत सुनते हैं फिल्म दिल अपना, और प्रीत प्राई से भी आप ये गीत सुन रहे थे। और अगला गीत जो हमने आपके लिए चुना है वो है आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म घूंघट सी।

0: और लीजिए अगला गीत पेश है फिल्म मंजिल से, आवाज़ गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की। बोल है मजनू के और संगीत से सजाए है SD बर्मन ने।
1: मिले प्यासे प्यासे कुछ हम

कुछ तुम क्या हो जो घटा खुल के बरसे रुम झुम रुम झुम।

अली जी, अगला गीत पेश है मुकेश लता मंगेशकर की आवाज़ में, संगीत से सजाए शंकर जयकिशन ने और शैलेंद्र के बोल हैं, फिल्म बोल हैं आ अब लौट चलें। फिल्म है जिस देश में गंगा बहता है, होती है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे गोल्डन एरा के फिल्म गीत, और इन्हीं सुनहरे गीतों को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फिल्म बरखा से गीत, आवाज़ लता मंगेशकर और मुकेश की।

लीजिए पेश अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म दिल भी तेरा तुम भी तेरे, माफ़ करिएगा, दिल भी तेरा हम भी तेरे।

0: पाउडर मांगता है।
1: मेम साहब, इधर तो इंडिया का माल मिलता है। हाँ, खालिस हिंदुस्तानी।
0: हिंदुस्तानी जी,

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम की सुनहरी गोल्डन एरा की फिल्म संगीत। 2 बजने को है, अब लीजिए सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले पर एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले 2.5 महीनों में इस मामले में कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि मामले में गुनहगारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना था कि सरकार की छात्रों का शैक्षणिक वर्ष बर्बाद ना हो और परीक्षाएं जल्द आयोजित की जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक एक गंभीर मुद्दा है, जिससे लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों को परेशानी हुई है। उन्होंने बताया कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़ी सजा के प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल में चर्चा होगी और सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संसद का दूसरा सप्ताह शुरू होने पर सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने का पूरा प्रयास करेगी। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख एपिक्स बॉडी के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में उपस्थित थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की थी। श्री वांगचुक ने कहा कि कई मुद्दों पर लंबे विचार विमर्श के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। उन्होंने सभी से किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए सतर्क रहने की अपील की। श्री वांगचुक ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक मामलों में जवाबदेही की मांग को लेकर पिछले महीने की 28 तारीख से अनशन शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने सोनम वांगचुक से डॉक्टरों की सलाह के अनुसार दिनचर्या का पालन करने और जल्द से जल्द सामान्य वजन वापस प्राप्त करने का आग्रह किया है। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के वर्तमान सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव किटकिथिला श्रीनिवास को उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। केशव चंद्र को खान मंत्रालय का सचिव बनाया गया है, जबकि चंद्रभूषण कुमार श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव होंगे। सुशील कुमार लोहानी को पशुपालन और डेयरी विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। सत्येंद्र सिंह को शहरी विकास विभाग का सचिव और डी थारा को राजधानी विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। पीयूष गोयल को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव नियुक्त किया गया है। इन सभी नियुक्तियों को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डेन के बीच बुखारेस्ट में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से अधिक पुरानी मित्रता आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंपर्क पर आधारित है। राष्ट्रपति ने बताया कि भारत और रोमानिया

0: दिनों में इस मामले में कई कदम उठाए गए हैं।
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़ी सजा के प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल में चर्चा होगी और सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संसद का दूसरा सप्ताह शुरू होने पर सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने का पूरा प्रयास करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। उच्च न्यायालय ने अधिसूचना जारी कर बताया कि राउस एवेन्यू कोर्ट में न्यायिक अधिकारी अनु ग्रोवर बालिगा की अदालत अब विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में कार्य करेगी। उन्हें इस उद्देश्य के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा के बाद उठाया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में उपस्थित थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की थी। श्री वांगचुक ने कहा कि कई मुद्दों पर लंबे विचार विमर्श के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। उन्होंने सभी से किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए सतर्क रहने की अपील की। श्री वांगचुक ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक मामलों में जवाबदेही की मांग को लेकर पिछले महीने की 28 तारीख से अनशन शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने सोनम वांगचुक से डॉक्टरों की सलाह के अनुसार दिनचर्या का पालन करने और जल्द से जल्द सामान्य वजन प्राप्त करने का आग्रह किया है। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के वर्तमान सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया की राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच बुखारेस्ट में हुई प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से अधिक पुरानी मित्रता, आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंपर्क पर आधारित है। राष्ट्रपति ने बताया कि भारत और रोमानिया ने अगले 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। दोनों देश विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डिजिटल क्षेत्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने किया। 74 देशों के खिलाड़ी इस 10 दिवसीय

शफक कहते हैं किरणों को, रेस और धनुक रेनबो, महताब चंद्रमा, घटाएं तो आपको मालूम है। शफक धनुक महताब घटाएं, तारे नगमे बिजली फूल।

कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां। और गालिब गजल के सरताज थे और हैं। उनका कलाम आज भी उतना ही ताजा लगता है जितना उनके अपने दौर में था। उनका मुहावरा और बयान आज के दौर में भी मॉडर्न लगता है, इसलिए गायकों के लिए गालिब सदाबहार हैं। वो किसी भी लिबास में सज जाते हैं। जगजीत ने उन्हें मॉडर्न ऑर्केस्ट्रा के साथ रिकॉर्ड किया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत और गजल। ये आकाशवाणी दिल्ली का EIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 4 बजने को है। अब होगा भक्तमय संगीत का कार्यक्रम आराधना, जिसमें आप सुनेंगे कर्नाटक म्यूजिक पर आधारित भक्तमय संगीत।

0: वीणा के स्वर में अभी आप गुरुवायूरप्पन की प्रशंसा में हरि नाम कीर्तनम सुन रहे थे। इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अर्चना, भक्तिमय संगीत का कार्यक्रम ही आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली के IR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर। रात के 4:20 होने को हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नाद ब्रह्म, जिसमें आप सुनेंगे आज कर्नाटक म्यूजिक, जिसमें मिनियन का गायन सुनेंगे आप।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाद ब्रह्म। कर्नाटक म्यूजिक के इस कार्यक्रम में आपने सुना मिनी एन का गायन राग कल्याणी में।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 24 जुलाई 2026। सुबह के 4:53 और 40 सेकंड हो चुके हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आज कौन कौन से कार्यक्रम आप इंद्रप्रस्थ पर सुनेंगे, आइए आपको बता देते हैं। अब से थोड़ी देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे आओ योग करें, जिसमें आज आप सुनेंगे दीर्घ श्वास, प्रेक्षा और आसन। पाँच बजकर 20 मिनट पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत और 5:30 पर कार्यक्रम स्वर रंजनी में आज आप सुनेंगे अजय मिश्रा का गायन राग भूपेश्वरी में।

0: सुबह 6 बजे हिंदी और इंग्लिश में समाचार होंगे और उसके बाद 6:10 पर कार्यक्रम वंदना होगा। भक्तिमय संगीत का एक कार्यक्रम 6:40 तक आप सुनेंगे और उसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों पर। हर रोज की तरह आज भी सुबह 6:45 पर श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ होगा। 6:55 पर संस्कृत में समाचार और 7 बजे हिंदी में समाचार होंगे। सात बजकर 10 मिनट पर सुबह कार्यक्रम होगा संगीतिका का और 7:30 पर गीतों भरी गुड मॉर्निंग। 7 बजकर 10 मिनट कार्यक्रम जिन्हें आज आप इंद्रप्रस्थ पर सुनेंगे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं 5 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले पर एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले 2.5 महीनों में इस मामले में कई कदम उठाए गए हैं।
2: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर

0: पर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक वीत कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़ी सजा के प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल में चर्चा होगी और सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संसद का दूसरा सप्ताह शुरू होने पर सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने का प्रयास करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित आसाधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। उच्च न्यायालय ने अधिसूचना जारी कर बताया कि राउज एवेन्यू कोर्ट में न्यायिक अधिकारी अनु ग्रोवर बालिका की अदालत अब विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में कार्य करेगी। उन्हें इस उद्देश्य के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में उपस्थित थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की थी। श्री वांगचुक ने शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार और पेपर लीक मामलों में जवाबदेही की मांग को लेकर पिछले महीने की 28 तारीख से अनशन शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री वांगचुक के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने सोनम वांगचुक से डॉक्टर की सलाह के अनुसार दिनचर्या का पालन करने और जल्द से जल्द सामान्य वजन वापस प्राप्त करने का आग्रह किया है। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के वर्तमान सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच बुखारेस्ट में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से अधिक पुरानी मित्रता आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंपर्क पर आधारित है। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन के अंतर्गत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। राज्यसभा में लिखित उत्तर में डॉक्टर सिंह ने बताया कि रोड मैप के अनुसार मौजूदा 8.78 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता को विभिन्न चरणों में चल रही परियोजनाओं के पूरा होने पर लगभग 22 गीगावाट तक पहुँचने की उम्मीद है। सरकार ने उन सोशल मीडिया पोस्टों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि दिल्ली में नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान 21 वर्षीय महिला की मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने बताया कि विरोध प्रदर्शन संबंधित पटना में संबंधित घटना में गंभीर रूप से घायल हुई महिला जीवित है और उसका इलाज जारी है। सरकार ने लोगों से सतर्क रहने, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और सोशल मीडिया पर अपशिष्ट दावों को साझा न करने का आग्रह किया है। भारत ने मानवाधिकारों का सम्मान करने और सभी के लिए अवसर सृजित करने वाली सुरक्षित, समावेशी और न्यायसंगत खेल प्रणालियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल में खेल प्रशासन, खिलाड़ी कल्याण और संस्थागत क्षमता के विस्तार के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन ने किया। 74 देशों के खिलाड़ी इस 10 दिवसीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. In a video message last night, Mr. Modi said government's foremost responsibility was to ensure that students should not lose an academic year, and it was essential to conduct the examinations immediately.

अध्ययन की एक बहुत सरल विधि के विषय में। दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ यानी लंबा, श्वास माने श्वास, प्रेक्षा माने बारीकी से देखना, अर्थात लंबी गहरी श्वास लेना और बारीकी से देखना, फील करना, अनुभव करना, श्वास के आने जाने को देखना और अपना पूरा ध्यान उस पर लगा देना, यही है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं, लंबी गहरी श्वास भरते हैं और छोड़ते जाते हैं। अपने ऑफिस में, घर में, कार्यस्थल में, खेल के मैदान में, ग्राउंड में, कहीं भी गहरी सांस के अभ्यास को कर सकेंगे। इवन हम कभी देर तक रेड लाइट पर फंस गए, गाड़ी बंद कर दी, तनाव आ रहा है जाम में फंसे होने का, उस तनाव से मुक्ति के लिए भी हम अपनी लंबी गहरी श्वास का अभ्यास कर सकते हैं। कभी सामने वाले से कोई झगड़ा हो गया, अपने गुस्से को कैसे काबू करना है, तो भी हम अपनी लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करके अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। निरंतर लंबी गहरी श्वास लेते रहने से हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में रक्त की सप्लाई सुचारू बनी रहती है। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हमारा ब्लड मूव करता है हार्ट से शरीर के अंगों के लिए, शरीर के अंगों और मस्तिष्क के लिए, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंग प्रत्यंगों से रक्त वापस आता है हार्ट के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। अर्थात हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय हमारे हार्ट से शरीर के ऑर्गन्स के लिए ब्लड की सप्लाई होती है। जब रक्त जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है शरीर के अंगों के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। तो जब श्वास को छोड़ते हैं और वही श्वास छोड़ते समय आपके ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त के साथ आती है हार्ट से लंग्स के द्वारा थ्रो करने के लिए। अर्थात जब ब्लड जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब वापस आता है तो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही दीर्घ श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया आपके रक्त को पूरी तरह फिल्टर करने के और आपके हार्ट को सुचारू रूप से काम करने में मदद करती है, पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार सुचारू करती है। लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना, अर्थात श्वास प्रश्वास, और इसी श्वास प्रश्वास के अभ्यास को आप सायास करते हैं, अर्थात जानबूझ के करते हैं, देखते हुए, विजुलाइज करते हुए, देखते हुए मीन मन की आंखों से देखते हुए करते हैं, फील करते हुए करते हैं, तो ध्यान हो जाता है, ध्यान की सब ग्राह्य विधि बन जाती है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा के दौरान जब आप श्वास को ले रहे हैं, धीरे धीरे पेट फूलेगा, जब श्वास छोड़ते हैं धीरे धीरे पेट नीचे जाएगा, और इसी पेट के ऊपर नीचे होने को, यानी के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में कैसा प्रभाव हो रहा है श्वास के लेने और छोड़ने का, आप उसे अनुभव करने लग जाएंगे। और यही अनुभव करना, विजुलाइज करना, देखना, फील करना, यही आपका एक ध्यान बन जाता है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। शरीर भी स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है, दीर्घ श्वास के अभ्यास से बेहतरीन मेडिटेशन हो जाता है, हमें फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली फिट रखने में समर्थ। धन्यवाद।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर,

पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य स्थिति में होते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक दो लंबी गहरी श्वास भरें, दोनों हथेलियां थाइस के बराबर में रखें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं, पुनः श्वास भरते हुए दाहिना पांव यानी कि जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी श्वास लें, चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात लोअर बैक का पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे तीन श्वास पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी तीन श्वास का अभ्यास करें, और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रभाव को अनुभव करते रहें, कहां शरीर के किस भाग पर इम्पैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे तीन श्वास के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी एक आवृत्ति, इसी आवृत्ति को दो तीन बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई, कंप्यूटर, कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी श्वास से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं देशगान।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 5:25 और पूरे 10 सेकंड हो चुके हैं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के कार्यक्रम सर रंजनी में आइए सुनते हैं